शुभ सवेरा, नमस्कार। ...90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज की इस प्रसारण सभा में आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, विक्रम संवत 2083 के अधिमास ज्येष्ठ शुक्ल की छठवीं तिथि और शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय 7:04:30 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आत्मीय शुभकामनाएं रेडियो आजाद हिंद की ओर से।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, फिर एक नया सवेरा जीवन के आंगन में दस्तक दे रहा है। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर जीवन बो रही हैं और जीवन फिर एक नई शुरुआत के लिए चल पड़ा है। इस कोरे से दिन में हमें क्या भरना है और अपने भीतर से क्या खाली करना है, ये निर्णय हमारा होना चाहिए, क्योंकि इसी निर्णय से जीवन की दिशा तय होती है।

दरअसल हर सुबह एक नए जीवन की शुरुआत है। अंधेरा छटता है, सूरज की किरणें धरती पर उतरती हैं और इस प्रकाश से एक नए जीवन का आरंभ होता है। अपने जीवन को भी हमें इसी तरह से देखना चाहिए कि जो कुछ कल बीत गया उसे हम बिसरा दें, जो कुछ नकारात्मक था उसे भुला दें और पूरी सकारात्मक शक्ति के साथ आज के दिन में प्रवेश करें। तो आइए अंतर जागरण के इसी संदेश के साथ प्रवेश करते हैं आज के दिन में, और क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं ये जानकारी आपको देते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी पहली प्रस्तुति जीवन सौरभ, और उसके बाद आप सुनते हैं अक्षय निधि, और फिर भक्ति संगीत का प्रसारण होता है। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम होगा, इसमें हम चर्चा करेंगे प्रफुल्ल चंद्र चाकी की। 8:30 बजे आमने सामने कार्यक्रम का प्रसारण होगा। वागर्थ कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे। 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह, इसका दूसरा भाग। 9:00 बजे की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10:00 बजे। 10:30 बजे हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की कला कल्लोलिनी, ये कार्यक्रम 11:00 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज बात होगी उस्ताद अली अकबर खां की। और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 52वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत में आपके साथ जुड़ा हुआ है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तो आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। काम बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सुखा नहीं सकता है। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
0: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं। यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 120 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घ तमस, देवता हैं अश्विनी कुमार, दुस्वप्न नाशक, छंद है गायत्री, ककुप उष्णिक, विराट अनुष्टुप, नष्ट रूपी अनुष्टुप, तनुशिरा उष्णिक, विष्टार बृहती, कृति विराट अनुष्टुप और गायत्री।
3: का राधद्धोत्राश्विना वाम को वाम जोश उभयोः कथा विधात्य प्रचेताः। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों को किस प्रकार की प्रार्थना प्रिय है जिससे आप प्रसन्न होते हैं? आपको संतुष्ट करने में कौन सक्षम हो सकता है? अल्पज्ञ मनुष्य आपकी उपासना कैसे करें? विद्वांसा विद्दुरह पृच्छेद् विद्वानित्था परो अचेताः नु चिन्नु मर्त्ये अर्कौ। ज्ञान रहित और प्रतिभा रहित ये दोनों प्रकार के मनुष्य विद्वान अश्विनी कुमारों से ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। क्या वे मानव हित के संबंध में कुछ न कर पाने की असमर्थता प्रकट करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। वे अवश्य ही मानवों के कल्याण के प्रति प्रेरित होंगे। ता विद्वांसा हवामहे वाम तानो विद्वांसा मन्म वोचे तमद्य प्रार्चद्यमानो युवाकुः। हम सहयोग के लिए आप अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। आप आज हमें यहां आकर चिंतन प्रधान मार्गदर्शन दें। आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य हवि समर्पित करते हुए आपकी अर्चना करते हैं। वि पृच्छामि पाक्यान देवान वशट कृतस्याद भूतस्य दस्रा पातम च सह्यसो युवम च रभ्यसो नह। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारो, हमारी प्रार्थना आपसे ही है, अन्य के प्रति नहीं। अद्भुत शक्ति के उत्पादक आदर पूर्वक दिए गए इस सोमरस को आप दोनों ग्रहण करें तथा हमें जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को वहन करते रहने की सामर्थ्य प्रदान करें। प्रयाघोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम प्रैशर्युर्न विद्वान। घोषा ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि तथा ज्ञान संपन्न एवं अन्न के इच्छुक पज्र कुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस प्रकार की स्तुति रूप वाणी का प्रयोग आप दोनों के प्रति करते रहे वैसी

दोनों नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण करें। युवम ह्यस्तम महो रन्युवम वा यन्निरततं सतम तानो वसु सुगोपा स्यातम पातम नो वृकादघायोः। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों किसी साधक को प्रचुर दान भी देते हैं और किसी से धन शक्ति को पूर्ण रूपेण अलग भी कर देते हैं। ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बने, दुष्कर्मी तथा भेड़िये के समान क्रोधी शत्रुओं से हमें बचाएं। मा कस्मै धातमभ्य मित्रिणे नो मा कुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गुह स्तनाभुजो अशिश्वी ही। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव न हो। अपने दूध से भरण पोषण करने वाली गौएं बछड़ों से अलग होकर हमारे घरों का भी कभी त्याग न करें, अर्थात हमारे घर दुग्ध आदि पोषक रसों से सदैव परिपूर्ण बने रहें।

0: आजवत्यै इशे च नो मिमीतम धेनुमत्यै। आपसे सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग मित्रों के भरण पोषण के लिए प्रचुर धन संपदा चाहते हैं। अतएव शक्ति से संपन्न धन और गोधन से भरपूर अन्न हमें प्रदान करें। अश्विनो रसनम रथमनश्वम वाजिनी वतोह तेनाहम भूरी चाकन। सैन्य शक्ति से संपन्न अश्विनी कुमारों से अश्वों के बिना चलने वाले इस रथ को हमने प्राप्त किया है। इससे हम प्रचुर यश प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। अयम समहमा तनु हियाते जनाम अनु सोमपेयम सुखो रथः। यह सुखदायक रथ धनों से परिपूर्ण है। अश्विनी कुमार सोमपान के लिए याज्ञिक जनों के समीप इसी में सवार होकर जाते हैं। यह रथ हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो। अध स्वप्नस्य निर्विदे भुञ्जतश्च रेवतः उभाता बस्री नश्यतः। असमर्थों को भोजन प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवानों को और आलस्य प्रमाद में पड़े रहने वाले व्यक्तियों को देखकर हमें बहुत खेद होता है, क्योंकि शीघ्र ही उनका विनाश सुनिश्चित है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 120 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी की थी। बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहां मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है कृष्ण गोपाल कर्वे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से सुंदर लाल मित्तल और हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: ये वतन का राग।
0: वो समय ही होता है जो अपनी तरह से लोगों को गढ़ता है, वरना 8-9 साल की उम्र खिलौनों से खेलने की होती है। देश दुनिया की स्थिति से कोरे बाल मन का भला क्या वास्ता। 20 साल की उम्र अपने सुंदर भविष्य के सपने संजोने की होती है, लेकिन वो समय ही होता है जो अपनी तरह से लोगों को गढ़ता है। और एक 20 साल के युवा का सपना देश के भविष्य से जुड़ जाता है और इस एक सपने के लिए वो अपना जीवन बलिदान कर देता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में धड़कती एक ऐसी ही गाथा है महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी की। एक ऐसी कहानी जिससे सुनते हुए भारत की मिट्टी का मन भी भीग जाता है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म 10 दिसंबर सन 1888 को उत्तरी बंगाल के बोगुरा जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। उनके पिता का नाम राज नारायण चाकी और माता जी का नाम स्वर्णमयी देवी था। वो अपने माता पिता की पांचवीं संतान थे। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर गहरा संकट छा गया। उनकी मां ने बहुत कठिनाई से उनका पालन पोषण किया। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई प्रताप चंद्र चाकी के साथ रंगपुर चले गए। यहाँ के नेशनल स्कूल में उनकी भेंट जितेंद्र नारायण रॉय, अविनाश चक्रवर्ती और ईशान चंद्र चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से हुई। छात्र जीवन में ही वो स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से परिचित हुए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कई किताबें पढ़ी थीं और यही वो बिंदु था जब उनकी आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न जागा। बहुत कम उम्र में ही वो देश की दशा को समझने लगे थे। इसी बीच लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह धरना, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। स्वदेशी का स्वर यूं बुलंद हुआ कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की गूंज थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बाल मन पर इन घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो बंग भंग आंदोलन में कूद पड़े। वो कानून तोड़ने वाले छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें रंगपुर जिला विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इसी बीच क्रांतिकारी बारिंद्र घोष उन्हें कलकत्ता ले आए, जहां उनका संपर्क युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों से हुआ और वंदे मातरम का जय घोष किसी स्वस्ति मंत्र की तरह उनके भीतर गूंज उठा।

युगांतर पार्टी की स्थापना अनुशीलन समिति के साथ मतभेद होने के कारण सन 1906 में हुई थी। ये भारत की स्वाधीनता के लिए काम करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। अरविंद घोष, बारीन घोष, हेमचंद कानूनगो और उपेन बैनर्जी इसके संस्थापकों में शामिल थे। ये पार्टी हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने और बम बनाने के काम में सक्रिय थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला ये गुप्त संगठन मुख्य रूप से बंगाल में सक्रिय था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी को बारीन घोष ने इसी युगांतर पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह प्रफुल्ल चंद्र चाकी कलकत्ता आ गए। इस समय कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड था। वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध बहुत क्रूर निर्णय लिया करता था और उन्हें अत्यंत कठिन दंड दिया करता। एक बार 15 साल के स्कूली छात्र को वंदे मातरम का नारा लगाने के कारण उसने 15 बेंत मारने की सजा दी थी। इस तरह किंग्सफोर्ड के प्रति आम जनता के मन में गहरा आक्रोश था और क्रांतिकारी किसी भी तरह उसे समाप्त करना चाहते थे। जनता के आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों को किंग्सफोर्ड की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। अंततः उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। लेकिन युगांतर पार्टी के क्रांतिकारी जानते थे कि किंग्सफोर्ड मूल रूप से ही एक अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति है। स्थान के बदलने से उसके रवैये में कोई विशेष बदलाव नहीं आने वाला है। वो जब भी अवसर पाएगा राष्ट्रभक्त भारतीयों के लिए वही रवैया अपनाएगा। इसलिए योजना बनी कि किंग्सफोर्ड से भारतीयों को मुक्त कराया जाए। इसके लिए उसका वध आवश्यक था और किंग्सफोर्ड को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को। दोनों ही क्रांतिकारी अत्यंत उत्साहित थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का ये स्वर्णिम अवसर था और इसे वो चूकना नहीं चाहते थे। इससे पहले भी प्रफुल्ल चंद्र चाकी को संगठन द्वारा सर जोसेफ बैम्फील्ड फुलर को गोली मारने का कार्य सौंपा गया था। फुलर पूर्वी बंगाल और असम का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेकिन ये योजना अमल में नहीं लाई जा सकी क्योंकि सर जोसेफ की यात्रा कार्यक्रम में अंतिम समय में एक बदलाव आ गया था। इसलिए इस बार प्रफुल्ल चंद्र चाकी अत्यंत प्रसन्न थे। किंग्सफोर्ड को समाप्त करने के लिए खुदीराम बोस के साथ वो मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दृढ़ संकल्प के साथ ये दोनों क्रांतिकारी क्रांति पथ पर आगे बढ़ चले।

मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने सबसे पहले अपने नाम बदल लिए। खुदीराम बोस ने अपना नाम हरेन सरकार रखा और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपना नाम दिनेश चंद्र रॉय रख लिया। उन्होंने अब किंग्सफोर्ड की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया कि वो कब और कहां किस तरह से आता जाता है। अपनी पहचान को बड़ी सफलता के साथ दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह तक छुपाए रखे। पहले उन्होंने उस अदालत में बम फेंकने की योजना बनाई जिसमें किंग्सफोर्ड बैठता था, लेकिन अदालत में मौजूद अन्य लोगों के घायल हो जाने की आशंका से उन्होंने अपनी योजना बदल दी। अब ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनी। दोनों क्रांतिकारियों ने स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। अपनी योजना को पूरा करने के लिए 29 अप्रैल की शाम को अपने नियत स्थान पर वो आकर डट गए, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें देख लिया और बात बिगड़ गई। अब प्रतीक्षा थी अगले दिन की। 30 अप्रैल सन 1908 को किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी तथा एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी साथ साथ पार्क आए। कुछ देर वहां रहे और शाम को जब वहां से लौटने लगे तो किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी एक गाड़ी में और श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी थीं। गाड़ी जैसे ही यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, दोनों क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को इशारा किया और बम फेंक दिया। लेकिन संयोग ये रहा कि जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था उसमें कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी वहां से भाग निकले। दोनों रेलवे लाइन के किनारे लगभग 24 किलोमीटर अंधेरे में भागते रहे और बेनी स्टेशन

लाल बैनर्जी भी सवार था। उसे शक हुआ और उसने मोकामा स्टेशन पर सूचना भेज दी। मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी को घेर लिया गया। वो संघर्ष करते रहे और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चंद्र चाकी की मौत के बाद उनका सिर काटकर मुजफ्फरपुर अदालत में पेश किया गया। ये घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी गई। देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले ऐसे अमर बलिदानी को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: ...90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, कुछ खास शख्सियतें जिनसे मुलाकात को जी चाहे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बातें सुनने को जी चाहे, आपकी ऐसी ही चाहतों को पूरा करता है हमारा अगला कार्यक्रम। जी हाँ, आमने सामने। इंतजार कीजिए बस जरा सा।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
4: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, मई माह के हर तीसरे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, यानी एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज डे हम मनाते हैं। लेकिन हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज क्या होती हैं, इनका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और क्यों उनको लुप्त प्राय मान लिया गया है, इनका बचाव क्यों जरूरी है। ऐसे हमारे मन में उठते हुए कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञ। हम आपको बता दें कि सर हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों पधार कर हम सभी का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है या इसको मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी।
5: सबसे पहले तो मैं हमारे श्रोताओं को इस दिवस की बधाई देना चाहता हूँ कि इस दिवस पे आप प्रेरणा लें कि हम ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं इस पृथ्वी से, इस धरा से, इस मैदिनी से, इस अर्थ से, इस अर्थ मदर से, उन सब के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित हों। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई इस दिवस के लिए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको इस दिवस का इतिहास। अमेरिका में तेजी से स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही थी, तो सबसे पहले अमेरिका में जो संस्थाएं थी उनके मन में विचार आया कि अमेरिका की विलुप्त होती हुई प्रजातियों के बारे में वो एक संगठन बनाकर बाकायदा अमेरिका में अभियान चलाएं। तो वर्ष 2006 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले ये दिवस मनाया गया और इस दिवस को मई के प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को, जैसा कि आपने अभी बताया, वैसा मनाने का निश्चय किया गया। अमेरिका में एक एक्ट भी बना, तभी वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट थ्रेटन स्पीसीज के लिए 1973 में एक्ट बना। हमारे यहाँ भारत में उससे पहले 1972 में ये एक्ट बन चुका था। अमेरिका में इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट कहते हैं, जबकि भारत में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं।
4: सर, ये एक्ट वैसे तो जैसा कि आपने बताया अमेरिका में जारी किया गया, लागू किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी अमेरिका से ही शुरू किया गया और भारत में भी इसे मनाया जाता है, तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसे कौन सी प्रजातियां हैं, वन्य एवं जो प्लांट स्पीशीज हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड या लुप्त प्राय मान सकते हैं।
5: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, मगर उसके पहले जो हम आज 21वां दिवस मना रहे हैं, इसका पहला 2006 में मना था, अब ये 2026 में मना रहा है 21वां, इसको समझने के लिए पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम ये समझें कि विलुप्त प्रजाति क्या होती है, खतरे के निकट वाली प्रजाति क्या होती है, असुरक्षित यानी वल्नरेबल प्रजाति क्या होती है। जब तक हम इन चीजों को, इन पारिभाषिक शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो इस दिवस की महत्ता समझ पाएंगे और ना प्राणियों को बचाने का अपना कर्तव्य समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको, यदि आप उल्टा लीजिए, है ना, उल्टे से मेरा मतलब है सबसे पहले जो हो चुका, व्यतीत हो गया, जो नुकसान हो चुका उसको समझें, तो शब्द है विलुप्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट।
4: जी।
5: मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसे 1947-48 में भारत से चीता, एशिया चीता विलुप्त हो गया था
4: जी।
5: अभी जो आ रहे हैं वो अफ्रीकन चीते हैं हमारे यहाँ, तो वो विलुप्त हो गया भारत से, तो ये कहलाएगा विलुप्त होना या एक्सटिंक्ट होना
4: जी।
5: अच्छा, विलुप्ति को भी समझिए, विलुप्ति दो तरह की होती है। एक तो विलुप्ति इन द वाइल्ड मीन्स एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वो चीज जंगल में खत्म हो गई, कहीं कहीं जू में मिलती है
4: जी।
5: उसको भी विलुप्त माना जाता है, विलुप्त इन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो पहला शब्द आप पकड़ लीजिए, विलुप्त होना मतलब एक्सटिंक्ट होना। सबसे खतरनाक रेड लाइट वाला समझिए। अब थोड़ी सी ऑरेंज लाइट पे जाएं हम, ऑरेंज मतलब विलुप्ति से थोड़ा सा कम खतरनाक, वो है विलुप्त प्रायः, जिसके लिए आप शब्द यूज कर रहे हैं एंडेंजर्ड। तो विलुप्त प्रायः वो है जो वर्तमान में समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है, और उसको बचाने यदि हमने बड़े कठोरतम प्रयत्न नहीं किए तो वो किस श्रेणी में जाएगा, जिसकी मैंने अभी बात की, विलुप्त की श्रेणी में जाएगा। तो विलुप्त प्रायः का आशय हुआ कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि वर्तमान में समाप्त होने वाली है। अगला शब्द अभी आपने एक उपयोग किया, वो होता है खतरे के नजदीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रेटन। थ्रेटन करना किसी को मतलब किसी को धमकाना, डराना। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज वो है जो अभी वर्तमान में तो कुछ ठीक ठाक है मगर भविष्य में विलुप्त हो सकती है। आप मेरा आशय समझ होंगे, विलुप्त में यानी इंडेंजर्ड में और थ्रेटन में वो कि अभी तो विलुप्त नहीं है, वो आगे भविष्य में जाके विलुप्त हो जाएगी। तो ये तीन शब्द यदि आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद एक और चीज है, एक और शब्द वैज्ञानिक तौर पर यूज किया जाता है, वल्नरेबल, असुरक्षित, जो मतलब इंडेंजर्ड नहीं है, जो थ्रेटन्ड नहीं है, वर्तमान में खतरे में नहीं है, भविष्य में खतरे में नहीं है, मगर इन दोनों के अलावा भी एक ऐसी प्रजाति है जो असुरक्षित है। यदि हमने उसकी सुरक्षा नहीं करी, उस पर हमने चारों ओर से आवरण सुरक्षा का नहीं दिया, तो वो जो प्रजाति है वो असुरक्षित से किस में आ जाएगी, थ्रेटन्ड स्पीसीज में आ जाएगी। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, एक्सटिंक्ट होना और फिर एंडेंजर्ड होना, फिर थ्रेटन होना, फिर वल्नरेबल होना। यदि ये शब्द आप दिमाग में रखेंगे तो आपको इस परिचर्चा को सुनने में आनंद आएगा।
4: सर, यानी हमें दिमाग में कुछ शब्दावलियां रखनी होंगी, जैसे एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट। IUCN एक ग्लोबल लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है, जिसे कहते हैं रेड डाटा लिस्ट। तो उसमें लगातार ऐसे कुछ प्रजातियों के नाम सूचीबद्ध किए जा रहे हैं जिन पर लगातार खतरे की घंटी बजती रहती है। तो अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो इस लिस्ट में शुमार हैं, सम्मिलित हैं?
5: देखिए, सबसे पहले तो हम IUCN के बारे में इसलिए बात करें, थोड़ी सी श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि IUCN क्यों महत्वपूर्ण है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था है, राष्ट्र संघ द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, परिपोषित है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि तब ये प्रजातियों के बारे में ऐसा सोचा जा रहा था कि बहुत सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त हो जाएंगी। तो इसने उनका समंक यानी डाटा इकट्ठा करना शुरू किया कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो अभी इंडेंजर्ड है, थ्रेटन है, वल्नरेबल है। तो उसने इन सब के नाम जिस किताब में डाले उसका नाम हो गया रेड डाटा लिस्ट। रेड मतलब हम लोग अलार्मिंग कलर माना जाता है, खतरे का कलर माना जाता है, जैसा कि हम ट्रैफिक में भी देखते हैं कि सब चीज़ें रोक दी जाती हैं लाल पे, लाल खतरे का रंग माना जाता है। तो रेड डाटा लिस्ट उनने बनाई और उसमें डाटा बाकायदा, ऐसा नहीं, उनने वैज्ञानिक तरीके से डाटाओं का संग्रहण किया और फिर उसमें उनने बताया कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो उनने सबसे पहले जो रिकॉर्ड की अभी तक प्रजातियां कर चुके हैं 48,600 पूरे विश्व की जाती हैं प्रजातियां हैं, इसमें भारत की प्रजातियां भी हैं। वो भारत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास पृथ्वी का, पूरी दुनिया का 2.4% भूभाग है, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस 2.4 भूभाग पे दुनिया की 7% बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ये विविधता 7% है, मतलब क्या हुआ कि भारत को कम से कम 3.5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल मिलना चाहिए था जो वर्तमान में प्रजातियों को रिटेन कर रहा है। तो भारत में आप समझ सकते हैं कि जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि जितनी कुल प्रजातियां दुनिया में इनरोल्ड हुई हैं, जिनकी संख्या मान ली गई है कि लगभग इतनी होंगी, वो प्लांट्स की और एनिमल्स की लगभग 15-20 लाख प्रजातियां मानी जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हम 2% ही इन्यूमरेशन कर पाए हैं समुद्र की प्रजातियों का, 2-3%। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक तो कहते हैं कि लगभग लगभग दुनिया में 1 करोड़ प्रजातियां होंगी। अभी प्रति प्रजाति की कितनी संख्या होती है वो अलग बात होगी, 1 करोड़ के लगभग प्रजातियां होंगी। मगर अभी तक जो इन्यूमरेशन हुआ है, जो साइंटिफिक डाटा कलेक्ट होके जिनका नामेनक्लेचर हो गया है, वो लगभग 15 से 20 लाख के बीच में, 17-17.5 लाख के आसपास जाकर ठहरते हैं। IUCN कहता है कि इसमें से 28% प्रजातियां या तो इंडेंजर्ड हैं, या थ्रेटन हैं, या वल्नरेबल हैं। और यदि हम इसमें और विस्तार से जाएं तो हम देखेंगे कि मैमल्स की 26% प्रजातियां खतरे में हैं, एम्फीबियंस की 41% प्रजातियां खतरे में हैं। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जंतु जो उभयचर कहलाते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं।
4: जैसे मगरमच्छ,
5: करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कछुए
4: जी।
5: अब बर्ड्स, ये बर्ड्स की 11% प्रजातियां हैं जिनको चहचहाते हुए देखते हैं, जिनके रंग बिरंगे प्लूमेज हैं, जो आवृजन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जिनसे हमारी सुबह होती है, जिनसे हमारी शाम ढलती है, जिन पक्षियों के कलरव से, जिनके चहचहाने से, 11% प्रजातियां यानी हर 100 में से 11 प्रजातियां खतरे में।
4: बागमारी जी, अगर छोटी सी बात करें तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ की जो बहुत एक इंडिजिनस प्रजाति है, पहले जो छोटी छोटी जिसके ऊपर घर में कविताएं बनती थी, बात होती थी, घर की छोटी बच्चियों को अक्सर कहा जाता था चिरैया, जिसे हम गौरैया कहते हैं, वही आजकल नहीं मिलती है। उसको देखना ही आजकल एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट होने लगा है।
5: बिल्कुल आपका सही कहना है, हमको जागरूकता इस बारे में लाना चाहिए कि वो क्यों समाप्त हो रही है। वो इसलिए समाप्त नहीं हो रही कि कोई जलवायु संकट आ गया है या कोई प्रकृति का प्रकोप आ गया है, वो इसलिए समाप्त हो रही है, हमने उसके हैबिटेट खत्म कर दिए। देखिए, पहले कच्चे मकान होते थे, घरों की छानी होती थी, लोग बाग सुबह चुग्गा डाला करते थे, कहते थे चुग्गा डालना है, यानी उनको दाने डाला करते थे। हमारी संस्कृति में तो आप देखिए, रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, जो चावल की टूटन है, जो गेहूं की छानन है, वो चींटियों की। हमें तो पर्यावरण के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, मगर जब से पक्के मकान बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, अट्टालिकाएं बनने लगी, तो बेचारी चिड़ियों के रहने के लिए आवास का संकट पैदा हो गया। इस वर्ष का इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो थीम है वो भी यही है कि आवासों को, जो प्राकृतिक आवास है इनके, जिनको इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं, उनको किस तरह सुरक्षित रखा जाए।
4: अभी हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की, उनके प्राकृतिक आवास की, तो अगर हम अभी अपने क्षेत्र की ही बात करें तो हम अक्सर अखबारों में, समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ते हैं कि शेर, यह शेर के बाघ के विचरण का जोन है, यहाँ आराम से गाड़ी चलाएं, सतर्क रहें। मतलब हमने क्या किया है कि जानवरों के, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करके हमने वहाँ पर मनुष्यों की बसाहट कर दी है, और फिर हम उनको कह रहे हैं कि हमें उनसे खतरा है, जबकि शायद मनुष्य ही खतरा बने हुए हैं जीव जंतुओं के लिए। एक समय में ऐसा संकट भी आ गया था भारत पर कि सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना पड़ा शासन को, क्योंकि जो बाघ हैं, शेर हैं, उनकी कमी हो गई थी। इस बारे में भी हम सर जानना चाहेंगे, आप इस विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे कोई भी प्रजाति जिसके ऊपर हैबिटेट का संकट मंडराता है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, या एंडेंजर्ड वो होती ही कैसे है, अगर हम सबसे पहले इस बात की शुरुआत करें तो।
5: आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मगर इन प्रश्नावली में आपने जो पिछला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर रह गया था। आपने कहा था कि हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन सी 10 प्रजातियां होंगी जिनके बारे में हम चर्चा करें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि दुनिया में तो प्रजातियां बहुत सारी विलुप्त हो गई हैं, और हम यदि उन प्रजातियों के बारे में बात करने बैठ जाएंगे तो हम हमारा परिप्रेक्ष्य भूल जाएंगे, हमारे आसपास का सीनियर भूल जाएंगे, हमारा लैंडस्केप भूल जाएंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे 10 ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, या विलुप्ति की कगार पे हैं, या कि आप देखेंगे यदि उनका उचित संरक्षण नहीं मिल पाया तो उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के लालच के कारण चीता, एशियन चीता विलुप्त हो गया, माने एक्सटिंक्ट हो गया। अब ये कुछ 10 प्रजातियां हैं, यदि हम 100 साल बाद का सीनेरियो देखें कि इनको उचित संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये भी विलुप्त हो जाएंगी। जिस तरह चीता के विलुप्त होने के बाद हम करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों से चीता ला रहे हैं, तब हो सकता है कि ये प्रजातियां विदेशों में भी एक्सटेंट हो जाए तो हमको मिले नहीं। तो अब मैं सबसे पहले, आपने जो बात की वो आप जिस बाघ को या टाइगर को कह रहे हैं उसका वस्तुतः सही नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस एक शब्द है ईरान का। ईरान में एक नदी है, बहुत तीव्रता के साथ बहती है, जो बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि कहाँ से आया टाइगर भारत में। तो ऐसा माना जाता है कि साइबेरिया में जब मौसम का परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड हुई, तो वो वहाँ से निकल के हिमालय के ऊपर वाली कंदराओं से होता हुआ इस तरफ नीचे उतर आया मैदान में। दूसरी एक थ्योरी ये है कि ईरान से होता हुआ आया। जो पहली वाली थ्योरी थी उसके बारे में शुरुआत में उसके बारे में चर्चा की गई थी, तो ईरान में नदी बहती है टिग्रिस, तो उसके नाम पर इसका पैंथेरा टिग्रिस नाम रख दिया गया था, रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए आज भी उसकी जो संख्या है अनुमानित रूप से भारत में 3 से 4 हज़ार अभी होगी। 3 से 4 हज़ार जनसंख्या होना किसी भी प्रजाति के लिए खतरे का संकेत है
4: जी।
5: कोई भी बीमारी, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी आवास की कमी इस प्रजाति को खत्म कर देगी। तो ये किस में आ गया आप समझ गए, एंडेंजर्ड स्पीसीज। मैं आपको बड़े उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रेप्टाइल्स पे नहीं जा रहा हूँ, बर्ड्स पे नहीं जा रहा हूँ, अभी फ्रॉग्स पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बड़ी स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि मैं आपको अंत में पेड़ पौधों के बारे में बताऊं कि कौन से पेड़ पौधे भारत में बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड है। तो दूसरी प्रजाति जो लगभग 700 के आसपास बची है भारत में, किसी समय हजारों में पाई जाती थी, जो हमारे राज्य चिन्ह में है, जो हमारे नोट पे बनी हुई है, भारत का शौर्य का प्रतीक माना जाता है लाइन, आप देखिए वो प्रजाति 700 बची है, एक ही जगह बची है, गिर में बची है। कल्पना करिए गिर में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं पे भी आ सकती है, कोई एस्ट्रॉइड गिर जाए, गिर में कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जैसे कैनाइन डिस्टेंपर करके बीमारी फैली थी जो वन्य प्राणियों में पशुओं में पाई जाती है, उसके कारण काफ़ी सारे गिर में लायंस मर गए थे। तो ये स्पीसीज भी आप मान के चलिए कि जो लायन है, जिसको सिंह कहते हैं, जिसको बब्बर शेर कहते हैं, जिसके गले में अयाल पाए जाते हैं, जो समूह में रहता है, ये प्रजाति भी हमारे यहाँ इंडेंजर्ड है। दो प्रजातियां हुई। तीसरी आप देखिए एक बड़ा सुंदर हमारे यहाँ लेपर्ड, एक मतलब तेंदुआ पाया जाता है
4: जी।
5: एक तो तेंदुआ हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है जिसको गुलदार बोलते हैं, जिसपे धब्बे धब्बे होते हैं, ये स्नो लेपर्ड कहलाता है, माने कि बर्फ वाला तेंदुआ
4: जी।
5: गिनी चुनी संख्या में बचे हैं, आवास खत्म होता जा रहा है, वहां भी यही स्थिति आ गई है कि शिकार वहां पर भी हो रहा है इसका। आवास के खतरे के साथ साथ भोजन का खतरा है उसको, उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घास के मैदान खत्म होते जा रहे हैं, और घास के मैदान खत्म होने के कारण जो वहां पर पाए जाने वाली स्थानीय प्रजातियां थी हर्बीवोरा की, वो खत्म हो रही हैं जो उसकी भोजन का आधार था। तीसरी प्रमुख प्रजाति है स्नो लेपर्ड। चौथी पे सबका ध्यान जाता है, चौथी पे सबका ध्यान इसलिए जाता है कि उसको हमारे यहाँ आजकल जो बिजनेस शुरू किए जा रहे थे उनका नाम है यूनिकॉर्न, एक सींग वाला। तो यूनिकॉर्न जो है हमारा एक सींग वाला, जो राइनो है एक सींग वाला, गेंडा जो है आप लोगों ने सुना होगा काजीरंगा। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे भारत में नहीं मिलता, एक ये जो अभी आपको मैंने लाइन के बारे में बताया या वन हॉर्न राइनो के बारे में बताया, केवल काजीरंगा में ही है, वहीं वो प्रजनन कर पा रहा है, वहीं बढ़ रहा है। कल को कोई आपदा काजीरंगा में आती है इस तरीके की तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए IUCN ने इनको थ्रेटन में नहीं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा है कि ये समाप्ति की कगार पे हैं। अब एक और वन्य प्राणी है जो हमारे मध्य प्रदेश में तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है मगर वो पूरे भारत में इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है, वो कहलाता है कृष्ण मृग, ब्लैक बक। एक्चुअली ब्लैक बक हमारे यहाँ चूंकि मध्य प्रदेश में जंगलों से लगे हुए खेतों में उसको खाने पीने का खाद्यान्न मिल जाता है, इसलिए वो टिक पा रहा है, बढ़ पा रहा है, मगर बाकी भारत में उसकी संख्या तेजी से गिरावट की ओर है। और IUCN ने कृष्णबक को यानी ब्लैक बक को भी इसी श्रेणी में रखा है। आप देखिए अब जंगलों में लोग शिकायत करते हैं, जंगल के आसपास रहने वाले कृषक, कि उनके खेतों में कृष्ण मृग आ रहा है, चर जाता है, फसल बर्बाद कर देता है, उनके समूह के समूह आते हैं। बड़ा सुंदर जानवर होता है कृष्ण मृग, एक तो बहुत अच्छी छलांगे मारता है, जो मैच्योर न हो जाता है नर तो पूरी त्वचा उसकी काली हो जाती है। हम दक्षिण भारत में चलें थोड़ा सा और वेस्टर्न घाट की तरफ चलें तो एक बंदर पाया जाता है जिसके गले में लायन के जैसा अयाल मैन पाए जाते हैं और लंबी सी दुम होती है, लायन टेल्ड मका, वेस्टर्न घाट में मिलता है। ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है क्योंकि जिस आवास को वो पसंद करता था, जिस खाद्यान्न को वो पसंद करता था, वो खत्म होता जा रहा है। फिर हम मध्य प्रदेश में लौटते हैं। देखिए, अब ये तो मैंने आपको थोड़े बड़े चीज़ें बता दी, अब आपको दूसरी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जो लगभग भारत से एक्सटिंक्ट ही लोग तो मानते हैं कि ख़त्म ही हो गई है वाइल्ड में, मगर कभी कभी दिख जाती है अभी भी, उसको कहते हैं सोन चिरैया। आपने अभी तो आपने जो बात की वो हमारी घरेलू चिड़िया की बात की थी, आपने हाउसेस पर की बात की थी, ये सोन चिरैया गोंडामन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतना सुंदर पक्षी था कि नाम ही उसका सोन चिरैया रख दिया गया था। पहले खूब बड़ी मात्रा में शिकार हुआ, विदेशी लोगों ने शिकार किया, अंग्रेज लोग भी शिकार करते थे, अरब से हमारे देश में स्पेशली विशेषकर इसी के लिए आए जाते थे, उसका आज आवास को संरक्षित करने की कोशिश की, मगर ह्यूमन मनुष्य का जो लालच है, जो मनुष्य का एग्रीकल्चर के प्रति लालच है, जो मनुष्य का माइनिंग के प्रति लालच है, मनुष्य का जो बड़े बड़े बांध बनानों के प्रति लालच है, उसने इसके आवास को ख़त्म कर दिया और ये लगभग लगभग लगभग आप समझिए विलुप्त है, समाप्ति हो गया, एक्सटिंक्ट है, बड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं इसको बचाने के। एक और पक्षी होता है खरमोर
6: जी।
5: खरमोर जो है ये भी अच्छा खासा बड़ा पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है, जब ये प्रजनन करता है, जब ये मेटिंग करता है, जब ये मस्ती में होता है, तो इसको देखने के लिए आप कहें कि बहुत बड़ा मेगा शो किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। खरमोर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, अभी कभी कभी इसकी भी सूचना मिलती है कि कभी अंडा एक दो अंडे मिल गए, कभी पक्षी दिख गया, मगर ये पक्षी पूरी तरह से समाप्त है। डॉक्टर सलेम अली ने इसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश में आके विशेष प्रयास किए थे, मगर ये ख़त्म हो गया। अगली आपको बताता हूँ मैं एक और, पेंगोलिन करके जानवर होता है, जंगल में मिलता है ये पेंगोलिन, इसको चीटीखोर भी कहते हैं हिंदी में। अब प्रकृति का इकोसिस्टम ये था कि जो हमारा जंगल है उसमें छोटे छोटे जो जंतु हैं जैसे चीटियाँ हैं, दीमक है, इनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ जाए कि ये दूसरी प्रजाति को नष्ट करने लगे, तो उनकी संख्या पे कंट्रोल करने के लिए, डेमोग्राफिक कंट्रोल करने के लिए चींटियों का और दीमक जैसी चीज़ों का प्रकृति ने बनाया पेंगोलिन। पेंगोलिन को लेके हमारे देश में और विदेशों में, विशेषकर चीन में, नेपाल में इतनी भ्रांतियां हैं कि ये कैंसरों को ठीक कर देता है, ये बहुत सारे ऐसे रोगों की दवा है जो कि सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, ऐसी दवाओं का प्रतिस्थापन है ये, तो पेंगोलिन की संख्या भी हमारे यहाँ बहुत खतरे में पड़ गई है। तो ये कुछ मैंने एक ओल्ड ब्रिडले अब टर्टल में, तो चूंकि आपने बात निकाली अब हम हमारे उड़ीसा के तट पे पहुंच जाइए। कुछ ऐसे टर्टल्स होते हैं जो विशेष अवस्था में, विशेष समय में, विशेष रूप में आके ही प्रजनन करते हैं, वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। ओलिव रिडलेट क्यों समाप्त हो रहे हैं, उनका भी हैबिटेट समुद्र तट पे, हम लोग रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ऐसी तरह से हमने ओशियन फ्रंट बनाना शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ इनकी संख्या कम हो गई है। तो इस तरह से आपने जो कहा था कि 10 प्रमुख कुछ बात प्रजातियों के बारे में चर्चा करें, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि भारत में हमारे स्थानीय उदाहरण हैं और ये या तो थ्रेटन है या फिर इंडेंजर्ड है।
6: बागमारी जी, आपने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी वन्य पशुओं के बारे में। इन जीव जंतुओं की रक्षा करना जिम्मेदारी है और अगर आज उनके ऊपर मंडराता संकट देखें तो कहीं ना कहीं कल को ये संकट हम पर भी हावी होगा, हमारे जीवन पर हावी होगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म भी है कि हम इनको बचाने के प्रति जागरूक हों। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि चर्चा के दौरान आपने एक नाम का जिक्र किया था, फ्लाइंग स्क्विरल, उसके उदाहरण से भी हमें बताइए कि किस तरह से इकोसिस्टम में एक छोटा सा पशु, एक छोटा सा जंतु भी इम्पोर्टेंट होता है।
5: बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और यदि ये प्रश्न हमारे श्रोता मन लगाकर यदि इसका उत्तर सुनेंगे ना तो उनके जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी और एक संरक्षण के प्रति उनके मन में जो एक भाव है वो हो जाएगा। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं एक टेक्निकल टर्म को यूज करूंगा, रिपेरियन जोन। ये नदियों के किनारे जो तट रहता है, नदी का तट, चाहे वो नर्मदा नदी का हो, चाहे वो बेतवा नदी का हो, चाहे वो महानदी का हो, चाहे पार्वती का हो, दोनों तट रहते हैं, दो तट होते हैं नदी के, दोनों तटों की जो वनस्पति पाई जाती है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो बाकी से भिन्न होते हैं,
6: जिसे हम कछार कहते हैं, उस
5: कछार तो शब्द बड़ा हो गया, कछार मतलब जहां से पानी इकट्ठा होके आ रहा है, मगर ये तो आप मान लीजिए कि लगभग 500 मीटर का, नदियों के दोनों ओर 500 मीटर का क्षेत्र, आधा किलोमीटर का क्षेत्र, उसकी वनस्पति विशिष्ट होती है, उसके जीव जंतु विशिष्ट होते हैं। अब जो रिपेरियन जोन है, नदियों के किनारे परंपरागत रूप से हजारों साल से वृक्ष घने आपने देखे होंगे घने वृक्ष लगे रहते हैं, खासतौर से हमारी नदियों के किनारे अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं दोनों ओर, कहीं कहीं जामुन के वृक्ष। तो लगातार एक की कैनोपी माने एक का जो वितान है, जो यानी पेड़ का ऊपरी भाग है, वो दूसरे पेड़ से छूता है लगातार लगातार, बिल्कुल पेड़ रहते हैं बीच में कोई गैप नहीं होता। तो फ्लाइंग स्क्वायरल का क्या आवास होता है, ऐसे पेड़ों पर जंप करते हुए जाना। वो देखने में तो ऐसा लगता है कि उड़ रही है
6: जी।
5: मगर उड़ने जैसे पंख नहीं होते उसके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। अब यदि हमने अपने लालच में उन पेड़ों को बीच बीच में नष्ट कर दिया, गैप हो गया, तो उसका आवास ही वो है, उसका रहने का तरीका वो है, उसका शिकार करने का तरीका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने का है, उसकी छलांग बंद हो जाएगी। छलांग बंद हो जाएगी, उसके आवास खत्म हो जाएंगे, उसका प्रजनन खत्म हो जाएगा और वो प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, वो प्रजाति राजस्व क्षेत्रों में पूर्णतः समाप्त हो गई। जंगल में आपको आज भी फ्लाइंग स्क्वायरल मिल जाएंगी, क्योंकि जंगल में अभी भी पेड़ों के काटने पर, जंगल से मेरा मतलब है पीएस मतलब संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में अभी भी पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध है। तो वो वहाँ पर रिपेरियन जोन में पेड़ों की कैनोपी एक कैनोपी से दूसरे से छू रही है लगातार, इसलिए फ्लाइंग स्क्वायरल जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात तो है, यदि कोई पूछे कि इंडेंजर्ड और थ्रेटन होने से कैसे रोका जाए, तो मैं कहूँगा कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बात है खाद्य श्रृंखला को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनका जो फूड चेन है उसको बनाए रखा जाए। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनका संरक्षण कर सकती है।
6: वाघमारी जी, इन पूरी बातों का बस यही निचोड़ निकलता है कि जब तक हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, प्रकृति से वार्तालाप नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, उस प्रकृति की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनको संरक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए तो हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं और वही हमारे जीवन का आधार है। और प्रत्येक मनुष्य के द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम, जैसे पेड़ लगाना, जंगलों को बचाना या वन्य जीवों की एक अपने स्तर पर ही रक्षा करना, उनकी रक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है आगे जाके। और चाहे एक छोटा सा भी जीव हो, वो भी प्रकृति के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो हो गई जंतुओं की बात, जीवों की बात, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे?
5: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐसी प्रजातियां, 19 प्रजातियां हैं जिनको संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है और जिनको नष्ट करना या जिनका व्यापार करना बिना अनुमति के अपराध है। आपको बताऊंगा, एक नील कुरंजी करके पौधा होता है, लगभग 6-8 साल में एक बार फूल आता है। बांदा करके गांव में, हमारे मध्य प्रदेश के गांव में सब लोग बांदा जानते हैं। ये दूसरे पेड़ों पे आता है, पौधा अक्सर परजीवी की तरह रहता है। तो महुए का पेड़ है, आम का पेड़ है, ऐसे पेड़ों पे, अचार का पेड़ है, इस पे बांदा दिखाई देता है। मगर ये जिस बांदा की बात कर रहा हूँ, ये नीला बांदा और लाल बांदा होता है, ये भी इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है। एक आर्चिड होता है, आर्चिड आपने सुना होंगे, बड़े महंगे फूल आते हैं। एक डेफोडिल आर्चिड है, वो भी इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है। और एक कुथ करके पौधा है, ये भी इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। तो ना केवल जंतुओं को हमको रक्षा करना है, अपितु हमको पेड़ पौधों की रक्षा भी करना चाहिए। और इसके लिए, रक्षा के लिए, मैं मैथिली शरण गुप्त की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं उनको उद्धृत करूँगा कि करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ।
6: आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
5: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आमने सामने,
2: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज आपने चर्चा सुनी लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस पर। विषय विशेषज्ञ थे पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश बाघमारे। आपसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
7: आमने सामने, कुछ खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात का, कुछ खास व्यक्तित्वों से आपकी बात का बहाना, ये कार्यक्रम
1: उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रसारण सभा में अभी आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
8: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर बाद हम लेकर उपस्थित होते हैं आज की अगली प्रस्तुति। जी हाँ, कार्यक्रम वागर्थ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर यह है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम वागर्थ।

0: श्रोताओं, दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू होते हैं। जब हम सुखी होते हैं तब दुख को हरगिज याद नहीं करते, लेकिन जब दुखी होते हैं तो सुख को ढूंढते रहते हैं। जब एक साहित्यकार इन दोनों पहलुओं को आंकने लगता है तब उनकी कलम सच्चे मायनों में चंद ऐसे किरदारों को जन्म देती है जो कहीं सुखी लाल और कहीं दुखी लाल के नाम से जन्म लेते हैं। श्रोताओं, सुख और दुख के इन दोनों पहलुओं को हमारे आज के मेहमान ने बखूबी परखा है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी। आप संयुक्त संचालक जनसंपर्क संचालनालय से हैं। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लेखन के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी, आपका रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमने कार्यक्रम में परिचय में बताया कि सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, और आपने अपनी एक रचना में दुखी लाल के किरदार को जन्म दिया है और उसी के रूप में आप लिख रहे हैं। कुछ बताएं उस किरदार के बारे में और उस रचना के बारे में।
1: ये दुखी लाल एक ऐसा करेक्टर है जो आपको अपने आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो जहाँ एक और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर दुखी हो सकता है, वो दुखी हो सकता है आपके बढ़ते हुए कद को देखकर, वो दुखी हो सकता है समाज की विद्रूपताओं को देखकर, वो दुखी हो सकता है समाज में असमानताएं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और को शायद परेशान न करती हों लेकिन दुखी लाल को बहुत परेशान करती हैं।
0: तो ये जो दुखी लाल का जो किरदार है वो आपने किस शैली में लिखा है? ये व्यंग है, कहानी है या क्या है इस किरदार में, इस रचना में स्पेशली आप क्या लिखते हैं?
1: ये व्यंग लेख है
0: जी।
1: जो लगातार मेरी एक यहाँ से साहित्यिक पत्रिका जो प्रकाशित होती है साहित्य सागर
0: जी।
1: उसमें नियमित रूप से मासिक पत्रिका में मासिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पिछले दिनों, अब तो थोड़ा समय हो गया, एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ
0: जी जी।
1: दुखी लाल जी इस बात से दुखी हो गए।
0: अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने?
1: उनका दुख ये नहीं है कि वो गाना पॉपुलर क्यों हुआ, उनका दुख ये था कि वो मेलोडी कहाँ गई।
0: अच्छा।
1: वो जीवंत जो गीत थे जो आज भी लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर करते हैं और जो एक दिशा देते हैं, जिनमें न केवल रस था, न केवल सौंदर्य था, न केवल उसमें जो गीतात्मकता थी वो थी, बल्कि वो हर आदमी की जुबान पर आसानी से चढ़ने वाले गीत हुआ करते थे। अब जैसे यही गीत अब आज देख लीजिए आप, वो कुछ दिन पता नहीं कितने हिट्स हुए, कितना क्या हुआ, किन किन ने गाया, किन किन ने गुनगुनाया, लेकिन गायब हो गया। तो लगता है दुखी लाल का दुख इस हिसाब से सही था।
0: ये तो बात हुई गीत की। गीत के अलावा और ये किरदार जो दुखी लाल है वो किन बातों से दुखी होते हैं?
1: अब दुखी लाल, बीच में विवाद चला भोजताल का कि नाम बदलना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, दुखी लाल इस बात से भी दुखी हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा, जो वाद विवाद की विषय जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भोपाल का ताल बना था तब उसने ताल ठोक के कहा था कि सूख जाऊं तो नाम बदल देना, इन दिनों लगातार सूख रहा है तो नाम तो बदलना पड़ेगा।
0: अच्छा। चलिए, ये तो बात हो गई व्यंग की। व्यंग के अलावा और क्या क्या लिखते हैं भरद्वाज जी?
1: शुरुआत तो कविता से ही हुई
0: जी।
1: मैं शिवपुरी से हूँ
0: जी,
1: मेरा जन्म ग्वालियर संभाग के शिवपुरी में हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा साहित्यिक वातावरण रहा। हालांकि शिवपुरी एक और अपने नैसर्गिक सौंदर्य, सघन वन संपदा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण तो विख्यात है ही, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में भी इसका योगदान रहा है
0: जी।
1: यह ग्वालियर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है, नेशनल पार्क और टूरिस्ट विलेज भी आकर्षण का केंद्र हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर साहित्यिक वातावरण भी कम नहीं रहा। वहाँ पर नियमित रूप से कवि सम्मेलन और इस तरह की साहित्यिक आयोजन निरंतर होते रहे, जो बचपन से ही मुझे सुनने को, पढ़ने को मिले और मुझे लिखने का शौक हुआ। मैंने कविताओं से शुरुआत की और कहना चाहिए पहले तो छंद मुक्त कविता ही लिखी। जैसे एक छोटी सी कविता।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं और हमारे श्रोताओं को ये कविता सुनकर वाकई अच्छा लगेगा।
1: एक छोटी सी कविता, मेरे मीत तुम चाहते हो मैं भी लिखूं प्रेम के, प्यार के, विरह के, श्रृंगार के सुंदर सुमधुर गीत, लेकिन मेरे मीत मैं ही अगर गाऊंगा सपने सजाऊंगा तो कहेगा कौन, मत रहो मौन कौन द्वार द्वार अलग जगाएगा, इसलिए मैं गाता रहूँगा, देश विदेश सुनाता रहूँगा, नव उमंग ले नव सृजन के जागरण के गीत, मेरे मीत जागरण के गीत।
0: क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये तो बात हो गई आपकी शुरुआती दिनों की रचनाओं की। जैसे समय बीतता जाता है, हर रचना में परिपक्वता आती जाती है। उसके बाद की कोई रचना आप सुनाना चाहें, जब आपको लगा कि हाँ अब मैं और अच्छा लिखने लगा हूँ।
1: एक मुक्तक देखिए
0: जी।
1: अधूरा स्वप्न भी तो प्यार का अभिमान होता है, अधूरा स्वप्न भी तो प्यार का अभिमान होता है, विरह की वेदना उर्मे अधर पर गान होता है, जन्म से ही मृत्यु का भय मानने वालों, मरण का आखिरी पल भी कभी वरदान होता है, मरण का आखिरी पल भी कभी वरदान होता है।
0: बाकी बहुत खूब।
1: एक गजल पढ़ता हूं मैं
0: जी।
1: उसमें दरअसल वो एक सवाल है उन लोगों से जो जीवन से निराश हो जाते हैं, एक संदेश है उन लोगों के लिए। लोगों, हमने देखा है कि जिंदगी को लोगों ने कई तरह से परिभाषित किया है, लेकिन मेरे विचार से जिंदगी और कुछ भी हो लेकिन जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह, जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह या उलझ रहे मकड़ी के जाल की तरह, जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह या उलझ रहे मकड़ी के जाल की तरह, कल क्या हो इसकी फिक्र आज क्यों करें, कल क्या हो इसकी फिक्र आज क्यों करें, हाँ आज तो जिए खुशहाल की तरह, गम की चादरें हैं तो सहज कर रखें, गम की चादरें हैं तो सहज कर रखें, न फेंक दें फटे हुए रूमाल की तरह, न फेंक दें फटे हुए रूमाल की तरह, दो चार कदम और जानबे मंजिल बढ़ें मंजिल की तरफ, दो चार कदम और जानबे मंजिल बढ़ें, बैठे क्यों सिकुड़कर बूढ़ी खाल की तरह, और मरकर सुखी मिलेगा क्या जमानत है, मरकर सुखी मिलेगा क्या जमानत है, मौत तो एक ख्याल है हसीन ख्याल की तरह, मौत तो एक ख्याल है हसीन ख्याल की तरह।
0: वाकई बहुत खूब, बहुत बढ़िया सुंदर रचना आपने सुनाई। अब बात करते हैं कि जिन दिनों आपका लेखन की तरफ रुझान बढ़ा, किन्हें आप पढ़ा करते थे, किन्हें सुना करते थे, किस तरह का वातावरण था उन दिनों?
1: दरअसल शिवपुरी में साहित्यिक वातावरण हमेशा ही प्रभावी रहा है
0: जी।
1: बचपन से ही सुनते पढ़ते रहने से पता नहीं कब लिखने का शौक लग गया। लिखते लिखते पहले स्थानीय समाचार पत्रों, फिर ग्वालियर के दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्रों के साहित्य परिशिष्टों और बाद में राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ
0: जी।
1: रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारण भी होता रहा। दरअसल वो ऐसी उम्र थी जब लगता था कि हम लिखते तो इतना अच्छा है लेकिन हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोगों ने, हम उम्र युवाओं ने मिलकर एक साहित्यिक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा तरुणोदय साहित्य सभा। इस संस्था की नियमित गोष्ठियां हमने आयोजित की जहां सुनने सुनाने का मौका मिलता था। फिर इसी संस्था द्वारा प्रतिमाह एक विशिष्ट गोष्ठी भी आयोजित की जाती थी। विशिष्ट इस मायने में कि हम आसपास के किसी एक वरिष्ठ कवि को बुलाते थे और उनका काव्य पाठ हम कराया करते थे। इस काव्य पाठ से जहां हमें ये जानने को मिलता था कि आज क्या लिखा जा रहा है, वहां हमें अपने दोषों को खुद सुधारने की प्रेरणा भी मिलती
0: जी।
1: तो इस तरह से वहां पर हुआ। हमारे गुरु रहे हैं राम कुमार जी चतुर्वेदी चंचल, वो वीरस के कवि जाने माने, उन्होंने लाल किले से कवि सम्मेलन, लाल किले में जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें कई बार काव्य पाठ किया। वीरस की रचनाओं की प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। और व्यंग का जहाँ तक सवाल है तो रेडियो में एक कार्यक्रम निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने बात बात में पता नहीं क्या देखा और उन्होंने ये कहा कि भाई आप व्यंग बहुत अच्छा लिख सकते हो। उन्होंने मुझे व्यंग लिखने के लिए प्रेरित किया और न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्होंने मुझसे खूब लिखवाया। तो व्यंग के लेखन में जिसे कहते हैं लेखनी सुधारने का मौका मुझे उस समय मिला और अब धीरे धीरे लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है।
0: जैसे आपने बताया कि वीर रस की कविताओं की तरफ भी आपका रुझान हुआ, तो देशभक्ति को लेकर के आपने कुछ अगर लिखा हो वो हमारे श्रोताओं के साथ बांटें।
1: जी मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको।
0: हाँ जी।
1: इधर हम देखते हैं स्वप्न, इधर हम देखते हैं स्वप्न कि हमारे बाजुओं के साथ उग आए हैं दो पर पंख, इधर हम देखते हैं स्वप्न कि हमारे बाजुओं के साथ उगाए हैं दो पर, उधर हमें लगता है कि कुछ और नीचा हो गया है आसमान का सर, मगर हम भूल जाते हैं कि छू नहीं सकते आकाश, केवल सपने या एहसास, बल्कि आकाश छूने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, बुलंद हौसला और आत्मविश्वास।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने चर्चा की थी कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, तो कौन कौन सी पत्र पत्रिका थे, कौन से समाचार पत्र थे और किस तरह का रुझान प्राप्त होता था पाठकों का आपको?
1: पाठकों का आमतौर पे तो बहुत अच्छा लगा। दरअसल मेरी कोई स्वतंत्र पुस्तक तो अभी तक नहीं आई है
0: जी।
1: लोग कहते हैं कि निकालना चाहिए, लेकिन एक तो शासकीय सेवा की व्यस्तताएं मान लें, या ये मान लें कि उस दिशा में कभी कुछ सोचा नहीं कि ऐसा करना चाहिए। बाकी समाचार पत्र तो दैनिक मध्य प्रदेश के जितने हैं, बाद के जो हैं उनमें आप छोड़ दें, तो अधिकांश ख्याति प्राप्त पत्रों में, चाहे वह नई दुनिया हो या भास्कर हो, उनमें मेरा प्रकाशन हुआ है। पत्रिका मुक्ता दिल्ली प्रकाशन की पत्रिका है
0: जी,
1: उसमें भी मैं प्रकाशित हुआ हूँ, और इस तरह से प्रकाशन लगभग लगभग छुटपुट चलता रहा है।
0: हम चाहेंगे कि बातों के बीच बीच में एक एक आपकी रचनाओं का आनंद हमारे श्रोता लेते रहें। अब कौन सी रचना आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
1: फिर एक कविता में पढ़ता हूँ आपको।
0: जी बिल्कुल।
1: ए दोस्त, मैं जानता हूँ कि आज मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ। ए दोस्त, मैं जानता हूँ कि आज मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, और तुम मेरी विवशता पर हंस रहे हो। लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि मैं सुबह के सूरज की तरह विश्व का सारा अंधेरा पी लूँगा, तुमको, उसको, अखिल विश्व को जीवन भी दूंगा, क्योंकि मैं युवक हूँ, अगस्त्य की संतान हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं महान।
0: बहुत हो, मैं तरुण हूँ, मैं महान हूँ। अगर आप में ऐसी भावना हो कि आप अंधेरे को दूर कर सकते हैं सूरज की तरह, ये मादा अगर आप में है, तो आप हर, कहना चाहिए कि बाधा को पार करते हुए, आप, जीत आपके हाथों में होगी। हमारे युवाओं में आजकल भटकाव देखा जा रहा है। अगर बात करें साहित्य की, तो साहित्य या उन्हें पढ़ने नहीं मिल रहा है या वे पढ़ना नहीं चाहते हैं, दोनों स्थितियां हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो साहित्य आसपास देखने, पढ़ने, सुनने में है।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल मैंने जो महसूस किया है या जो देखने में आया है, लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि अब उतनी रही नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये दूरदर्शन का प्रभाव हो सकता है, इतने चैनल हो गए हैं, कंप्यूटराइजेशन भी है, कंप्यूटर में भी इतना कुछ मिल जाता है कि वो जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि अब उतनी नहीं रही। लोग सब कुछ खोज सकते हैं कंप्यूटर पर, वो वहाँ पर सर्फिंग में उनको ज़्यादा मज़ा आता है बजाय पढ़ने के। लेकिन फिर भी ये तो है कि लिखे हुए शब्दों का अस्तित्व न कभी समाप्त हुआ था, न होगा। लोगों के लिए वे हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, और युवा पीढ़ी से धीरे धीरे, हो सकता है जब वो ऊब जाएंगे इन सब से, तो फिर पुस्तकों की तरफ आएंगे।
0: कहा जाता है जब कोई रचना बनती है, जब लिखी जाती है, तो तब कवि या लेखक के मन में सिर्फ विचार होते हैं, लेकिन जब उन विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को भी और जो उस रचना से जुड़े होते हैं, चाहे पाठक के रूप में या श्रोता के रूप में। आपकी कई रचनाओं को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कुछ उनके बारे में बताएं।
1: ये बात सही है कि जैसे जैसे पुरस्कार मिलते हैं, वैसे वैसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको मैं एक प्रतिक्रिया के रूप में लेता हूँ, कि यदि पुरस्कार मिलता है या लोग किसी रचना को सराहते हैं, तो लगता है कि मुझे इस तरह का लेखन और करना चाहिए, और वो प्रेरणा मिलती है।
0: तो अभी हाल ही में जो आपको पुरस्कार महामहिम राज्यपाल जी से मिला है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: ये एक समग्र लेखन के लिए, कहना चाहिए, मुझे मिला है, और जो साहित्य सागर के संपादक हैं, दरअसल मेरा ये 60वां जन्म दिवस था, इसलिए उस नाते हीरक सम्मान के रूप में मुझे ये पुरस्कार दिया गया, और उस समय नटवर सम्मान एक गीत का सम्मान होता है जिसमें वो राष्ट्रीय गीत उत्सव होता है उसमें वो नटवर गीत सम्मान देते हैं, उस मौके पर ये सम्मान मुझे दिया गया।
0: जैसे कि आपने बताया कि सम्मान भी मिल रहा है और आप काफी समय से लिखते आ रहे हैं, इन दिनों किस रचना पर काम कर रहे हैं आप?
1: फिलहाल तो मैं केवल दुखी लाल
0: के कैरेक्टर में डूबे हुए हैं,
1: उसी में अभी तो वही चल रहा है, आगे देखें।
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, कौन सी रचना अपनी उन्हें सुनाना चाहेंगे?
1: एक चार पंक्तियों से एक मेरी रचना है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, किंतु कितनी दूर कह तो अब सवेरा है, फैल जाएगा उजेला दो घड़ी तो बीतने दे, फैल जाएगा उजेला दो घड़ी तो बीतने दे, मीत अमृत सुख मिलेगा पीर प्याला रीतने दे, फिर बताना किस जगह तमका बसेरा है, मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, किंतु कितनी दूर कह तो अब सवेरा।
0: वाकई बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई। सुरेंद्र भारद्वाज जी, आप रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में आए, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से, व्यस्तताओं के बीच में से आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके श्रोताओं तक पहुँच सकूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वागर्थ। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: हाँ बेटा कैसू? अरे आपने, क्योंकि आपके गुरु सुंदरलाल जी है।
2: हाँ।
1: ने मधुसूदन ने मार्च लिखे के बसंती रंग जमाए।
2: बसंती रंग जमाए।
1: अच्छा अब हमारे आप ये बताओ, क्या आपका मन में यो क्रांति को विचार आयो कहां से?
2: अरे बेटा या तो घनी बड़ी बात पूछ ली तेना हमारा से। जदे में छोटो थो तुम्हारा एक काका जी देश छोड़ी के चली गया, ने भी वहां से क्रांतिकारी गतिविधि चला गया था। और हमारा एक काका जी के अंग्रेज सरकार पकड़ी के ले गई।
1: अच्छा।
2: जद से ही मारो अंग्रेज सरकार का खिलाफ हुई।
1: फिर कही हो?
2: बेटा जदे में छोटो थो तो पिताजी के साथ खेत पे भी जातो थो।
1: अच्छा।
2: तो सुन मैंने कहीं तो मैं बोलो पिताजी।
1: हाँ?
2: यो जो तुम धान उगाओ खेत का माए।
1: अच्छा।
2: तो मैं भी बंदूक उगाऊंगा खेत का माए।
1: फिर पिताजी कहीं बोलिया?
2: अरे बेटा पिताजी बोलिया कि बेटा हमारा खेत में तो धान उगे है जिससे ही सबको पेट भरी हो जाए।
1: सही बात है। फिर आपने कही क्यों?
2: मैं बोलो पिताजी बंदूक भी ढेर उगेगी जो दुश्मन के मार भगाए।
1: वाह। फिर आगे कही?
2: अरे बेटा फिर हमारा पिताजी बोला कि जा भगत घरे जा। मैं बोलो पिताजी बालक हूँ, बालक हूँ पन समझूं पीर पराई रे, अंग्रेजों का घाव की नहीं भर पाई रे।
1: सही बात।
2: बेटा भीतर हो पिताजी घरे आई रे।
1: अच्छा।
2: पिताजी का पाछे पाछे पाछे पाछे घूम तो मैं भी घरे गई। मैं बोलो पिताजी महाराज से इन काकियों को दुख नहीं देखो जाए, इन काकियों को दुख को कारण ही अंग्रेज सरकार है।
1: फिर
2: पिताजी बोलिया बेटा महाराज तो अभी नानो है, इतरो समझे योज बहुत है।
1: यह बात तो मैं कहूं हूं कि भारत का बच्चा बच्चा होन के सीखनी चाहिए।
2: एकदम सही बात है बेटा।
1: है सही बात।
2: देख बेटा मैंने गदर से जुड़िया सगला नेता उनके बारे में सुनियो है।
1: अच्छा।
2: जैसे गांधी जी, करतार सिंह सरावा, लाला लाजपत राय और हमारा चाचा अजीत सिंह जी और भी कई सर।
1: फिर
2: अरे जदे में थोड़ा बड़ो हुई हो तो पिताजी मारे बता रहे था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने घणो अत्याचार करियो।
1: ये सो तो कई अत्याचार करो करियो जरा हमारे भी सुनाओ।
2: सुन मारी बात। सुना।

0: मैडम, इन्हीं घटना का बाद गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करी थी, पर मारे तो पाठशाला जानो थो नहीं। मैं भाजी के जलियांवाला बाग गई हूँ और देखियो कि अंग्रेज पुलिस को घड़ो पहनो, पर मैडम मैं अंग्रेज पुलिस से बच तो बचा तू, शुभ तो हूँ वो जलियांवाला बाग मुझे। शहीदों की खून से सनी मिट्टी सीसी में भरी के बैठक, धरती माँ के प्रणाम करके ने घरे पहुंची। तुम्हारी माँ ने बेन दो ही परेशान हो रही थी, पर हमारी माँ तो कहीं नहीं बोली, हमारी बेन बोली पड़ी।
1: अच्छा,
0: माँ माँ भगत आई जो माँ बोली, क्यों रे तू पाठशाला तो नहीं गई, तो फिर कहाँ गए तू? मैं बोलियो हमारी माँ हमारी बहन देख ही नहीं सीसी के, मैं शहीदों की मिट्टी लेवाने जलियांवाला बाग गयो थो, मैं एक ही पूजा करूंगा।
1: तो जल ऐसो अत्याचार करियो जनरल डायर ने?
0: आओ मित्राओ तुम्हारे ही बताऊं कि जलियांवाला बाग अत्याचार का बाद आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नाम की जगह पे कहीं करियो
1: कहीं करियो। हाँ बताओ।

0: साथियों, इन्हीं घटना का बाद मारा मन में घनी उथल पुथल मची थी। मारे भी करतार सिंह सराबा का रास्ता पर चलना था, तो मैं पिताजी से बोले, पिताजी मारे भी आगे की पढ़ाई का वास्ते कॉलेज जानो।
1: अच्छा, फिर?
0: अरे पिताजी घड़ा घुस हुई गया।
1: अरे
0: पिताजी बोलिया, बेटा भगत, मैं भी तो यही सोच रहे थो कि तू आगे और पढ़ाई करे और देश का वास्ते काम करे।
1: सही बात
0: मित्रों। फिर इन्हीं तरह मैं नेशनल कॉलेज लाहौर पहुंची, वहां हमारे कई नौजवान क्रांतिकारी साथी मिले।
1: अच्छा, हो
0: और अब मैं भी क्रांतिकारी बनी गयो। तो इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
0: वहां हमारा साथियों ने नौजवान भारत सभा नाम की पार्टी बनाई।
1: अच्छा,
0: पर पैसा की तंगी के कारण हमारा साथियों के ट्रेन तक लूटनी पड़ी, जो काम हमारे बिल्कुल पसंद नहीं था।
1: फिर आगे क्या हुआ?
0: यो काम उन्होंने 7 मार्च 1925 को काकोरी में किया।
1: बताओ बताओ, ये काम उन्होंने किनी तरह करी?
0: यो भी सुनो,
1: बताओ।

0: मित्रों कई बात है, आजाद जी और लाला जी अभी तक नहीं आए।
1: हाँ, आजाद जी ने लाला

0: वो आ जाती। आप सभा में आइया, सभा की रौनक बढ़ी। अबे मारो निवेदन तो आपसे कि जब आप आया हो तो थोड़ा सभा को अपने परिचय दे।
1: तो लो अभी दे रहा।

0: साथियों, भारत में साइमन कमीशन का सदस्य आया हुआ है। वे कोई नयो कानून लागू करे जिका पहले उनके यहाँ से बाहर भगाना।
1: हाँ मित्रों, 20 अक्टूबर 1920 का दिन साइमन कमीशन लाहौर आयो है और हम सबके मिली के उनका खिलाफ प्रदर्शन करना है। एक खास बात और मित्रों, इन्हीं प्रदर्शन में लाहौर की जनता भी हमारा साथ है शामिल हुए।
2: यार तो बहुत अच्छी बात है।
1: और लाला जी, आप सबसे आगे रहो।
0: ठीक है।

0: मित्रों, लाला जी की कहीं खबर है कि नहीं है?
1: अभी तक कोई खबर नहीं है।
2: साथियों, इलाज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई, विदेश में शहीद हुई गया।
0: लाला जी शहीद हुई गया है देश में।

0: साथियों, हमें लालाजी की मौत का जिम्मेदार जेम्स स्कॉट के मौत की सजा देनी है।
1: हाँ साथियों, देनी है।
2: जयपाल, तुम्हारे स्कॉट की निगरानी रखनी है।
3: हाँ और राखूंगा।
0: भगत, तुम पिस्तौल चला दो, मैं निगरानी रखूंगा पुलिस से।
4: भगत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
2: ठीक है, तो फिर आओ तुम हमारे साथ है।
4: चलो।

0: अरे यो तो स्क्वाड नहीं सैंडर्स मेरी क्यों?
1: भागो भगत, भागो पुलिस।
2: चलो अच्छो वो इसका नहीं तो सैंडर्स मरी क्यों? अरे मरी क्यों
3: देश को दुश्मन।
0: साथियों सब तो ठीक है पर पूरा लाहौर शहर में पुलिस फैली हुई है। मैं दुर्गा भाभी का साथ कलकत्ता जा रही हूँ। तुम सब भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंचो।
2: ठीक है भगत।
0: ठीक है इंकलाब
3: जिंदाबाद
0: वंदे
3: मातरम।
2: पर साथियों सांडस हत्याकांड के बाद में अंग्रेजी सरकार बौखलाई गई है। चप्पा चप्पा पे निगरानी बढ़ाई दी गई है। तुम भी अपनो ध्यान रखो साथियों।
0: तो ठीक है साथियों
4: तुम भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंच जाओ।
0: मैं भी छिपता छिपाता अपना ठिकाना पे पहुंच जाऊंगा।
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
6: अरे हाँ धनलाल कई बात है।
7: हेलो
8: कहीं से
4: सांडस की हत्या की खबर तो तुम लोगों ने सुनी होगी।
0: जी
8: सुनी साहब।
4: उसमें एक और खबर है।
6: वाकई सर
4: उसके अपराधी हमारे शहर में कहीं घूम रहे हैं। पूरे शहर में फैल जाओ उसको ढूंढ निकालो।
8: जी साहब
4: जाओ।
6: चल ढूंढ यार।
4: अरे मिलियो कहीं?
6: नहीं मिलियो यार।
4: देख देख देख देख देख देख
9: अब कहाँ ढूंढा एक धरती पे समझ लो कहाँ
4: समझ भी नहीं आएगी कहाँ ढूंढा तो कहाँ मार परेशान हो गया यार कब इधर अंग्रेज जीवन नहीं दे रहा हमारे कहीं करे यार दादा। अरे पहला थकी गया मैं
2: क्या था अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: जाओ ढूंढो से।
6: जी साहब
4: चल
6: चल।
1: कलकत्ता में राजनीतिक दल ने अंग्रेज सरकार का बीच एक बहुत बड़ा अधिवेशन चली हुई थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग पर ठुकराई दी ने जनता तो पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ी हुई थी ने आई अपनो भगत दुर्गा भाभी का साथे कलकत्ता पहुंची गयो बेस बदली के। पर कलकत्ता में राजनीतिक दल उनकी बात सुनी गई इनको मन बहुत दुखी तो भी पाछा पाछा दिल्ली आई गया। देखो देखो दिल्ली में कहीं करी जा रही और अभी अपना साथी उनका साथे मीटिंग करी रिया।
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद
3: वंदे
5: मातरम
3: इंकलाब
5: जिंदाबाद।
10: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन अकादमी के सभागार में स्पिक मैगी की ओर से संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस शाम को पंडित कुमार गंधर्व की पुत्री व शिष्या गायिका विदुषी कलापिनी कोमकली ने अपने सुरों से सजाया। कलापिनी ने अपनी प्रभावी आवाज को जटिल शास्त्रीय संरचनाओं के साथ सहजता के साथ पेश किया। उन्होंने गायन की शुरुआत राग मधुवंती की बंदिश और राग केदार में ओजस्वी मंगलाचरण से की। इसके बाद राग नंद में गोविंद बिन बजाए और दूजे के संग नहीं जाऊंगी गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों के विशेष आग्रह पर उन्होंने मीराबाई का भजन और एक खालिस मालवी रचना प्रस्तुत की, जिससे वातावरण और भी अधिक भावपूर्ण हो गया। इस संगीत में शाम का लुत्फ एमपी शासन और बिहार प्रशासन अकादमी से आए प्रशिक्षुओं ने लिया। मंच पर विदुषी कलापिनी का तबले पर संगत किया रामेंद्र सिंह ने और हारमोनियम पर दीपक खसरावल ने संगत दी।

अपने डायनेमिक परफॉर्मेंस और दिलकश अंदाज से युवाओं को मंत्रमुग्ध करने वाली मशहूर सिंगर जैस्मिन सैंडल्स ने TIT में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में जमकर धमाल मचाया। जैस्मिन ने अपने इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक हिट गानों पर युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कॉन्सर्ट की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने फैंस को झुमके और नेकलेस भेंट किए। आत्मविश्वास से भरी उनकी प्रस्तुति और दर्शकों से सीधे संवाद ने इस शाम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हुए कहा कि खुद पर विश्वास रखो, यही सफलता की कुंजी है। ये भव्य समारोह TIT टेक्नोक्रेट ग्रुप के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाला ये संस्थान वर्षों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक उत्थान का प्रमुख केंद्र रहा है।

पैदा भोपाल की बातें कमाल की, कौम के ख्याल की, ने कमाल की, खाला कमाल की। इस गीत के साथ जब रविंद्र भवन के सभागार में अदाकार ग्रुप ने कलाकारों द्वारा नाटक खाला कमाल की शुरुआत की तो दर्शकों को पता चल गया कि ये खाला यानी मौसी कैसी हैं। भोपाल की तहजीब, तमीज़ और सबको अपना लेने वाले अंदाज के लिए ये खाला एक सशक्त महिला को मंच पर लेकर आती हैं। इस मजबूत महिला का किरदार मंच पर स्वास्तिका चक्रवर्ती ने निभाया। नाटक के निर्देशक फर्रुख शेर खान हैं। नाटक की कहानी रफ़ी शब्बीर ने लिखी है। इस प्रस्तुति की आयोजक विमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट सोसाइटी है। भोपाली लहजे को समेटे खाला के पति दंगों में चल बसे, दोनों बेटे गैस त्रासदी का शिकार हो गए। ऐसे में खाला अपने घर में अकेली हैं। कहती हैं, खाली घर ने मुझे खाला बना दिया। खर्चे निकालने के लिए जरदोजी का काम करती हैं, मोहल्ले वालों के लिए खाला हैं, किसी को अस्पताल जाना हो तो खाला मौजूद। मदद के लिए अपने गहने तक बेचकर पैसे देती, किसी की शादी कराती, मगर किसी से पैसे लेती नहीं हैं। कहती हैं, सरकार तो तब भी पैसे दे रही थी जब गैस में दोनों बेटे चले गए थे, मैंने वो मदद नहीं ली, तो मेरी मदद तो मैं अपने पैसों से ही करूंगी। कार्यक्रम में कलाकारों, रंगकर्मियों और शिल्पकारों को विशिष्ट सेवा सम्मान 2026 से सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपने काम के जरिए समाज में सकारात्मक चेतना को सशक्त किया है। रंगमंच के क्षेत्र में रंगकर्मी उदय शहाणे, सरोज शर्मा, स्वास्तिका चक्रवर्ती, फर्रुख शेर खान, रफ़ी शब्बीर, सरफराज हसन और हमीदुल्ला खान यानी मामू को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा सम्मान शादाब दस्तगीर को प्रदान किया गया। वो प्रसिद्ध रेलकर्मी स्वर्गीय गुलाम दस्तगीर के बेटे हैं। वहीं आकांक्षा वर्मा और कीर्ति सिन्हा को स्पेशल अवार्ड 2026 प्रदान किया गया।

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गायक अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर रियलिटी शो इंडियन आइडल में दिखाई देंगे। सोनी टीवी के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो के विशेष एपिसोड में अनिल श्रीवास्तव अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दिखाई देंगे। ये विशेष एपिसोड इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष एपिसोड की शूटिंग यशराज स्टूडियो में हुई है। विशेष एपिसोड में किशोर कुमार के चाहने वालों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान अनिल श्रीवास्तव ने प्रतिभागी सोहेल के साथ मिलकर किशोर कुमार का एक लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किया। दोनों कलाकारों की जुगलबंदी ने मंच पर ऐसा समा बांधा कि पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। जजों और दर्शकों ने उनकी प्रस्तुति की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अनिल ने अपने जीवन से जुड़े कई भावुक और प्रेरणादायक अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वे किशोर कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी गायकी ने उनके जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार की आवाज़ और व्यक्तित्व ने उनके जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। अनिल इससे पहले भी एक चर्चित शो K4 किशोर में सिंगर रह चुके हैं। किशोर कुमार की शैली में गायन कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। गुना भोपाल निवासी अनिल की इस सफलता से सभी को खुशी हुई है और वो चर्चा में हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा के आज के अंक से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। आज की इस सभा में आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। फिलहाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कुछ देशभक्ति गीत।

0: किताबों को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ।
1: अच्छा।
0: उनके पास लंदन के अंग्रेजी अखबार भी आते हैं। मैं वो रोज पढ़ता हूँ।
1: पर तू अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा?
0: यही तो हम भारत के लोगों की कमजोरी है माँ। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए। ये सोच गलत है माँ। हमें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई विश्व की घटनाओं की जानकारी मिल सके।
1: तू खाना खा ले, तेरी ये गूढ़ बातें मेरी समझ में नहीं आती।
0: तेरी समझ में वेद तो आते हैं ना माँ।
1: हाँ।
0: तो मैं सोच रहा हूँ कि वेदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके पूरे विश्व को बताऊं कि हमारे भारत की संस्कृति और ज्ञान कितना समृद्ध है।
1: अच्छा। तू सब कुछ कर सकता है राम, ऐसा जरूर करना।
0: माँ माँ मा।
2: उस दौर में स्कूल व विश्वविद्यालयों में संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई जाती थी। बहुत ही कम लोग वेस्टर्न साइंस पढ़ते थे, जो कि अंग्रेजी भाषा में ही होती थी। उस समय राम मोहन ने अंग्रेज जॉन डिगवे के साथ काम करते करते बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी, पढ़नी और लिखनी सीखी।
1: जब सन 1814 में जॉन डिगवे को इंग्लैंड जाना पड़ा, तो राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता लौट आए और बाकी का जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वे अंग्रेजी भाषा सीखने को महत्व देते थे। इस कारण कुछ ईसाई मिशनरीज को उनके बारे में गलतफहमी हो गई।
3: माय चाइल्ड राम मोहन।
0: यस फादर।
3: तुम अंग्रेजी भाषा सीखने को इतना महत्व देते हो, then why don't you change your religion? तुम धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते?
0: जी मैं फादर अंग्रेजी भाषा को महत्व देता हूँ, अंग्रेजी कल्चर को पढ़ता और समझता भी हूँ, पर क्या आपने हिंदू धर्म के वेदों को पढ़ा है फादर? मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही उनका अंग्रेजी रूपांतरण किया है। आप पहले उसे पढ़िए और मुझे ये बताइए कि आपके धर्म में क्या ऐसे ग्रंथ और ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके इतने उच्च विचार हो फादर?
3: माय चाइल्ड राम मोहन, ये क्या कह रहे हो तुम?
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ फादर। हमारा हिंदू धर्म इतना उदार है कि वो हर धर्म, जाति और देश को समान समझता है। ईश्वर तो एक ही है फादर, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग जरूर हैं। ईश्वर तो कण कण में है, हर इंसान में व्याप्त है, फिर ये तेरे मेरे का भेद क्यों फादर?
3: नो रामोन, नो। अगर हमारा कल्चर अच्छा नहीं होता तो तुम इतना डीपली हम लोगों से घुलते मिलते नहीं।
0: फादर, हम हर इंसान को एक समानते हैं। वही दो आंखें, वही एक नाक, वैसा ही मुंह और उतने ही दांत। क्या आप लोगों के शरीर और हमारे शरीर में कोई फर्क है फादर? अंतर है तो केवल बाहरी रंग का, है ना फादर? हमारे शरीर भीतर से तो एक जैसे ही है ना। हम तो जानवरों और पक्षियों में भी भगवान ढूंढ लेते हैं फादर। सभी धर्म बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। मैं अपने धर्म और अपने देश से बहुत प्यार करता हूं फादर। फादर, अगर ज्ञान गंदगी में भी पड़ा मिलेगा तो मैं उसे वहां से भी उठाने में हिचकूंगा नहीं।
2: ऐसे थे हमारे राजा राम मोहन रॉय के विचार। उनके आत्मविश्वास, हिम्मत, ज्ञान और जनता के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मुगल बादशाह ने उन्हें राजा का खिताब दिया था।
1: उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने तथा महिला शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा देने की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने जैसे विचारों वाले दोस्तों के साथ मिलकर एक सभा बनाई, आत्मीय सभा। इस सभा में वो एक ही हॉल में बैठकर धर्म चर्चा करते थे, वेद पाठ करते थे और सामूहिक मंत्रोच्चारण करते थे।

0: इस एसोसिएशन का हमारा अगला उद्देश्य क्या होगा?
1: राधा कांत जी, राजा राम मोहन रॉय जी को आने दीजिए, फिर फैसला कर लेते हैं।
2: माधव कांत जी,
0: अगर राजा राम मोहन रॉय नहीं होंगे तो क्या हम कोई फैसला नहीं लेंगे? हमारी कोई अहमियत नहीं है।
1: देखिए देखिए, आप नाराज मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है राधा कांत जी, वो तो इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं। अब कर्टेसी से एक हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो बस आते ही होंगे।
3: Why do you argue unnecessarily? हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। जब राजा राम मोहन रॉय आएंगे तो he will join us, वो हमारी बातों में शामिल हो जाएंगे। Listen, हमारा अगला उद्देश्य तो एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना है जहां हर प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
1: जी हाँ, भारत के बच्चे फिजिक्स, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स और सभी तरह के विषयों में पढ़ाई कर सकेंगे।
0: बिल्कुल। इस शिक्षण संस्थान में जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी, I will invest.
3: Wow, it's nice. Clapping.
0: मैं इस शिक्षण संस्थान पर पूरा पैसा लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर राजा राम मोहन रॉय इस एसोसिएशन का मेंबर रहेगा तो मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा।
1: एक मिनट राधा कांतो जी, आपको शायद याद नहीं रहा कि राजा राम मोहन रॉय इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं।
0: जो कुछ भी हो, मैं पैसा तभी
3: ठीक है। ठीक है, ठीक है राधा कांतो जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं आज अभी इसी समय इस एसोसिएशन को छोड़ता हूं।
1: राम मोहन, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
3: देखिए, एसोसिएशन का कार्य होना चाहिए, मेरा सदस्य होना या ना होना कोई माने नहीं रखता। आप शिक्षण संस्थान बना लें।
1: सन 1816-17 के उस समय में एक शिक्षण संस्थान खोलना, इतना अधिक पैसा लगाना वाकई टेढ़ी खीर थी। पर आहत राजा राम मोहन रॉय ने किसी तरह से पैसा एकत्र किया और अपने बूते पर एक अंग्रेजी स्कूल खोला। इसमें संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, भूगोल और विज्ञान के सभी विषय पढ़ाए जाते थे। उस दौर में विदेश इक्के दुक्के भारतीय ही जा पाते थे। राजा राम मोहन रॉय पहली बार लंदन गए, राजाओं की पेंशन के सिलसिले में। दूसरी बार फिर लंदन गए, वहां की पार्लियामेंट में भारत से सती प्रथा को मिटाने का मुद्दा लेकर। उसके बाद तो राजा राम मोहन रॉय जब भी विदेश जाते, एक ज्ञानी समाज सुधारक भारतीय के रूप में उनका हार्दिक स्वागत होता। एक बार
4: पिताजी।
3: हाँ बेटा।
4: पिताजी ये देखिए, एक निमंत्रण पत्र आया है।
3: हाँ?
4: किन्हीं विलियम रैथबॉर्न का है, वो आपसे अपने देश में मिलना चाहते हैं, आने जाने का टिकट भी दे रहे हैं।
3: अरे विलियम रैथबॉर्न तो यूके के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं।
4: अच्छा।
3: सुना है कि वो पैरालिसिस का शिकार हो चुके हैं।
4: वो लिख रहे हैं कि उनकी अंतिम इच्छा राजा राम मोहन राय यानी आपसे मिलने और बातें करने की है।
3: ओह।
4: आपके स्वागत के लिए वो स्वयं तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके पुत्र जरूर आएंगे।
3: मैं अवश्य जाऊंगा बेटा, अवश्य जाऊंगा और उनसे बातें भी करूंगा।
1: प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम रैथबॉर्न ही नहीं, बल्कि कई देशी विदेशी संस्थाएं विदेश आने पर उनका सत्कार करती थी। राजा राम मोहन रॉय इतने संपन्न थे कि कलकत्ता में विदेशी लोग भी उनसे उधार ले लेते थे। उन्होंने अपना कमाया पैसा लोगों की सेवा और देश के कल्याण के लिए लगाया था। जीवन के अंतिम दिनों में वे लंदन में थे। वहां उन्होंने किसी फर्म में फायदा होने के इरादे से अपना पैसा जमा कराया। पर
4: पिताजी।
3: हाँ बेटा।
4: पिताजी, जिस फर्म में हमने पैसे जमा किए थे वो तो डूब गई है।
3: क्या? लेकिन बेटा, हमारा तो बहुत सारा पैसा उसमें लगा था।
4: हाँ, और मैं आपको बताना ही भूल गया कि आप ही के कुछ दोस्तों ने पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर आप पर केस कर दिया है।
3: केस? और मुझ पर?
4: जी।
3: लेकिन बेटा, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया।
4: ये आपकी शराफत का फल है पिताजी, आपने अपने साफ दिल से उन्हें बहुत सी बातें बताई होंगी, उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है।

0: मेरे साथ चीटिंग की है उन्होंने, मगर नहीं बेटा, मैं अपने पर यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं केस लड़ूंगा बेटा, मैं केस लड़ूंगा चाहे जितना भी पैसा लगे।
1: सोच लीजिए पिताजी, हमारे पास अधिक पैसे नहीं बचे, कहीं खाने के लाले ना पड़ जाए।
0: जो कुछ भी हो बेटा, पर मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं
1: मानूंगा, नहीं मानूंगा। जैसा आप उचित समझे।
2: खुद को निर्दोष साबित करने के लिए राजा राममोहन रॉय ने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उन्हें एक समय के भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था।
3: लंदन में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन रॉय के पंचभूतों की सत्ता समाप्त हो गई। उन्हें वहीं दफना दिया गया। उनका एक दोस्त 1843 में इंग्लैंड गया और उसने राजा राममोहन रॉय को स्टेपलेटन कब्रगाह से निकालकर आर्नो वेल्स में जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और यादगार के लिए भारतीय अंदाज में एक स्मृति चिन्ह बना दिया।
2: आज भले ही राजा राममोहन रॉय हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यों की महक भारतीयों की सांसों में समाई हुई है। उनकी दी शिक्षा प्रणाली से, ज्ञान अर्जन से आज भारत विदेशों से टक्कर लेने में पूरी तरह से सक्षम है। हम ऐसे सूर्य राजा राममोहन रॉय को शत शत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।
5: ये थे राष्ट्र अभिमान के स्वर, देश की गौरव गाथा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।
6: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओ, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था। तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूं। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से 2 सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नृत्य की पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधिया में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रेडिशन।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसे में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। श्रोताओं,
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और उनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, तपती झुलसती गर्मी के ये दिन जिसमें लू लगने की संभावना हो जाती है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे में निर्बल या कहें कि कमजोर व्यक्तियों को लू लगने का खतरा अधिक रहता है। युवाओं की तुलना में बच्चे और वृद्ध इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति भी गर्म हवाओं की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को लू लगी है या नहीं, इसका पता उसके शरीर में हुए परिवर्तनों या लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं। श्रोताओं, लू के शिकार होने पर रोगी को जलन महसूस होने लगती है। बहुत अधिक गर्मी और जलन होने से रोगी बेचैन हो जाता है। हाथ पैर और आंखों में जलन होती है। मुंह सूखना, गला सूखना, बार बार प्यास लगना जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कभी कभी तो नसों में खून जमा भी हो जाता है, जिससे नसें फट जाती हैं और रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसके लक्षणों को हम तीन अवस्था में बांट सकते हैं। लू लगने के बाद की जो पहली अवस्था है, उसमें लू लगती है तो पसीने के कारण त्वचा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। रोगी को बेहोशी, थकावट और कमजोरी होती है। नाड़ी की गति तेज हो जाती है। इस अवस्था में रोगी की मृत्यु कभी नहीं होती है। उचित उपचार से उसे आराम मिल जाता है। लू लगने के बाद जो दूसरी अवस्था होती है, उसमें सिर में भयंकर दर्द, त्वचा में रूखापन और सांस की गति धीमी हो जाती है। रोगी बेहोशी का शिकार भी हो सकता है। और श्रोताओं, लू विकार की तीसरी अवस्था, इसमें बुखार के साथ ही सांस की गति बहुत तेज हो जाती है। रोगी के शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। तो श्रोताओं, गर्मी के दिनों में हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें लू न लगे। पूरी सावधानी हम रखें। अगर घर से बाहर निकलना है तो कोशिश करें कि 12 बजे के पहले पहले अपने काम करके हम घर लौट आएं, और शाम के वक्त यदि काम करने की नौबत है तो वो काम 4 बजे के बाद ही हम करें। और अगर मजबूरी ही है, धूप में बाहर निकलना ही है, तो पूरी सुरक्षा के साथ हमें काम करना होगा। घर से निकलने से पहले कभी भी खाली पेट धूप में न निकलें। भर पेट पानी पीकर घर से निकलें। और आंख, नाक, कान, हम तो कहें कि पूरे चेहरे को ही ढक कर निकलें किसी सूती कपड़े से। लेकिन अगर इन सावधानियों के बावजूद भी आपको लू लग ही जाती है, तो फिर कुछ उपचार भी हैं जिनकी जानकारी हम आपको देते हैं। श्रोताओं, अगर आपको लू लग गई है तो आप प्याज के रस से कनपटियों और छाती पर मालिश करें, बहुत जल्द आराम मिलेगा। आम का पना 3 से 4 बार पिएं, तो भी रोगी को तुरंत आराम मिल जाता है। इसी तरह आलू बुखारे को गर्म पानी में डालकर रखें और उसी पानी में उसे मसल लें। इसे भी आम के पने की तरह बनाकर पीने से लू लगने से होने वाली जलन और घबराहट खत्म हो जाती है। धनिया को पानी में भिगोकर रखें और इस पानी में चीनी मिलाकर पीने से लू का असर कम होता है। इमली का प्रयोग भी लू के असर को कम करता है। इमली का पानी अगर पिएं तो आराम होता है। भुने हुए प्याज को पीसकर उसमें जीरे का चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाएं तो लू से राहत मिलती है। श्रोताओं, तुलसी के पत्तों का रस शक्कर में मिलाकर पीने से लू नहीं लगती है। और इसी तरह ये भी हम जानते हैं कि रोजाना खाने के साथ कच्चा प्याज खाने से भी लू नहीं लगती है। तो इन बातों को अमल में लाइए, अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें, लू की चपेट में ना आएं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की और समाज सेवा में जुट गए। इसी बीच स्वास्थ्य ठीक न होने पर थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भी हो आए, पर उनका मन खिन्न था क्योंकि
1: स्वदेश लौटे स्वामी जी का सर्वत्र बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत तो हो रहा था और वे नवीन कर्मधारा प्रारंभ करने की तैयारी में लगे थे, पर उनकी सफलता पूर्णतः निर्विवाद या निर्विरोध नहीं थी। इस विरोध का किंचित आभास हमें पहले भी मिल चुका है।
0: श्रीलंका के अनुराधापुरम में लोगों ने उनकी सभा में विघ्न डाला। मद्रास के पंडित उन्हें तर्क में हराने आए थे। फिर किसी ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें गैरिक वस्त्र धारण करने का क्या अधिकार है। बंगाल में भी उनके विरुद्ध चार करने वालों की कमी न थी, पर इससे स्वामी जी के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। इस कड़ी में हम लोग इन्हीं विरुद्ध चारों के बारे में जानेंगे।
1: पुरानी बात है, स्वामी जी जब अमेरिका में शत्रुओं के आक्रमणकारी व्यवहारों से परेशान थे और स्वदेश से समर्थन पाने की आशा में जब उन्होंने कलकत्ते में एक सभा आयोजन करने की सलाह दी थी, तब भी कलकत्ते के रूढ़ीवादी समाज में स्वामी जी के जाति के विषय में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी।
0: उस सभा के सभापति बनाने के लिए कलकत्ते के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री मनमोहन मित्र, नगेंद्र नाथ मित्र, भूपेंद्र कुमार बसु, चारू चंद्र बसु तथा कुछ अन्य लोग माननीय गुरुदास बंदोपाध्याय के पास गए थे। जब उनसे उक्त सभा में अध्यक्षता करने की बात कही गई तो वे निरुत्साह दिखाई दिए और कहा,
2: किसी विशिष्ट महामहोपाध्याय पंडित ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद का नाम गुरु प्रदत्त नहीं है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण शास्त्र सम्मत है या नहीं, इस विषय में काफी मतभेद है और सन्यासी होकर दूसरे देश में जाना भी अत्यंत अनुचित है। देखिए, मैंने निश्चित किया है कि इस वृद्धावस्था में मैं किसी धर्म सभा से विशेष रूप से नहीं जुड़ूंगा और न सभापतित्व करूंगा। विशेषकर जिन कार्यों में सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद है उनमें अब मैं फंसना नहीं चाहता।
0: गुरुदास बाबू एक विदेश गमनकारी सन्यासी को हिंदू समाज का समर्थन देने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदास बाबू के अस्वीकार कर देने पर उत्तरपाड़ा के जमींदार राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय से इसके लिए अनुरोध किया गया। वे स्वामी जी के बारे में सब सुनकर सहमत हुए, परंतु सभा में व्याख्यान देते समय राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय महाशय ने स्वामी विवेकानंद नाम पर आपत्ति दिखाते हुए ब्रदर विवेकानंद कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि इस विषय में तब भी उन्हें संदेह था कि कायस्थ सन्यासी हो सकता है या नहीं।
1: 5 सितंबर 1894 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित जिस सभा में स्वामी जी को धन्यवाद दिया गया, उसका विवरण देते हुए अनुसंधान पत्रिका ने जो विवरण दिया है वो विचारणीय है। पत्रिका ने लिखा,
2: पिछले 5 सितंबर बुधवार को टाउन हॉल में हिंदुओं की एक सभा हुई। इस सभा का उद्देश्य था शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठता प्रमाणित की थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना और अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जो विशेष प्रीति एवं सम्मान दिया है, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इस सभा में 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। और हाँ, इस सभा के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। हिंदू पैट्रियट का कहना है कि यह हिंदुओं की सभा थी, परंतु हमारे ब्रह्म सहयोगी समाजी पत्रिका संजीवनी ने लिखा है कि विवेकानंद कभी उनके साधारण ब्रह्म समाज में गायक थे, इसलिए उस दिन की सभा में अनेक ब्रह्म बंधुगण उपस्थित थे। अतएव इसको हिंदू सभा ना कहकर ब्रह्म सभा कहना ही उचित है। इधर हमारे सहयोगी एक बंगाली सज्जन अमेरिका प्रवासी को हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है, अतएव टाउन हॉल की सभा में बंगवासी द्वारा स्वीकृत हिंदू राजा प्यारी मोहन के सभापति होने के बावजूद उनके मतानुसार वो हिंदू सभा नहीं थी। अब कहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए?
0: यहां स्मरण रखना होगा कि बंगवासी के संस्थापक कायस्थ कुल के ही योगेंद्रनाथ वसु थे, तदापि इन दिनों वे ब्राह्मणों द्वारा परिचालित रूढ़िवाद के कार्य में कमर कसे हुए थे और अब्राह्मण विवेकानंद के संन्यास ग्रहण आदि विषयों में विशेष रूप से चिंतित तथा क्रोध से विचलित थे।
1: स्वामी जी की समुद्र यात्रा को लेकर समस्या उत्पन्न हुई उनके स्वदेश लौटने के बाद। घटना स्थल मुख्यतः दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्च 1897 मास के प्रारंभ में जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब वे विदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद काली मंदिर में जगदम्बा को और राधा कांत मंदिर में राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कराए थे। उस दिन दो अंग्रेज महिलाओं ने भी स्वामी जी के साथ मंदिर के उद्यान में भ्रमण किया था। इन रूढ़ीवादी लोगों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई। इसके बाद दार्जिलिंग से लौटकर 21 मार्च को स्वामी जी जब खेतरी राजा के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दर्शन कराए तो इसी घटना को लेकर एक विरोध का सूत्रपात हुआ और रूढ़ीवादी दल ने पत्र पत्रिकाओं की सहायता से इसका प्रतिरोध लिया। इस मामले में बंगवासी पत्र ने ही सर्वाधिक उत्साह प्रकट किया था। बंगवासी का मूल वक्तव्य ये था कि मंदिर के प्रबंधकों ने स्वामी जी को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया। इस विवाद का असली रूप इस प्रकार है।
0: 28 मार्च के इंडियन मिरर में सिंहलवासी यूरोपीय बौद्ध टीजे हैरिसन ने एक पत्र के द्वारा सूचित किया,
2: यद्यपि 27 मार्च के भंगवासी में खेतड़ी नरेश के साथ स्वामी जी के दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने की बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, मालिकों की ओर से उनके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया गया, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं भी उसी दल के साथ था और प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में मैं उस वक्त बात को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे कि उपरोक्त विवरण को सत्य रूप में ग्रहण किया जा सके। मंदिर के मालिकों ने बल्कि यथेष्ट सौजन्यता दिखाई थी और दर्शन योग्य सब कुछ दिखाने ले गए। तो भी भंगवासी द्वारा उस प्रकार का विवरण प्रकाशित करने का कारण ये भी हो सकता है कि लेखक ने मंदिर के मालिकों के ऊपर कोई पुरानी नाराजगी निकालना चाहा है। अब तक स्वामी जी के समर्थकों की धारणा थी कि मंदिर के मालिक उनके विरोधी नहीं है।
0: 30 मार्च को उसी सुर में श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने इंडियन मिरर में एक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
3: देखिए बंगवासी में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं सूचित करता हूँ। लिखित बातें बिल्कुल ही मिथ्या हैं। कई साधु के साथ हैरिसन साहब जान बाजार में त्रिलोक के नाथ विश्वास को स्वामी जी और खेतड़ी नरेश के मंदिर दर्शन के बारे में कहने गए थे। त्रिलोक के बाबू ने अस्वस्थता के कारण उनसे भेंट नहीं की और कहला भेजा कि संध्या को 5 बजे वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। अतिथियों के मंदिर में पहुंचने पर खजांची भोलेनाथ बाबू, अन्य कर्मचारियों तथा त्रिलोक के बाबू के पुत्रों ने अति सज्जनता के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ अतिथियों को भी काली मूर्ति दर्शन करने का अनुरोध किया था। उस समय लगभग 6 बज रहे थे। यहाँ तक कि खजांची ने मंदिर का पश्चिम दरवाजा तक खोल दिया ताकि और अधिक रोशनी आकर देवी की प्रतिमा पर पड़े।
0: त्रिलोक के बाबू ने और भी लिखा कि उन्हें समाचार मिला था जयपुर के महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस विषय में त्रिलोक के बाबू को संदेह हुआ, तथापि उनके पुत्र के मन में जयपुर के महाराजा को देखने की उत्सुकता होने के कारण वे उन लोगों के साथ दक्षिणेश्वर गए। स्वामी विवेकानंद और उनके संगी परोक्ष रूप से मंदिर से निकाल दिए गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसा कि बाबू भोलानाथ मुखोपाध्याय ने बताया है। स्वामी जी तथा राजा का स्वागत करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा और स्वयं भी मैंने उनका स्वागत नहीं किया। जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपने को हिंदू कह सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा भी संपर्क रखना उचित नहीं समझता। प्रतिमा के पुनः अभिषेक का जो समाचार आपने प्रकाशित किया है वो पूर्णतया सत्य है। मंदिर में स्वामी जी के प्रवेश के फलस्वरूप देवी के पुनराभिषेक की आवश्यकता हुई थी। यहां पर मजे की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन के दिन भी स्वामी जी ने मंदिर के भीतर जाकर प्रतिमा दर्शन किया था, परंतु तब पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं हुई थी। इस बार बंगवासी की कलम के भय से मंदिर के मालिकों को वो भी करना पड़ा। इन पत्रों से यह प्रमाणित होता है कि स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष असम्मान करना संभव नहीं हो सकता था, बल्कि प्रत्यक्षतः उनका स्वागत ही हुआ था। यहाँ भी पुनः विवेकानंद की महिमा ही प्रमाणित होती है। उनके उपस्थित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार करता।
1: परोक्ष अपमान यही था कि त्रैलोक के बाबू ने स्वयं स्वामी जी के साथ भेंट नहीं की, यद्यपि उस समय वे मंदिर के उद्यान में ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त त्रैलोक के बाबू के मतानुसार उन्होंने किसी को भी स्वामी जी का स्वागत करने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, स्वामी जी को अवश्य बता दिया था कि अस्वस्थता के कारण वे मिलने नहीं आ सके।
0: इस पत्र के उत्तर में महेंद्रनाथ गुप्त ने एक पत्र लिखकर त्रैलोक के बाबू की बातों और आचरण में उपयुक्त फर्क दिखा दिया और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू धर्म के जीवंत विग्रह श्री रामकृष्ण विलायत से लौटकर केशव के घर जाते थे, वहां पूरी मिष्ठान भी खाते। इस कारण त्रैलोक के नाथ ने उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोकने की बात सोची थी, यद्यपि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। एक अन्य समय कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस प्रकार का विद्वेष युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वेदांत के मतानुसार सब कुछ ब्रह्म है और कप्तान स्वयं इतने कट्टर होकर भी साहबों के साथ हाथ मिलाते हैं।
1: वैसे श्री रामकृष्ण के मामले में म्लेच्छों के साथ सहज भाव से आदान प्रदान की व्यवस्था सामाजिक आधार पर न होकर धार्मिक नींव पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद ने भी उस पद का अनुसरण किया था। वे कट्टरपंथियों द्वारा स्वीकृत कूपमंडुकता के विरोधी थे और फिर सुधारवादी प्रगतिशीलों द्वारा अनुमोदित आत्म अवमानना के भी विपक्ष में खड़े थे। उनके विदेश गमन अथवा म्लेच्छों के साथ अबाध आदान प्रदान के पीछे स्वार्थ या हठवादिता का लेश मात्र भी नहीं था। इसका कारण उनके आचरण रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों दोनों की नाराजगी के कारण होकर भी हिंदू जनसाधारण की दृष्टि में वे निंदनीय नहीं थे एवं क्रमशः आदर के

0: पत्र उनकी अपनी बहन मैरी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया था और इसके अन्य लोगों के हाथ में पहुंचने की संभावना नहीं थी। जाति च्युत का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने उसी पत्र में अन्य बातों पर भी चर्चा की थी।
1: मेरे ऐसे स्वागत से मिशनरियों के हाथ के तोते उड़ गए हैं और यहाँ वे हैं भी कौन? कुछ भी नहीं। उनके अस्तित्व के बारे में ही हमें खबर नहीं। बात ऐसी थी कि मैंने अपने एक व्याख्यान में इंग्लिश चर्च के भद्र पादरियों को छोड़कर सामान्य मिशनरियों के दल में आने वाले लोग जिस श्रेणी के होते हैं इस विषय में कुछ कहा था। इस प्रसंग में मुझे अमेरिका की कट्टर चर्च महिलाओं और उनकी मिथ्या बदनामी फैलाने की क्षमता का भी उल्लेख करना पड़ा था। मिशनरी लोग मेरे अमेरिका में किए गए कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को संपूर्ण अमेरिकी नारी जाति पर लांछन कहकर शोरगुल मचा रही हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि केवल उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो इससे संयुक्त राज्य के लोगों को आनंद ही होगा। प्रिय मैरी, यदि मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिका के लोगों के विरुद्ध ये भयानक बातें कही हों, तो भी वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में जो घृणित बातें कहते हैं, इससे क्या उसके लाखवें भाग की भी पूर्ति होगी?
2: जैसा कि स्वाभाविक था, स्वामी जी के लिए अपने ही अप्रकाशित पत्रों के उद्धरण देखकर अमेरिका के नारी जाति के प्रति उनकी प्रीति एवं श्रद्धा का भाव प्रमाणित करना संभव न था। परंतु हम जानते हैं वो कितना आंतरिक एवं अकृत्रिम था। उनमें से यहां दो चार उक्तियों को ही प्रस्तुत करना यथेष्ट होगा।
1: अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मैंने अनेक निरर्थक कहानियां सुन रखी थीं। वो स्वाधीनता में उन्मत्त होकर अपने पारिवारिक जीवन की सकल सुख शांति को भंग कर देती हैं। और इसी प्रकार की और भी बातें सुनने में आई थी। परंतु पिछले एक वर्ष के दौरान अमेरिकी परिवार और अमेरिकी नारियों के बारे में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे अब ये स्पष्ट बोध होता है कि उस प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत एवं निर्मूल हैं। कितनी ही ऐसी माताएं देखी हैं जिनकी मातृत्व और ममता और संतान स्नेह का वर्णन करने को मेरे पास भाषा नहीं। कितनी ही ऐसी बालिकाओं और कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है जो डायना देवी के ललाट पर स्थिर तुषार कणिकाओं के समान निर्मल और उसके साथ ही अत्यंत शिक्षित और मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नत हैं। ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं। ये साक्षात जगदम्बा हैं। इस तरह की मां जगदम्बा यदि अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चित होकर मर सकूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आज आपके साथ

थी मैं सुनीता सिंह। आपसे विदा लूं उसके पहले आइए आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त सा परिचय आपको दे दूं। आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का प्रसारण होगा 5:10 पर। 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद चाकी की। आमने सामने ये कार्यक्रम शाम 6:30 प्रसारित होगा। 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वागर्थ। विशेष कार्यक्रम में शाम 7:30 आज सुनिएगा मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का दूसरा भाग। रात 8:30 हिंदोस्तान हमारा कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में रात 9 बजे सुनिएगा उस्ताद अली अकबर खान पर केंद्रित कार्यक्रम। और रात 9:30 आप सुन सकते हैं धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद की 52वीं कड़ी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती।

0: रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होती है। स्वागत है आप सभी का हमारी सायंकालीन सभा में। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 120 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घ तमस, देवता हैं अश्विनी कुमार दुस्वप्न नाशक, छंद है गायत्री, ककुप उष्णिक, विराट अनुष्टुप, नष्ट रूपी अनुष्टुप, तनुशिरा उष्णिक, विष्टार बृहती, कृति विराट अनुष्टुप और गायत्री।
1: का राधद्धोत्राश्विना वाम को वाम जोश उभयोः कथा विधात्य प्रचेताः। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों को किस प्रकार की प्रार्थना प्रिय है जिससे आप प्रसन्न होते हैं? आपको संतुष्ट करने में कौन सक्षम हो सकता है? अल्पज्ञ मनुष्य आपकी उपासना कैसे करें? विद्वांसा विद्दुरह पृच्छेद विद्वानित्था परो अचेताह नू चिन्नु मर्त्ये अर्कौ। ज्ञान रहित और प्रतिभा रहित ये दोनों प्रकार के मनुष्य विद्वान अश्विनी कुमारों से ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। क्या वे मानव हित के संबंध में कुछ न कर पाने की असमर्थता प्रकट करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। वे अवश्य ही मानवों के कल्याण के प्रति प्रेरित होंगे। ता विद्वांसा हवामहे वाम तानो विद्वांसा मन्म वोचे तमद्य प्रार्चद्यमानो युवाकुः। हम सहयोग के लिए आप अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। आप आज हमें यहां आकर चिंतन प्रधान मार्गदर्शन दें। आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य हवि समर्पित करते हुए आपकी अर्चना करते हैं। वी पृच्छामि पाक्यान देवान वशट कृतस्याद भूतस्य दस्रा पातम च सह्यसो युवम च रभ्यसो नह। हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारो, हमारी प्रार्थना आपसे ही है, अन्य के प्रति नहीं। अद्भुत शक्ति के उत्पादक आदर पूर्वक दिए गए इस सोमरस को आप दोनों ग्रहण करें तथा हमें जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को वहन करते रहने की सामर्थ्य प्रदान करें। प्रयाघोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम प्रैशर्युर्न विद्वान। घोषा ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि तथा ज्ञान संपन्न एवं अन्न के इच्छुक पज्र कुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस प्रकार की स्तुति रूप वाणी का प्रयोग आप दोनों के प्रति करते रहे, वैसी ही प्रस्तुतिकरण की विधा हमारी वाणी में भी आए। श्रुतम गायत्रम तकवानस्याहम चिद्धि रिरे भाष्विना वाम आक्षी शुभस्पति दन। हे कल्याण के स्वामी अश्विनी कुमारो, प्रगति की इच्छा से प्रेरित ऋषि का यह गायत्री छंद का स्तोत्र आप दोनों ने श्रवण किया। आप दोनों नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण करें। युवम ह्यस्तम महो

वृका दघायो हो। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों किसी साधक को प्रचुर दान भी देते हैं और किसी से धन शक्ति को पूर्ण रूपेण अलग भी कर देते हैं। ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बने। दुष्कर्मी तथा भेड़िये के समान क्रोधी शत्रुओं से हमें बचाएं। मां कस्मै धातमभ्य मित्रिणे नो मा कुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गुह स्तनाभुजो अशिश्वी ही। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव न हो। अपने दूध से भरण पोषण करने वाली गौएं बछड़ों से अलग होकर हमारे घरों का भी कभी त्याग न करें, अर्थात हमारे घर दुग्ध आदि पोषक रसों से सदैव परिपूर्ण बने रहें।

0: आजवत्यै इशे च नो मिमीतम धेनुमत्यै। आपसे सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग मित्रों के भरण पोषण के लिए प्रचुर धन संपदा चाहते हैं। अतएव शक्ति से संपन्न धन और गोधन से भरपूर अन्न हमें प्रदान करें। अश्विनो रसनम रथमनश्वम वाजिनी वतोह तेनाहम भूरी चाकन। सैन्य शक्ति से संपन्न अश्विनी कुमारों से अश्वों के बिना चलने वाले इस रथ को हमने प्राप्त किया है। इससे हम प्रचुर यश प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। अयम समहमा तनुहियाते जनाम अनु सोमपेयम सुखो रथः। यह सुखदायक रथ धनों से परिपूर्ण है। अश्विनी कुमार सोमपान के लिए याज्ञिक जनों के समीप इसी में सवार होकर जाते हैं। यह रथ हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो। अध स्वप्नस्य निर्विदे भुञ्जतश्च रेवतः उभाता बस्री नश्यतः। असमर्थों को भोजन प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवानों को और आलस्य प्रमाद में पड़े रहने वाले व्यक्तियों को देखकर हमें बहुत खेद होता है, क्योंकि शीघ्र ही उनका विनाश सुनिश्चित है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 120 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, भक्ति हमारे कर्मों में झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से किसी की सहायता करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है।

सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए भक्ति रस में डूबते हुए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

और इसी के साथ हमारा आज का ही कार्यक्रम भक्ति संगीत का अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
1: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है प्रफुल्ल चंद चौकी पर।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है कृष्ण गोपाल कर्वे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से सुंदरलाल मित्तल और हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: ये वतन का
0: वो समय ही होता है जो अपनी तरह से लोगों को गढ़ता है, वरना 8-9 साल की उम्र खिलौनों से खेलने की होती है। देश दुनिया की स्थिति से कोरे बाल मन का भला क्या वास्ता। 20 साल की उम्र अपने सुंदर भविष्य के सपने संजोने की होती है, लेकिन वो समय ही होता है जो अपनी तरह से लोगों को गढ़ता है। और एक 20 साल के युवा का सपना देश के भविष्य से जुड़ जाता है और इस एक सपने के लिए वो अपना जीवन बलिदान कर देता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में धड़कती एक ऐसी ही गाथा है महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते हुए भारत की मिट्टी का मन भी भीग जाता है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म 10 दिसंबर सन 1888 को उत्तरी बंगाल के बोगुरा जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। उनके पिता का नाम राज नारायण चाकी और माता जी का नाम स्वर्णमयी देवी था। वो अपने माता पिता की पांचवी संतान थे। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर गहरा संकट छा गया। उनकी मां ने बहुत कठिनाई से उनका पालन पोषण किया। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई प्रताप चंद्र चाकी के साथ रंगपुर चले गए। यहाँ के नेशनल स्कूल में उनकी भेंट जितेंद्र नारायण रॉय, अविनाश चक्रवर्ती और ईशान चंद्र चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से हुई। छात्र जीवन में ही वो स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से परिचित हुए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कई किताबें पढ़ी थीं और यही वो बिंदु था जब उनकी आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न जागा। बहुत कम उम्र में ही वो देश की दशा को समझने लगे थे। इसी बीच लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह धरना, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। स्वदेशी का स्वर यूं बुलंद हुआ कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की गूंज थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बाल मन पर इन घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो बंग भंग आंदोलन में कूद पड़े। वो कानून तोड़ने वाले छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें रंगपुर जिला विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इसी बीच क्रांतिकारी बारिंद्र घोष उन्हें कलकत्ता ले आए, जहां उनका संपर्क युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों से हुआ और वंदे मातरम का जय घोष किसी स्वस्ति मंत्र की तरह उनके भीतर गूंज उठा।

युगांतर पार्टी की स्थापना अनुशीलन समिति के साथ मतभेद होने के कारण सन 1906 में हुई थी। ये भारत की स्वाधीनता के लिए काम करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। अरविंद घोष, बारिन घोष, हेमचंद कानूनगो और उपेन बैनर्जी इसके संस्थापकों में शामिल थे। ये पार्टी हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने और बम बनाने के काम में सक्रिय थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला ये गुप्त संगठन मुख्य रूप से बंगाल में सक्रिय था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी को बारिन घोष ने इसी युगांतर पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह प्रफुल्ल चंद्र चाकी कलकत्ता आ गए। इस समय कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड था। वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध बहुत क्रूर निर्णय लिया करता था और उन्हें अत्यंत कठिन दंड दिया करता। एक बार 15 साल के स्कूली छात्र को वंदे मातरम का नारा लगाने के कारण उसने 15 बेंत मारने की सजा दी थी। इस तरह किंग्सफोर्ड के प्रति आम जनता के मन में गहरा आक्रोश था और क्रांतिकारी किसी भी तरह उसे समाप्त करना चाहते थे। जनता के आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों को किंग्सफोर्ड की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। अंततः उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। लेकिन युगांतर पार्टी के क्रांतिकारी जानते थे कि किंग्सफोर्ड मूल रूप से ही एक अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति है। स्थान के बदलने से उसके रवैये में कोई विशेष बदलाव नहीं आने वाला है। वो जब भी अवसर पाएगा राष्ट्रभक्त भारतीयों के लिए वही रवैया अपनाएगा। इसलिए योजना बनी कि किंग्सफोर्ड से भारतीयों को मुक्त कराया जाए। इसके लिए उसका वध आवश्यक था और किंग्सफोर्ड को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को। दोनों ही क्रांतिकारी अत्यंत उत्साहित थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का ये स्वर्णिम अवसर था और इसे वो चूकना नहीं चाहते थे। इससे पहले भी प्रफुल्ल चंद्र चाकी को संगठन द्वारा सर जोसेफ बैम्फील्ड फुलर को गोली मारने का कार्य सौंपा गया था। फुलर पूर्वी बंगाल और असम का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेकिन ये योजना अमल में नहीं लाई जा सकी क्योंकि सर जोसेफ की यात्रा कार्यक्रम में अंतिम समय में एक बदलाव आ गया था। इसलिए इस बार प्रफुल्ल चंद्र चाकी अत्यंत प्रसन्न थे। किंग्सफोर्ड को समाप्त करने के लिए खुदीराम बोस के साथ वो मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दृढ़ संकल्प के साथ ये दोनों क्रांतिकारी क्रांति पथ पर आगे बढ़ चले।

मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने सबसे पहले अपने नाम बदल लिए। खुदीराम बोस ने अपना नाम हरेन सरकार रखा और प्रफुल्ल चंद चाकी ने अपना नाम दिनेश चंद्र रॉय रख लिया। उन्होंने अब किंग्सफोर्ड की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया कि वो कब और कहां किस तरह से आता जाता है। अपनी पहचान को बड़ी सफलता के साथ दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह तक छुपाए रखे। पहले उन्होंने उस अदालत में बम फेंकने की योजना बनाई जिसमें किंग्सफोर्ड बैठता था, लेकिन अदालत में मौजूद अन्य लोगों के घायल हो जाने की आशंका से उन्होंने अपनी योजना बदल दी। अब ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनी। दोनों क्रांतिकारियों ने स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। अपनी योजना को पूरा करने के लिए 29 अप्रैल की शाम को अपने नियत स्थान पर वो आकर डट गए, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें देख लिया और बात बिगड़ गई। अब प्रतीक्षा थी अगले दिन की। 30 अप्रैल सन 1908 को किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी तथा एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी साथ साथ पार्क आए। कुछ देर वहां रहे और शाम को जब वहां से लौटने लगे तो किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी एक गाड़ी में और श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी थीं। गाड़ी जैसे ही यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, दोनों क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को इशारा किया और बम फेंक दिया। लेकिन संयोग ये रहा कि जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था उसमें कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी वहां से भाग निकले। दोनों रेलवे लाइन के किनारे लगभग 24 किलोमीटर अंधेरे में भागते रहे और बेनी स्टेशन पहुंचे। यहां पहुंचकर दोनों ने अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। पुलिस इन दोनों क्रांतिकारियों का तेजी से पीछा कर रही थी। इस मुजफ्फरपुर कांड में खुदीराम बोस जब पकड़े गए तब 11 अगस्त सन 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन इसके पहले का घटनाक्रम कुछ यूं हुआ कि पुलिस से बचते हुए प्रफुल्ल चंद्र चाकी समस्तीपुर आए और त्रिगुणा चरण घोष के घर पर शरण ली। कपड़े बदले ताकि पहचान में न आए और मोकामा को जाने वाली ट्रेन में वो बैठ गए। तारीख थी 1 मई सन 1908। जिस डब्बे में वो बैठे उसी डब्बे में पुलिस सब इंस्पेक्टर नंदलाल बैनर्जी भी सवार था। उसे शक हुआ और उसने मोकामा स्टेशन पर सूचना भेज दी। मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी को घेर लिया गया। वो संघर्ष करते रहे और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चंद्र चाकी की मौत के बाद उनका सिर काटकर मुजफ्फरपुर अदालत में पेश किया गया। ये घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी गई। देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले ऐसे अमर बलिदानी को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने। इसके अंतर्गत सुनिए लुप्त प्राय प्रजाति दिवस पर डॉक्टर सुदेश बागमारे से अदिति गौड़ की बातचीत।

0: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, मई माह के हर तीसरे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, यानी एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज डे हम मनाते हैं। लेकिन हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज क्या होती हैं, इनका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और क्यों उनको लुप्त प्राय मान लिया गया है, इनका बचाव क्यों जरूरी है। ऐसे हमारे मन में उठते हुए कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञ। हम आपको बता दें कि सर हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों पधार कर हम सभी का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है या इसको मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी।
2: सबसे पहले तो मैं हमारे श्रोताओं को इस दिवस की बधाई देना चाहता हूँ कि इस दिवस पे आप प्रेरणा लें कि हम ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त होती जा रही हैं इस पृथ्वी से, इस धरा से, इस मैदिनी से, इस अर्थ से, इस अर्थ मदर से, उन सब के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित हों। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई इस दिवस के लिए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको इस दिवस का इतिहास। अमेरिका में तेजी से स्थानीय प्रजातियाँ विलुप्त हो रही थी, तो सबसे पहले अमेरिका में जो संस्थाएं थी उनके मन में विचार आया कि अमेरिका की विलुप्त होती हुई प्रजातियों के बारे में वो एक संगठन बनाकर बाकायदा अमेरिका में अभियान चलाएं। तो वर्ष 2006 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले ये दिवस मनाया गया और इस दिवस को मई के प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को, जैसा कि आपने अभी बताया, वैसा मनाने का निश्चय किया गया। अमेरिका में एक एक्ट भी बना तभी, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट थर्टन स्पीसीज के लिए 1973 में एक्ट बना। हमारे यहाँ भारत में उससे पहले 1972 में ये एक्ट बन चुका था। अमेरिका में इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट कहते हैं, जबकि भारत में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं।
1: सर, ये एक्ट वैसे तो जैसा कि आपने बताया अमेरिका में जारी किया गया, लागू किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी अमेरिका से ही शुरू किया गया और भारत में भी इसे मनाया जाता है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसे कौन सी प्रजातियां हैं, वन्य एवं जो प्लांट स्पीशीज हैं, जिनको हम एंडेंजर्ड या लुप्त प्राय मान सकते हैं।
2: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, मगर उसके पहले जो हम आज 21वां दिवस मना रहे हैं, इसका पहला 2006 में मना था, अब ये 2026 में मना रहा है 21वां, इसको समझने के लिए पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम ये समझें कि विलुप्त प्रजाति क्या होती है, खतरे के निकट वाली प्रजाति क्या होती है, असुरक्षित यानी वल्नरेबल प्रजाति क्या होती है। जब तक हम इन चीजों को, इन पारिभाषिक शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक हम ना तो इस दिवस की महत्ता समझ पाएंगे और ना प्राणियों को बचाने का अपना कर्तव्य समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको, यदि आप उल्टा लीजिए, है ना, उल्टे से मेरा मतलब है सबसे पहले जो हो चुका, व्यतीत हो गया, जो नुकसान हो चुका उसको समझें, तो शब्द है विलुप्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट। मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसे 1947-48 में भारत से चीता, एशिया चीता विलुप्त हो गया था
1: जी।
2: अभी जो आ रहे हैं वो अफ्रीकन चीते हैं हमारे यहाँ, तो वो विलुप्त हो गया भारत से, तो ये कहलाएगा विलुप्त होना या एक्सटिंक्ट होना
1: जी।
2: अच्छा, विलुप्ति को भी समझिए, विलुप्ति दो तरह की होती है। एक तो विलुप्ति इन द वाइल्ड मीन्स एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वो चीज जंगल में खत्म हो गई, कहीं कहीं जू में मिलती है
1: जी,
2: उसको भी विलुप्त माना जाता है, विलुप्त इन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो पहला शब्द आप पकड़ लीजिए, विलुप्त होना मतलब एक्सटिंक्ट होना। सबसे खतरनाक रेड लाइट वाला समझिए, अब थोड़ी सी ऑरेंज लाइट पे जाएं हम, ऑरेंज मतलब विलुप्ति से थोड़ा सा कम खतरनाक, वो है विलुप्त प्रायः, जिसके लिए आप शब्द यूज कर रहे हैं एंडेंजर्ड। तो विलुप्त प्रायः वो है जो वर्तमान में समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है और उसको बचाने यदि हमने बड़े कठोरतम प्रयत्न नहीं किए तो वो किस श्रेणी में जाएगा, जिसकी मैंने अभी बात की, विलुप्त की श्रेणी में जाएगा। तो विलुप्त प्रायः का आशय हुआ कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि वर्तमान में समाप्त होने वाली है। अगला शब्द अभी आपने एक उपयोग किया वो होता है खतरे के नजदीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रेटन। थ्रेटन करना किसी को मतलब किसी को धमकाना डराना, तो थ्रेटन्ड स्पीसीज वो है जो अभी वर्तमान में तो कुछ ठीक ठाक है मगर भविष्य में विलुप्त हो सकती है। आप मेरा आशय समझ होंगे, विलुप्त में यानी इंडेंजर्ड में और थ्रेटन में वो कि अभी तो विलुप्त नहीं है वो आगे भविष्य में जाके विलुप्त हो जाएगी। तो ये तीन शब्द यदि आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद एक और चीज है, एक और शब्द वैज्ञानिक तौर पे यूज किया जाता है वल्नरेबल, असुरक्षित, जो मतलब इंडेंजर्ड नहीं है, जो थ्रेटर्ड नहीं है, वर्तमान में खतरे में नहीं है, भविष्य में खतरे में नहीं है, मगर इन दोनों के अलावा भी एक ऐसी प्रजाति है जो असुरक्षित है। यदि हमने उसकी सुरक्षा नहीं करी, उस पर हमने चारों ओर से आवरण सुरक्षा का नहीं दिया, तो वो जो प्रजाति है वो असुरक्षित से किस में आ जाएगी, थ्रेटन्ड स्पीसीज में आ जाएगी। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, एक्सटिंक्ट होना और फिर एंडेंजर्ड होना, फिर थ्रेटन होना, फिर वल्नरेबल होना। यदि ये शब्द आप दिमाग में रखेंगे तो आपको इस परिचर्चा को सुनने में आनंद आएगा।
1: सर यानी हमें दिमाग में कुछ शब्दावलियां रखनी होंगी जैसे एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल और एक्सटिंक्ट। IUCN एक ग्लोबल लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है जिसे कहते हैं रेड डाटा लिस्ट, तो उसमें लगातार ऐसे कुछ प्रजातियों के नाम सूचीबद्ध किए जा रहे हैं जिन पर लगातार खतरे की घंटी बजती रहती है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो इस लिस्ट में शुमार हैं, सम्मिलित हैं?
2: देखिए सबसे पहले तो हम IUCN के बारे में इसलिए बात करें, थोड़ी सी श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि IUCN क्यों महत्वपूर्ण है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था है, राष्ट्र संघ द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, परिपोषित है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि तब ये प्रजातियों के बारे में ऐसा सोचा जा रहा था कि बहुत सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त हो जाएंगी। तो इसने उनका समंक यानी डाटा इकट्ठा करना शुरू किया कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो अभी इंडेंजर्ड है, थ्रेटन है, वल्नरेबल है। तो उसने इन सब के नाम जिस किताब में डाले उसका नाम हो गया रेड डाटा लिस्ट। रेड मतलब हम लोग अलार्मिंग कलर माना जाता है, खतरे का कलर माना जाता है, जैसा कि हम ट्रैफिक में भी देखते हैं कि सब चीज़ें रोक दी जाती हैं लाल पे, लाल खतरे का रंग माना जाता है। तो रेड डाटा लिस्ट उनने बनाई और उसमें डाटा बाकायदा, ऐसा नहीं, उनने वैज्ञानिक तरीके से डाटाओं का संग्रहण किया और फिर उसमें उनने बताया कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं। तो उनने सबसे पहले जो रिकॉर्ड की अभी तक प्रजातियाँ कर चुके हैं 48,600 पूरे विश्व की जाती हैं प्रजातियां हैं, इसमें भारत की प्रजातियां भी हैं। वो भारत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास पृथ्वी का पूरी दुनिया का 2.4% भूभाग है और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस 2.4 भूभाग पे दुनिया की 7% बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ये विविधता 7% है, मतलब क्या हुआ कि भारत को कम से कम 3.5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल मिलना चाहिए था जो वर्तमान में प्रजातियों को रिटेन कर रहा है। तो भारत में आप समझ सकते हैं कि जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि जितनी कुल प्रजातियां दुनिया में इनरोल्ड हुई हैं, जिनकी संख्या मान ली गई है कि लगभग इतनी होंगी, वो प्लांट्स की और एनिमल्स की लगभग 15 से 20 लाख प्रजातियां मानी जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हम 2% ही इन्यूमरेशन कर पाए हैं समुद्र की प्रजातियों का, 2-3%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक तो कहते हैं कि लगभग दुनिया में 1 करोड़ प्रजातियां होंगी। अभी प्रति प्रजाति की कितनी संख्या होती है वो अलग बात होगी, 1 करोड़ के लगभग प्रजातियां होंगी। मगर अभी तक जो इन्यूमरेशन हुआ है, जो साइंटिफिक डाटा कलेक्ट होके जिनका नामेनक्लेचर हो गया है, वो लगभग 15 से 20 लाख के बीच में, 17-17.5 लाख के आसपास जाकर ठहरते हैं। IUCN कहता है कि इसमें से 28% प्रजातियां या तो इंडेंजर्ड हैं, या थ्रेटन हैं, या वल्नरेबल हैं। और यदि हम इसमें और विस्तार से जाएं तो हम देखेंगे कि मैमल्स की 26% प्रजातियां खतरे में हैं, एम्फीबियंस की 47 प्रजातियां खतरे में हैं। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जंतु जो उभयचर कहलाते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं,
1: मगरमच्छ
2: जैसे मगरमच्छ, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कछुए
1: जी।
2: अब बर्ड्स ये बर्ड्स की 11% प्रजातियां हैं जिनको चहचहाते हुए देखते हैं, जिनके रंग बिरंगे प्लूमेज हैं, जो आव्रजन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जिनसे हमारी सुबह होती है, जिनसे हमारी शाम ढलती है, जिन पक्षियों के कलरव से, जिनके चहचहाने से 11% प्रजातियां, यानी हर 100 में से 11 प्रजातियां खतरे में।
1: बागमारी जी, अगर छोटी सी बात करें तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ की जो बहुत एक इंडिजिनस प्रजाति है, पहले जो छोटी छोटी जिसके ऊपर घर में कविताएं बनती थी, बात होती थी, घर की छोटी बच्चियों को अक्सर कहा जाता था चिरैया, जिसे हम गौरैया कहते हैं, वही आजकल नहीं मिलती है। उसको देखना ही आजकल एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट होने लगा है।
2: बिल्कुल आपका सही कहना है, हमको जागरूकता इस बारे में लाना चाहिए कि वो क्यों समाप्त हो रही है। वो इसलिए समाप्त नहीं हो रही कि कोई जलवायु संकट आ गया है या कोई प्रकृति का प्रकोप आ गया है, वो इसलिए समाप्त हो रही है, हमने उसके हैबिटेट खत्म कर दिए। देखिए, पहले कच्चे मकान होते थे, घरों की छानी होती थी, लोग बाग सुबह चुग्गा डाला करते थे, कहते थे चुग्गा डालना है, यानी उनको दाने डाला करते थे। हमारी संस्कृति में तो आप देखिए, रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, जो चावल की टूटन है, जो गेहूं की छानन है, वो चींटियों की। हमें तो पर्यावरण के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, मगर जब से पक्के मकान बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, अट्टालिकाएं बनने लगी, तो बेचारी चिड़ियों के रहने के लिए आवास का संकट पैदा हो गया। इस वर्ष का इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो थीम है वो भी यही है कि आवासों को, जो प्राकृतिक आवास है इनके, जिनको इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं, उनको किस तरह सुरक्षित रखा जाए।
1: अभी हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की, उनके प्राकृतिक आवास की, तो अगर हम अभी अपने क्षेत्र की ही बात करें तो हम अक्सर अखबारों में, समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ते हैं कि शेर, यह शेर के बाघ के विचरण का जोन है, यहाँ आराम से गाड़ी चलाएं, सतर्क रहें। मतलब हमने क्या किया है कि जानवरों के, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करके हमने वहाँ पर मनुष्यों की बसाहट कर दी है, और फिर हम उनको कह रहे हैं कि हमें उनसे खतरा है, जबकि शायद मनुष्य ही खतरा बने हुए हैं जीव जंतुओं के लिए। एक समय में ऐसा संकट भी आ गया था भारत पर कि सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना पड़ा शासन को, क्योंकि जो बाघ हैं, शेर हैं, उनकी कमी हो गई थी। इस बारे में भी हम सर जानना चाहेंगे, आप इस विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे कोई भी प्रजाति जिसके ऊपर हैबिटेट का संकट मंडराता है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, या एंडेंजर्ड वो होती ही कैसे है, अगर हम सबसे पहले इस बात की शुरुआत करें तो।
2: आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मगर इन प्रश्नावली में आपने जो पिछला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर रह गया था। आपने कहा था कि हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन सी 10 प्रजातियां होंगी जिनके बारे में हम चर्चा करें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि दुनिया में तो प्रजातियां बहुत सारी विलुप्त हो गई हैं, और हम यदि उन प्रजातियों के बारे में बात करने बैठ जाएंगे तो हम हमारा परिप्रेक्ष्य भूल जाएंगे, हमारे आसपास का सीनियर भूल जाएंगे, हमारा लैंडस्केप भूल जाएंगे। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे 10 ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, या विलुप्ति की कगार पे हैं, या कि आप देखेंगे यदि उनका उचित संरक्षण नहीं मिल पाया तो उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के लालच के कारण चीता, एशियन चीता विलुप्त हो गया, माने एक्सटिंक्ट हो गया। अब ये कुछ 10 प्रजातियां हैं, यदि हम 100 साल बाद का सीनेरियो देखें कि इनको उचित संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये भी विलुप्त हो जाएंगी। जिस तरह चीता के विलुप्त होने के बाद हम करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशों से चीता ला रहे हैं, तब हो सकता है कि ये प्रजातियां विदेशों में भी एक्सटेंट हो जाए तो हमको मिले नहीं। तो अब मैं सबसे पहले, आपने जो बात की वो आप जिस बाघ को या टाइगर को कह रहे हैं उसका वस्तुतः सही नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। टिग्रिस एक शब्द है ईरान का, ईरान में एक नदी है बहुत तीव्रता के साथ बहती है, जो बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि कहाँ से आया टाइगर भारत में, तो ऐसा माना जाता है कि साइबेरिया में जब मौसम का परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड हुई, तो वो वहाँ से निकल के हिमालय के ऊपर वाली कंदराओं से होता हुआ इस तरफ नीचे उतर आया मैदान में। दूसरी एक थ्योरी है कि ईरान से होता हुआ आया, जो पहली वाली थ्योरी थी उसके बारे में शुरुआत में उसके बारे में चर्चा की गई थी, तो ईरान में नदी बहती है टिग्रिस, तो उसके नाम पे इसका पैंथेरा टिग्रिस नाम रख दिया गया था, रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए, आज भी उसकी जो संख्या है अनुमानित रूप से भारत में 3 से 4 हज़ार अभी होगी। 3 से 4 हज़ार जनसंख्या होना किसी भी प्रजाति के लिए खतरे का संकेत है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी आवास की कमी इस प्रजाति को खत्म कर देगी। तो ये किस में आ गया, आप समझ गए, इंडेंजर्ड स्पीसीज में। मैं आपको बड़े उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रेप्टाइल्स पे नहीं जा रहा हूँ, बर्ड्स पे नहीं जा रहा हूँ, अभी फ्रॉग्स पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बड़ी स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको अंत में पेड़ पौधों के बारे में बताऊँ कि कौन से पेड़ पौधे भारत में बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं। तो दूसरी प्रजाति जो लगभग 700 के आसपास बची है भारत में, किसी समय हजारों में पाई जाती थी, जो हमारे राज्य चिन्ह में है, जो हमारे नोट पे बनी हुई है, भारत का शौर्य का प्रतीक माना जाता है लाइन, आप देखिए वो प्रजाति 700 बची है, एक ही जगह बची है, गिर में बची है। कल्पना करिए, गिर में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं पे भी आ सकती है, कोई एस्ट्रॉइड गिर जाए, गिर में कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जैसे कैनाइन डिस्टेंपर करके बीमारी फैली थी जो वन्य प्राणियों में पशुओं में पाई जाती है, उसके कारण काफ़ी सारे गिर में लायंस मर गए थे। तो ये स्पीसीज भी आप मान के चलिए कि जो लायन है, जिसको सिंह कहते हैं, जिसको बब्बर शेर कहते हैं, जिसके गले में अयाल पाए जाते हैं, जो समूह में रहता है, ये प्रजाति भी हमारे यहाँ इंडेंजर्ड है। दो प्रजातियाँ हुई। तीसरी आप देखिए, एक बड़ा सुंदर हमारे यहाँ लेपर्ड, एक मतलब तेंदुआ पाया जाता है। एक तो तेंदुआ हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है, जिसको गुलदार बोलते हैं, जिसपे धब्बे धब्बे होते हैं, ये स्नो लेपर्ड कहलाता है, माने कि बर्फ वाला तेंदुआ, गिनी चुनी संख्या में बचे हैं, आवास खत्म होता जा रहा है। वहां भी यही स्थिति आ गई है कि शिकार वहां पर भी हो रहा है, इसका आवास के खतरे के साथ साथ भोजन का खतरा है, उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घास के मैदान खत्म होते जा रहे हैं, और घास के मैदान खत्म होने के कारण जो वहां पर पाए जाने वाली स्थानीय प्रजातियां थी हर्बीवोरा की, वो खत्म हो रही है, जो उसकी भोजन का आधार था। तीसरी प्रमुख प्रजाति है स्नो लेपर्ड। चौथी पे सबका ध्यान जाता है, चौथी पे सबका ध्यान इसलिए जाता है कि उसको हमारे यहाँ आज कल जो बिजनेस शुरू किए जा रहे थे, उनका नाम है यूनिकॉर्न, एक सींग वाला। तो यूनिकॉर्न जो है हमारा, एक सींग वाला जो राइनो है, एक सींग वाला गेंडा जो है, आप लोगों ने सुना होगा काजीरंगा। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे भारत में नहीं मिलता, एक ये जो अभी आपको मैंने लाइन के बारे में बताया या वन हॉर्न राइनो के बारे में बताया, केवल काजीरंगा में ही है, वहीं वो प्रजनन कर पा रहा है, वहीं बढ़ रहा है। कल को कोई आपदा काजीरंगा में आती है इस तरीके की, तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए IUCN ने इनको थ्रेटन में नहीं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा है कि ये समाप्ति की कगार पे हैं। अब एक और वन्य प्राणी है जो हमारे मध्य प्रदेश में तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मगर वो पूरे भारत में एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है, वो कहलाता है कृष्ण मृग, ब्लैक बक। एक्चुअली ब्लैक बक हमारे यहाँ चूंकि मध्य प्रदेश में जंगलों से लगे हुए खेतों में उसको खाने पीने का खाद्यान्न मिल जाता है, इसलिए वो टिक पा रहा है, बढ़ पा रहा है, मगर बाकी भारत में उसकी संख्या तेजी से गिरावट की ओर है। और IUCN ने कृष्ण बक को यानी ब्लैक बक को भी इसी श्रेणी में रखा है। आप देखिए, अब जंगलों में लोग शिकायत करते हैं, जंगल के आसपास रहने वाले कृषक, कि उनके खेतों में कृष्ण मृग आ रहा है, चर जाता है, फसल बर्बाद कर देता है, उनके समूह के समूह आते हैं। बड़ा सुंदर जानवर होता है कृष्ण मृग, एक तो बहुत अच्छी छलांगें मारता है, जो मैच्योर हो जाता है नर, तो पूरी त्वचा उसकी काली हो जाती है। हम दक्षिण भारत में चलें थोड़ा सा और वेस्टर्न घाट की तरफ चलें, तो एक बंदर पाया जाता है जिसके गले में लायन के जैसा अयाल मैन पाए जाते हैं, और लंबी सी दुम होती है, लायन टेल्ड मका, वेस्टर्न घाट में मिलता है। यह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि जिस आवास को वो पसंद करता था, जिस खाद्यान्न को वो पसंद करता था, वो खत्म होता जा रहा है। फिर हम मध्य प्रदेश में लौटते हैं। देखिए, अब ये तो मैंने आपको थोड़े बड़े चीज़ें बता दी, अब आपको दूसरी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और जो लगभग भारत से एक्सटिंक्ट ही, लोग तो मानते हैं कि ख़त्म ही हो गई ये वाइल्ड में, मगर कभी कभी दिख जाती है अभी भी, उसको कहते हैं सोन चिरैया। आपने अभी तो आपने जो बात की वो हमारी घरेलू चिड़िया की बात की थी, आपने हाउसेस पर की बात की थी, ये सोन चिरैया गोंडामंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतना सुंदर पक्षी था कि नाम ही उसका सोन चिरैया रख दिया गया था। पहले खूब बड़ी मात्रा में शिकार हुआ, विदेशी लोगों ने शिकार किया, अंग्रेज लोग भी शिकार करते थे, अरब से हमारे देश में स्पेशली विशेषकर इसी के लिए आए जाते थे, उसका आज आवास को संरक्षित करने की कोशिश की, मगर ह्यूमन मनुष्य का जो लालच है, जो मनुष्य का एग्रीकल्चर के प्रति लालच है, जो मनुष्य का माइनिंग के प्रति लालच है, मनुष्य का जो बड़े बड़े बांध बनानों के प्रति लालच है, उसने इसके आवास को ख़त्म कर दिया, और ये लगभग लगभग लगभग आप समझिए विलुप्त है, समाप्ति हो गया, एक्सटिंक्ट है, बड़ा मुश्किल है, हालांकि बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं इसको बचाने के। एक और पक्षी होता है खरमोर, खरमोर जो है ये भी अच्छा खासा बड़ा पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है। जब ये प्रजनन करता है, जब ये मेटिंग करता है, जब ये मस्ती में होता है, तो इसको देखने के लिए आप कहें कि बहुत बड़ा मेगा शो किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। खरमोर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अभी कभी कभी इसकी भी सूचना मिलती है कि कभी अंडा एक दो अंडे मिल गए, कभी पक्षी दिख गया, मगर ये पक्षी पूरी तरह से समाप्त है। डॉक्टर सलेम अली ने इसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश में आके विशेष प्रयास किए थे, मगर ये खत्म हो गया। अगली आपको बताता हूँ मैं, एक और पेंगोलिन करके जानवर होता है, जंगल में मिलता है ये पेंगोलिन, इसको चीटीखोर भी कहते हैं हिंदी में। अब प्रकृति का इकोसिस्टम ये था कि जो हमारा जंगल है उसमें छोटे छोटे जो जंतु हैं, जैसे चीटियाँ हैं, दीमक है, इनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ जाए कि ये दूसरी प्रजाति को नष्ट करने लगे, तो उनकी संख्या पे कंट्रोल करने के लिए, डेमोग्राफिक कंट्रोल करने के लिए चीटियों का और दीमक जैसी चीज़ों का प्रकृति ने बनाया पेंगोलिन। पेंगोलिन को लेके हमारे देश में और विदेशों में, विशेषकर चीन में, नेपाल में इतनी भ्रांतियां हैं कि ये कैंसरों को ठीक कर देता है, ये बहुत सारे ऐसे रोगों की दवा है जो कि सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, ऐसी दवाओं का प्रतिस्थापन है ये, तो पेंगोलिन की संख्या भी हमारे यहाँ बहुत खतरे में पड़ गई है। तो ये कुछ मैंने एक ओल्ड ब्रिडले आप टर्टल में, तो चूंकि आपने बात निकाली, अब हम हमारे उड़ीसा के तट पे पहुंच जाइए। कुछ ऐसे टर्टल्स होते हैं जो विशेष अवस्था में, विशेष समय में, विशेष रूप में आके ही प्रजनन करते हैं, वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। ओलिव रिडलेट क्यों समाप्त हो रहे हैं, उनका भी हैबिटेट समुद्र तट पे, हम लोग रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ऐसी तरह से हमने ओशियन फ्रंट बनाना शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ इनकी संख्या कम हो गई है। तो इस तरह से आपने जो कहा था कि 10 प्रमुख कुछ प्रजातियों के बारे में चर्चा करें, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि भारत में हमारे स्थानीय उदाहरण हैं और ये या तो थ्रेटन है या फिर इंडेंजर्ड।
1: बागमारी जी, आपने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी वन्य पशुओं के बारे में। इन जीव जंतुओं की रक्षा करना जिम्मेदारी है, और अगर आज उनके ऊपर मंडराता संकट देखें तो कहीं ना कहीं कल को ये संकट हम पर भी हावी होगा, हमारे जीवन पर हावी होगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म भी है कि हम इनको बचाने के प्रति जागरूक हों। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि चर्चा के दौरान आपने एक नाम का जिक्र किया था, फ्लाइंग स्क्विरल, उसके उदाहरण से भी हमें बताइए कि किस तरह से इकोसिस्टम में एक छोटा सा पशु, एक छोटा सा जंतु भी इम्पोर्टेंट होता है।
2: बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, और यदि ये प्रश्न हमारे श्रोता मन लगाकर यदि इसका उत्तर सुनेंगे ना, तो उनके जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी और एक संरक्षण के प्रति उनके मन में जो एक भाव है वो हो जाएगा। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं एक टेक्निकल टर्म को यूज करूंगा, रिपेरियन जोन। ये नदियों के किनारे जो तट रहता है, नदी का तट, चाहे वो नर्मदा नदी का हो, चाहे वो बेतवा नदी का हो, चाहे वो महानदी का हो, चाहे पार्वती का हो, दोनों तट रहते हैं, दो तट होते हैं नदी के। दोनों तटों की जो वनस्पति पाई जाती है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो बाकी से भिन्न होते हैं,
1: जिसे हम कछार कहते हैं, उस
2: कछार तो शब्द बड़ा हो गया, कछार मतलब जहां से पानी इकट्ठा होके आ रहा है, मगर ये तो आप मान लीजिए कि लगभग 500 मीटर का, नदियों के दोनों ओर 500 मीटर का क्षेत्र, आधा किलोमीटर का क्षेत्र, उसकी वनस्पति विशिष्ट होती है, उसके जीव जंतु विशिष्ट होते हैं। अब जो रिपेरियन जोन है, नदियों के किनारे परंपरागत रूप से हजारों साल से वृक्ष घने, आपने देखे होंगे घने वृक्ष लगे रहते हैं, खासतौर से हमारी नदियों के किनारे अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं दोनों ओर, कहीं कहीं जामुन के वृक्ष, तो लगातार एक की कैनोपी माने एक का जो वितान है, जो यानी पेड़ का ऊपरी भाग है, वो दूसरे पेड़ से छूता है, लगातार बिल्कुल पेड़ रहते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। तो फ्लाइंग स्क्वायरल का क्या आवास होता है, ऐसे पेड़ों पे जंप करते हुए जाना, वो देखने में तो ऐसा लगता है कि उड़ रही है
1: जी।
2: मगर उड़ने जैसे पंख नहीं होते उसके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है। अब यदि हमने अपने लालच में उन पेड़ों को बीच बीच में नष्ट कर दिया, गैप हो गया, तो उसका आवास ही वो है, उसका रहने का तरीका वो है, उसका शिकार करने का तरीका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने का है, उसकी छलांग बंद हो जाएगी, छलांग बंद हो जाएगी, उसके आवास खत्म हो जाएंगे, उसका प्रजनन खत्म हो जाएगा और वो प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, वो प्रजाति राजस्व क्षेत्रों में पूर्णतः समाप्त हो गई, जंगल में आपको आज भी फ्लाइंग स्क्वायरल मिल जाएंगी, क्योंकि जंगल में अभी भी पेड़ों के काटने पर, जंगल से मेरा मतलब है पीएस मतलब संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में अभी भी पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध है, तो वो वहां पर रिपेरियन जोन में पेड़ों की कैनोपी एक कैनोपी से दूसरे से छू रही है लगातार, इसलिए फ्लाइंग स्क्वायरल जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात तो है, यदि कोई पूछे कि इंडेंजर्ड और थ्रेटन होने से कैसे रोका जाए, तो मैं कहूंगा कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बात है खाद्य श्रृंखला को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनका जो फूड चेन है उसको बनाए रखा जाए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनका संरक्षण कर सकती है।
1: वाघमारी जी, इन पूरी बातों का बस यही निचोड़ निकलता है कि जब तक हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, प्रकृति से वार्तालाप नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, उस प्रकृति की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनको संरक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए तो हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं और वही हमारे जीवन का आधार है। और प्रत्येक मनुष्य के द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम, जैसे पेड़ लगाना, जंगलों को बचाना या वन्य जीवों की एक अपने स्तर पर ही रक्षा करना, उनकी रक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है आगे जाके। और चाहे एक छोटा सा भी जीव हो, वो भी प्रकृति के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो हो गई जंतुओं की बात, जीवों की बात, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे?
2: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐसी प्रजातियां, 19 प्रजातियां हैं जिनको संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है और जिनको नष्ट करना या जिनका व्यापार करना बिना अनुमति के अपराध है। आपको बताऊंगा, एक नील कुरंजी करके पौधा होता है, लगभग 6-8 साल में एक बार फूल आता है। बांदा करके गांव में, हमारे मध्य प्रदेश के गांव में सब लोग बांदा जानते हैं। ये दूसरे पेड़ों पे आता है, पौधा अक्सर परजीवी की तरह रहता है, तो महुए का पेड़ है, आम का पेड़ है, ऐसे पेड़ों पे अचार

0: जनों में बहुधा पशुता का आरोप करता है पशुवर्ग, किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ।
1: आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आमने सामने,
3: तो श्रोताओं ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज आपने चर्चा सुनी लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस पर। विषय विशेषज्ञ थे पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश बाघमारे। आपसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़। श्रोताओं इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों, फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वाकर्थ।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर यह है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम वाग अर्थ।

0: श्रोताओं, दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू होते हैं। जब हम सुखी होते हैं तब दुख को हरगिज याद नहीं करते, लेकिन जब दुखी होते हैं तो सुख को ढूंढते रहते हैं। जब एक साहित्यकार इन दोनों पहलुओं को आंकने लगता है तब उनकी कलम सच्चे मायनों में चंद ऐसे किरदारों को जन्म देती है जो कहीं सुखी लाल और कहीं दुखी लाल के नाम से जन्म लेते हैं। श्रोताओं, सुख और दुख के इन दोनों पहलुओं को हमारे आज के मेहमान ने बखूबी परखा है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी। आप संयुक्त संचालक जनसंपर्क संचालनालय से हैं। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लेखन के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी, आपका रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमने कार्यक्रम में परिचय में बताया कि सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, और आपने अपनी एक रचना में दुखी लाल के किरदार को जन्म दिया है और उसी के रूप में आप लिख रहे हैं। कुछ बताएं उस किरदार के बारे में और उस रचना के बारे में।
1: ये दुखी लाल एक ऐसा करेक्टर है जो आपको अपने आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो जहाँ एक और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर दुखी हो सकता है, वो दुखी हो सकता है आपके बढ़ते हुए कद को देखकर, वो दुखी हो सकता है समाज की विद्रूपताओं को देखकर, वो दुखी हो सकता है समाज में असमानताएं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और को शायद परेशान न करती हों लेकिन दुखी लाल को बहुत परेशान करती हैं।
0: तो ये जो दुखी लाल का जो किरदार है वो आपने किस शैली में लिखा है? ये व्यंग है, कहानी है या क्या है इस किरदार में, इस रचना में स्पेशली आप क्या लिखते हैं?
1: ये व्यंग लेख है जी, जो लगातार मेरी एक यहाँ साहित्यिक पत्रिका जो प्रकाशित होती है साहित्य सागर, उसमें नियमित रूप से मासिक पत्रिका में मासिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पिछले दिनों, अब तो थोड़ा समय हो गया, एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ
0: जी जी।
1: दुखी लाल जी इस बात से दुखी हो गए।
0: अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने?
1: उनका दुख ये नहीं है कि वो गाना पॉपुलर क्यों हुआ, उनका दुख ये था कि वो मेलोडी कहाँ गई।
0: अच्छा।
1: वो जीवंत जो गीत थे जो आज भी लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर करते हैं और जो एक दिशा देते हैं, जिनमें न केवल रस था, न केवल सौंदर्य था, न केवल उसमें जो गीतात्मकता थी वो थी, बल्कि वो हर आदमी की जुबान पर आसानी से चढ़ने वाले गीत हुआ करते थे। अब जैसे यही गीत, अब आज देख लीजिए आप, वो कुछ दिन पता नहीं कितने हिट्स हुए, कितना क्या हुआ, किन किन ने गाया, किन किन ने गुनगुनाया, लेकिन गायब हो गया। तो लगता है दुखी लाल का दुख इस हिसाब से सही था।
0: ये तो बात हुई गीत की, गीत के अलावा और ये किरदार जो दुखी लाल है वो किन बातों से दुखी होते हैं?
1: अब दुखी लाल, बीच में विवाद चला भोजताल का कि नाम बदलना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, दुखी लाल इस बात से भी दुखी हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा, जो वाद विवाद की विषय जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भोपाल का ताल बना था तब उसने ताल ठोक के कहा था कि सूख जाऊं तो नाम बदल देना, इन दिनों लगातार सूख रहा है तो नाम तो बदलना पड़ेगा।
0: अच्छा। चलिए, ये तो बात हो गई व्यंग की। व्यंग के अलावा और क्या क्या लिखते हैं भरद्वाज जी?
1: शुरुआत तो कविता से ही हुई
0: जी।
1: मैं शिवपुरी से हूँ
0: जी,
1: मेरा जन्म ग्वालियर संभाग के शिवपुरी में हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा साहित्यिक वातावरण रहा। हालांकि शिवपुरी एक और अपने नैसर्गिक सौंदर्य, सघन वन संपदा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण तो विख्यात है ही, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में भी इसका योगदान रहा है
0: जी।
1: यह ग्वालियर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है, नेशनल पार्क और टूरिस्ट विलेज भी आकर्षण का केंद्र है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर साहित्यिक वातावरण भी कम नहीं रहा, वहाँ पर नियमित रूप से कवि सम्मेलन और इस तरह की साहित्यिक आयोजन निरंतर होते रहे, जो बचपन से ही मुझे सुनने को पढ़ने को मिले और मुझे लिखने का शौक हुआ। मैंने कविताओं से शुरुआत की और कहना चाहिए पहले तो छंद मुक्त कविता ही लिखी, जैसे एक छोटी सी कविता।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं और हमारे श्रोताओं को ये कविता सुनकर वाकई अच्छा लगेगा।
1: एक छोटी सी कविता, मेरे मीत तुम चाहते हो मैं भी लिखूं प्रेम के, प्यार के, विरह के, श्रृंगार के सुंदर सुमधुर गीत, लेकिन मेरे मीत मैं ही अगर गाऊंगा सपने सजाऊंगा तो कहेगा कौन, मत रहो मौन कौन द्वार द्वार अलख जगाएगा, इसलिए मैं गाता रहूँगा, देश विदेश सुनाता रहूँगा, नव उमंग ले नव सृजन के जागरण के गीत, मेरे मीत जागरण के गीत।
0: क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये तो बात हो गई आपकी शुरुआती दिनों की रचनाओं की। जैसे समय बीतता जाता है, हर रचना में परिपक्वता आती जाती है, उसके बाद की कोई रचना आप सुनाना चाहें, जब आपको लगा कि हाँ अब मैं और अच्छा लिखने लगा हूँ।
1: एक मुक्तक देखिए
0: जी।
1: अधूरा स्वप्न भी तो प्यार का अभिमान होता है, अधूरा स्वप्न भी तो प्यार का अभिमान होता है, विरह की वेदना उर्मे अधर पर गान होता है, जन्म से ही मृत्यु का भय मानने वालों, मरण का आखिरी पल भी कभी वरदान होता है, मरण का आखिरी पल भी कभी वरदान होता है।
0: बाकी बहुत खूब।
1: एक गजल पढ़ता हूं मैं
0: जी।
1: उसमें दरअसल वो एक सवाल है उन लोगों से जो जीवन से निराश हो जाते हैं, एक संदेश है उन लोगों के लिए। लोगों, हमने देखा है कि जिंदगी को लोगों ने कई तरह से परिभाषित किया है, लेकिन मेरे विचार से जिंदगी और कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह, जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह या उलझ रहे मकड़ी के जाल की तरह, जिंदगी नहीं अनुत्तरित सवाल की तरह या उलझ रहे मकड़ी के जाल की तरह, कल क्या हो इसकी फिक्र आज क्यों करें, कल क्या हो इसकी फिक्र आज क्यों करें, हाँ आज तो जिए खुशहाल की तरह, गम की चादरें हैं तो सहज कर रखें, गम की चादरें हैं तो सहज कर रखें, न फेंक दें फटे हुए रूमाल की तरह, न फेंक दें फटे हुए रूमाल की तरह, दो चार कदम और जानबे मंजिल बढ़ें मंजिल की तरफ, दो चार कदम और जानबे मंजिल बढ़ें, बैठे क्यों सिकुड़कर बूढ़ी खाल की तरह, और मरकर सुखी मिलेगा क्या जमानत है, मरकर सुखी मिलेगा क्या जमानत है, मौत तो एक ख्याल है हसीन ख्याल की तरह, मौत तो एक ख्याल है हसीन ख्याल की तरह।
0: वाकई बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर रचना आपने सुनाई। अब बात करते हैं कि जिन दिनों आपका लेखन की तरफ रुझान बढ़ा, किन्हें आप पढ़ा करते थे, किन्हें सुना करते थे, किस तरह का वातावरण था उन दिनों?
1: दरअसल शिवपुरी में साहित्यिक वातावरण हमेशा ही प्रभावी रहा है
0: जी।
1: बचपन से ही सुनते पढ़ते रहने से पता नहीं कब लिखने का शौक लग गया। लिखते लिखते पहले स्थानीय समाचार पत्रों, फिर ग्वालियर के दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्रों के साहित्य परिशिष्टों और बाद में राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ
0: जी।
1: रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारण भी होता रहा। दरअसल वो ऐसी उम्र थी जब लगता था कि हम लिखते तो इतना अच्छा है लेकिन हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा
0: जी।
1: इसलिए हम लोगों ने, हम उम्र युवाओं ने मिलकर एक साहित्यिक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा तरुणोदय साहित्य सभा। इस संस्था की नियमित गोष्ठियां हमने आयोजित की जहां सुनने सुनाने का मौका मिलता था। फिर इसी संस्था द्वारा प्रतिमाह एक विशिष्ट गोष्ठी भी आयोजित की जाती थी
0: जी।
1: विशिष्ट इस मायने में कि हम आसपास के किसी एक वरिष्ठ कवि को बुलाते थे और उनका काव्य पाठ हम कराया करते थे। इस काव्य पाठ से जहाँ हमें ये जानने को मिलता था कि आज क्या लिखा जा रहा है, वहाँ हमें अपने दोषों को खुद सुधारने की प्रेरणा भी मिलती
0: जी।
1: तो इस तरह से वहाँ पर हुआ। हमारे गुरु रहे हैं राम कुमार जी चतुर्वेदी चंचल, वो वीरस के कवि जाने माने, उन्होंने लाल किले से कवि सम्मेलन, लाल किले में जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें कई बार काव्य पाठ किया। वीरस की रचनाओं की प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। और व्यंग का जहाँ तक सवाल है तो रेडियो में एक कार्यक्रम निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने बात बात में पता नहीं क्या देखा और उन्होंने ये कहा कि भाई आप व्यंग बहुत अच्छा लिख सकते हो। उन्होंने मुझे व्यंग लिखने के लिए प्रेरित किया और न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्होंने मुझसे खूब लिखवाया। तो व्यंग के लेखन में जिसे कहते हैं लेखनी सुधारने का मौका मुझे उस समय मिला और अब धीरे धीरे लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है।
0: जैसे आपने बताया कि वीर रस की कविताओं की तरफ भी आपका रुझान हुआ, तो देशभक्ति को लेकर के आपने कुछ अगर लिखा हो वो हमारे श्रोताओं के साथ बांटें।
1: जी मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको।
0: हाँ जी।
1: इधर हम देखते हैं स्वप्न, इधर हम देखते हैं स्वप्न कि हमारे बाजुओं के साथ उग आए हैं दो पर पंख, इधर हम देखते हैं स्वप्न कि हमारे बाजुओं के साथ उगाए हैं दो पर, उधर हमें लगता है कि कुछ और नीचा हो गया है आसमान का सर, मगर हम भूल जाते हैं कि छू नहीं सकते आकाश, केवल सपने या एहसास, बल्कि आकाश छूने के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, बुलंद हौसला और आत्मविश्वास।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने चर्चा की थी कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है, तो कौन कौन सी पत्र पत्रिका थे, कौन से समाचार पत्र थे और किस तरह का रुझान प्राप्त होता था पाठकों का आपको?
1: पाठकों का आमतौर पे तो बहुत अच्छा लगा। दरअसल मेरी कोई स्वतंत्र पुस्तक तो अभी तक नहीं आई है
0: जी।
1: लोग कहते हैं कि निकालना चाहिए, लेकिन एक तो शासकीय सेवा की व्यस्तताएं मान लें, या ये मान लें कि उस दिशा में कभी कुछ सोचा नहीं कि ऐसा करना चाहिए। बाकी समाचार पत्र तो दैनिक मध्य प्रदेश के जितने हैं, बाद के जो हैं उनमें आप छोड़ दें, तो अधिकांश ख्याति प्राप्त पत्रों में, चाहे वह नई दुनिया हो या भास्कर हो, उनमें मेरा प्रकाशन हुआ है। पत्रिका मुक्ता दिल्ली प्रकाशन की पत्रिका है, उसमें भी मैं प्रकाशित हुआ हूँ, और इस तरह से प्रकाशन लगभग लगभग छुटपुट चलता रहा है।
0: हम चाहेंगे कि बातों के बीच बीच में एक एक आपकी रचनाओं का आनंद हमारे श्रोता लेते रहें। अब कौन सी रचना आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
1: फिर एक कविता में पढ़ता हूँ आपको।
0: जी बिल्कुल।
1: ए दोस्त, मैं जानता हूँ कि आज मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ। ए दोस्त, मैं जानता हूँ कि आज मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, और तुम मेरी विवशता पर हंस रहे हो। लेकिन एक दिन तुम देखोगे, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि मैं सुबह के सूरज की तरह विश्व का सारा अंधेरा पी लूँगा, तुमको, उसको, अखिल विश्व को जीवन भी दूंगा, क्योंकि मैं युवक हूँ, अगस्त्य की संतान हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं महान।
0: बहुत हो, मैं तरुण हूँ, मैं महान हूँ। अगर आप में ऐसी भावना हो कि आप अंधेरे को दूर कर सकते हैं सूरज की तरह, ये मादा अगर आप में है, तो आप हर, कहना चाहिए कि बाधा को पार करते हुए, आप जीत आपके हाथों में होगी। हमारे युवाओं में आजकल भटकाव देखा जा रहा है। अगर बात करें साहित्य की, तो साहित्य या उन्हें पढ़ने नहीं मिल रहा है या वे पढ़ना नहीं चाहते हैं, दोनों स्थितियां हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो साहित्य आसपास देखने, पढ़ने, सुनने में है।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल मैंने जो महसूस किया है या जो देखने में आया है, लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि अब उतनी रही नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये दूरदर्शन का प्रभाव हो सकता है, इतने चैनल हो गए हैं, कंप्यूटराइजेशन भी है, कंप्यूटर में भी इतना कुछ मिल जाता है कि वो जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि अब उतनी नहीं रही। लोग सब कुछ खोज सकते हैं कंप्यूटर पर, वो वहाँ पर सर्फिंग में उनको ज़्यादा मज़ा आता है बजाय पढ़ने के। लेकिन फिर भी ये तो है कि लिखे हुए शब्दों का अस्तित्व न कभी समाप्त हुआ था, न होगा। लोगों के लिए वे हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, और युवा पीढ़ी से धीरे धीरे, हो सकता है जब वो ऊब जाएंगे इन सब से, तो फिर पुस्तकों की तरफ आएंगे।
0: कहा जाता है जब कोई रचना बनती है, जब लिखी जाती है, तो तब कवि या लेखक के मन में सिर्फ विचार होते हैं, लेकिन जब उन विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को भी और जो उस रचना से जुड़े होते हैं, चाहे पाठक के रूप में या श्रोता के रूप में। आपकी कई रचनाओं को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कुछ उनके बारे में बताएं।
1: ये बात सही है कि जैसे जैसे पुरस्कार मिलते हैं, वैसे वैसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको मैं एक प्रतिक्रिया के रूप में लेता हूँ, कि यदि पुरस्कार मिलता है या लोग किसी रचना को सराहते हैं, तो लगता है कि मुझे इस तरह का लेखन और करना चाहिए, और वो प्रेरणा मिलती है।
0: तो अभी हाल ही में जो आपको पुरस्कार महामहिम राज्यपाल जी से मिला है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: ये एक समग्र लेखन के लिए, कहना चाहिए, मुझे मिला है, और जो साहित्य सागर के संपादक हैं, दरअसल मेरा ये 60वां जन्म दिवस था, इसलिए उस नाते हीरक सम्मान के रूप में मुझे ये पुरस्कार दिया गया, और उस समय वो नटवर सम्मान एक गीत का सम्मान होता है जिसमें वो राष्ट्रीय गीत उत्सव होता है उसमें वो नटवर गीत सम्मान देते हैं, उस मौके पर ये सम्मान मुझे दिया गया।
0: जैसे कि आपने बताया कि सम्मान भी मिल रहा है और आप काफी समय से लिखते आ रहे हैं, इन दिनों किस रचना पर काम कर रहे हैं आप?
1: फिलहाल तो मैं केवल दुखी लाल
0: डूबे हुए हैं
1: उसी में, अभी तो वही चल रहा है, आगे देखें।
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, कौन सी रचना अपनी उन्हें सुनाना चाहेंगे?
1: एक चार पंक्तियों से एक मेरी रचना है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, किंतु कितनी दूर कह तो अब सवेरा है, फैल जाएगा उजेला दो घड़ी तो बीतने दे, फैल जाएगा उजेला दो घड़ी तो बीतने दे, मीत अमृत सुख मिलेगा पीर प्याला रीतने दे, फिर बताना किस जगह तमका बसेरा है, मानते हैं पंथ में गहरा अंधेरा है, किंतु कितनी दूर कह तो अब सवेरा।
0: वाकई बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई। सुरेंद्र भारद्वाज जी, आप रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में आए, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से, व्यस्तताओं के बीच में से आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके श्रोताओं तक पहुँच सकूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वाकार्थ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का,
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम। हमारा विशेष कार्यक्रम शहीद भगत सिंह।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: हाँ बेटा कैसे?
2: अरे आपने, क्योंकि आपके गुरु सुंदरलाल जी है।
1: हाँ।
2: ने मधुसूदन ने मार्च लिखे के बसंती रंग जमाए।
1: बसंती रंग जमाए।
2: अच्छा अब हमारे आप ये बताओ, क्या आपका मन में यो क्रांति को विचार आयो कहाँ से?
1: अरे बेटा भैया, तो घनी बड़ी बात पूछ ली तेना हमारा से। जदे मैं छोटो थो, तुम्हारा एक काका जी देश छोड़ी के चली गया, ने भी वहां से क्रांतिकारी गतिविधि चला गया था। और हमारा एक काका जी के अंग्रेज सरकार पकड़ी के ले गई।
2: अच्छा।
1: जद से ही मारो अंग्रेज सरकार का खिलाफ हुई।
2: फिर कहीं हो
1: बेटा, जदे मैं छोटो थो तो पिताजी के साथ खेत पे भी जाते थे।
2: अच्छा।
1: तो सुन मैंने कहीं
2: कर,
1: मैं बोलियो पिताजी।
2: हाँ?
1: यो जो तुम धान उगाओ खेत का माँ है।
2: अच्छा।
1: तो मैं भी बंदूक उगाऊंगा खेत का
2: माँ। अरे वाह, पिताजी कहीं बोलिया?
1: अरे बेटा पिताजी बोलिया कि बेटा हमारा खेत में तो धान उगे है जिससे ही सबको पेट भरी हो जाए।
2: सही बात है। फिर आपने कही क्यों?
1: मैं बोलियो पिताजी, बंदूकें भी ढेर उगेगी जो दुश्मन के मार भगा।
2: वाह, फिर आगे कही?
1: अरे बेटा फिर हमारा पिताजी बोलिया कि जा भगत घरे जा। मैं बोलियो पिताजी, बालक हूं पर समझू पीर पराई रे, अंग्रेजों का घाव की नहीं भर पाई रे।
2: सही बात।
1: बेटा भीतर आओ, पिताजी घरे आई।
2: अच्छा।
1: पिताजी का पाछे घूम दो, मैं भी घरे। मैं बोलियो पिताजी, महाराज से इन कातियों को दुख नहीं देखो जाए, इन कातियों को दुख को कारण अंग्रेज सरकार है।
2: फिर
1: पिताजी बोलिया, बेटा महाराज तो अभी नानो है, इतरो समझे योज बोते।
2: या बात तो मैं कहूँ कि भारत का बच्चा बच्चा होने के सीखनी चाहिए।
1: एकदम सही बात है बेटा।
2: है, सही बात।
1: देख बेटा, मैंने गदर से जुड़िया सगला नेता उनका बारे में सुनियो है।
2: अच्छा।
1: जैसे गांधी जी।
2: हाँ।
1: करतार सिंह सरावा।
2: अच्छा।
1: लाला लाजपत राय और हमारा चाचा अजीत सिंह जी और भी कई सर।
2: फिर
1: अरे जदे में थोड़ा बड़ो हुई हो।
2: हाँ।
1: तो पिताजी मारे बता रहा था कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने घणो अत्याचार करियो।
2: ये सो तो कई अत्याचार करो करियो, जरा हमारे भी सुनाओ।
1: सुन मारी बात।
2: सुना।

0: मैडम इन्हीं घटना का बाद गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करी थी, पर मारे तो पाठशाला जानो थो नहीं। मैं भाजी के जलियांवाला बाग गई हूँ और देखियो कि अंग्रेज पुलिस को घड़ो पहनो है, पर मैडम मैं अंग्रेजी पुलिस से बच तो बचा तो शुभ तो हूँ वो जलियांवाला बाग मुझे। शहीदों की खून से सनी मिट्टी सीसी में भरी के बैठक धरती माँ के प्रणाम करी के ने घरे पहुंची। तुम्हारी माँ ने बेन दो ही परेशान हो रही थी, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नहीं बोली, तुम्हारी बेन बोली पड़ी।
1: अच्छा,
0: माँ माँ भगत आई जो माँ बोली क्यों रे तू पाठशाला तो नहीं गयो तो फिर कहाँ गयो तू। मैं बोलियो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन देख ही नहीं सीसी के, मैं शहीदों की मिट्टी लेवाने जलियांवाला बाग गयो थो, मैं एक ही पूजा करूं।
1: तो जल ऐसो अत्याचार करियो जनरल डायर ने।
0: आओ मित्र आओ तुम्हारे ही बताऊं कि जलियांवाला बाग अत्याचार का बाद आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नाम की जगह पे कहीं करियो
1: हाँ बताओ।

0: साथियों, इन्हीं घटना का बाद हमारा मन में घनी उथल पुथल मची। हमारे भी करतार सिंह सराबा का रास्ता पर चलना था, तो मैं पिताजी से बोले, पिताजी हमारे भी आगे की पढ़ाई का वास्ते कॉलेज जाना।
1: अच्छा, फिर?
0: अरे पिताजी घना घुस गया।
1: अरे
0: पिताजी बोलिया, बेटा भगत, मैं भी तो यही सोच रहे थो कि तू आगे और पढ़ाई करे और देश का वास्ते काम करे।
1: सही बात
0: मित्रों। फिर इन्हीं तरह मैं नेशनल कॉलेज लाहौर पहुंची। वहां हमारे कई नौजवान क्रांतिकारी साथी मिले।
1: अच्छा, हो
0: और अब मैं भी क्रांतिकारी बनी गयो। तो इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: वंदे
2: मातरम,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद।
0: वहां हमारा साथियों ने नौजवान भारत सभा नाम की पार्टी बनाई।
1: अच्छा,
0: पर पैसा की तंगी के कारण हमारा साथियों के ट्रेन तक लूटनी पड़ी, जो काम हमारे बिल्कुल पसंद नहीं।
1: फिर आगे कही वो
0: यो काम उन्होंने 7 मार्च 1925 को काकोरी में किया।
1: बताओ बताओ, ये काम उन्हें किनी तरह करी हो?
0: यो भी सुनो।

0: कर रहे मैं पैदा ही हमारा दो भाई उनके क्रांति की आग में ठोकी दी। एक तो शहीद हुई जो और दूसरा जो है विदेश चली गयो, वहां से आंदोलन चली गयो। बेटा मैं अब थारा नहीं खोनो चाहूं।
1: पिताजी उन चारी की फांसी देखी के मारो खून भी उबाला मारी है। मारे अंग्रेज सरकार से बदलो ले रही है पिताजी, मैं चुप नहीं बैठी सकूं।
0: अरे तू बदलो ले, मैं थारा मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं थारा मारा दो भाई उनके खो चुके हूं।
1: मारी बात सुनो पिताजी।
0: सुना

0: की मैं चुपनी बैठी सुखू हमारे अंग्रेज सरकार से बदलो लेनू ही।
1: अरे तू बदलो ले।
2: हे अरेस्ट हिम। योजे साहब योजे, इन्हें काकोरी कांड में साथ दियो। योजे योजे।
3: और दशहरा का मैदान मेला में बम फेंको इन्हें। योजे।
2: और करतार सिंह सराभा को जन्मदिन भी मनाया हुई
0: है।
3: गुनाह
2: अभी जेल में जाओगे तो मालूम पड़ेगा।

0: बड़ी मुश्किल से मैंने थारे जेल से छुड़वाए हो, अब तो थोड़ा दिन शांति रखी। चल, थारी माँ ने थारे वास्ते एक लड़की देखी। मैं कल उनका पिताजी से बात करने गई हूँ, जब तक तू थोड़ा अपना ध्यान रख।
1: ठीक है पिताजी।
2: कई बोली भी नहीं सकूं, ऐसो करूं कि एक पत्र लिखूं जिससे ही हमारी सब बात समझी जाएगा।

0: मित्रों कई बात है, आजाद जी और लाला जी अभी तक नहीं आया।
1: हाँ, तुम चले गए हो। वे आजाद जी ने लाला

0: वो आ जाती। आप सभा में आइया, सभा की रौनक बढ़ी। अबे मारो निवेदन तो आपसे कि जब आप आया हो तो थोड़ा सभा को अपने परिचय दे।
1: तो लो अभी देगा।

0: साथियों, भारत में साइमन कमीशन का सदस्य आया हुआ है। वे कोई नया कानून लागू करे जी का पहले उनके यहां से बाहर भगाना।
1: हाँ हाँ भगाना है। हाँ मित्रों, 20 अक्टूबर 1920 का दिन साइमन कमीशन लाहौर आयो है और हम सबके मिली के उनका खिलाफ प्रदर्शन करना है।
2: तैयार है।
1: एक खास बात और मित्रों, इन्हीं प्रदर्शन में लाहौर की जनता भी हमारा साथ है, शामिल हुए।
2: तो बहुत अच्छी बात है।
1: अच्छी। और लाला जी, आप सबसे आगे रहो।
3: ठीक है।

0: मित्रों, लाला जी की कहीं खबर है कि नहीं है?
1: अभी तक कोई खबर नहीं आई।
2: साथियों, इलाज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई, विदेश में शहीद हुई।
0: लाला जी शहीद हुई।

0: साथियों, हमें लालाजी की मौत का जिम्मेदार जेम्स स्कॉट के मौत की सजा देनी है।
1: हाँ साथियों,
2: देनी है।
3: जयपाल, तुम्हारे स्कॉट की निगरानी रखनी है।
1: हाँ, रखूंगा।
0: भगत, तुम पिस्तौल चला दो। नहीं, मैं निगरानी रखूंगा पुलिस से।
4: भगत, मैं तुम्हारे साथे रहूंगा।
3: ठीक है, तो फिर आओ सब हमारा साथ है।
4: चलो।
3: मुझे बाहर निकलो, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लो।

0: अरे यो तो स्क्वाड नहीं सैंडर्स मेरी क्यों?
1: भागो भगवान, भागो पुलिस।
2: चलो अच्छा हो इसका, नहीं तो सैंडर्स मरी गयो। अरे मरी गयो देश को दुश्मन।
3: साथियों सब तो ठीक है, पर पूरा लाहौर शहर में पुलिस फैली हुई है। मैं दुर्गा भाभी का साथ कलकत्ता जा रही हूँ, तुम सब भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंचो।
2: ठीक है भगत।
3: ठीक है। इंकलाब
4: जिंदाबाद।
3: वंदे
4: मातरम।
2: और साथियों सैंडर्स हत्याकांड के बाद में अंग्रेजी सरकार बौखलाई गई है, चप्पा चप्पा पे निगरानी बढ़ाई दी गई है। तुम भी अपनो ध्यान रखो साथियों।
5: तो ठीक है साथियों, तुम भी अपना अपना ठिकाना पे पहुंच जाओ, मैं भी छिपता छिपाता अपना ठिकाना पे पहुंच जाऊंगा।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
4: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
7: अरे हाँ धनलाल, कई बात है।
8: हेलो।
9: नहीं नहीं कहीं कहीं।

0: इधर अंग्रेज जीवन दे दिया हमारे करे यार दादा। अरे पहले थकी गया मैं।
1: क्या था? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जाओ ढूंढो से।
2: जी साहब।
0: चल चल।
3: कलकत्ता में राजनीतिक दल ने अंग्रेज सरकार का बीच एक बहुत बड़ा अधिवेशन चली रही थी। अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग के ठुकरे दी। ने जनता तो पूर्ण स्वराज की मांग पे अड़ी हुई थी। ने आई अपनो भगत दुर्गा भाभी का साथे कलकत्ता पहुंची गयो बेस बदली के। पर कलकत्ता में राजनीतिक दल उनकी बात सुनी गई इनको मन बहुत दुखी। तो भी पाछा दिल्ली आई गया। देखो देखो दिल्ली में कहीं करी जा रही। और अभी अपना साथी उनका साथे मीटिंग करी रिया।
4: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं राजा राम मोहन राय की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा, स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

श्रोताओं नमस्कार। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी प्राचीन और सुदृढ़ हैं कि विदेशी लोग भी हमसे हमेशा कुछ ना कुछ सीख लेकर जाते हैं। उसके बावजूद हमारे सामाजिक रस्मों रिवाजों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी हैं जिन्हें सुधारे बिना हमारे देश की तरक्की अधूरी है। ऐसा ही कुछ 18वीं सदी में हमारे समाज सुधारकों ने भी सोचा था। उन समाज सुधारकों में मुख्य थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसी महान विभूति के जीवन पर आधारित सुनते हैं हम आज का कार्यक्रम।

0: अभी बेचारे की उम्र ही क्या थी जगमोहन की।
1: अरे यही तो भाग्य का खेल है।
0: देखो तो कितनी सुंदर है उसकी पत्नी अलका मंजरी, लाल पट्टेदार सफेद साड़ी, उस पर कुमकुम की बड़ी सी लाल बिंदी और बिखरे हुए बाल। और ये सुंदरता देखने वाला उसका पति जगमोहन ही नहीं रहा।
1: अब इस सुंदरता का क्या लाभ? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सहगामना रस्म के लिए अलका मंजरी के पीछे महिलाओं के साथ रहो। जाओ।
0: ठीक है, मैं जाती हूँ।

0: से कामना क्या होता है? अलका मंजरी भाभी इतनी सजी हुई क्यों है? भैया जब वो नहीं है तो वो डर रही है।
1: राम मोहन तू अभी बच्चा है, नहीं समझेगा मेरे बच्चे।
0: बताओ ना बुआ, सहगामना क्या होता है? भाभी भाभी को लोग कहाँ ले जा रहे हैं?
1: देख बेटा, जिसका पति मर जाता है उस महिला को अपने पति के साथ स्वर्ग जाना होता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है ना पति की। तो चिता में पत्नी को भी अपने मरे पति के साथ बिठाया जाता है, इसी को सहगामना कहते हैं, मतलब सती होना कहते हैं बच्चे।
0: पर भाभी, भाभी तो जिंदा है, वो जल नहीं जाएंगे चिता की आग में।
1: मैंने कहा था ना बच्चे कि तू नहीं समझेगा, बस इतना समझ ले कि पति के साथ पत्नी भी स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है।
0: पर ये तो गलत है, भाभी जिंदा है, भाभी तो जिंदा है ना।
2: नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं मरना चाहती, नहीं, नहीं मुझे नहीं जलाना, मैं नहीं मरना चाहती।
3: अरे अलका मंजरी भागने की कोशिश में, कसकर पकड़े रहो इसे, कसकर पकड़े रहो।
2: नहीं मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जलना चाहती।
3: पकड़े रहो, पकड़े रहो, जाने मत दो।
1: हाँ हाँ पकड़ रहे हैं। अपशगुन मत कर, तू तो जीते जी स्वर्ग जा रही है अलका मंजरी। अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है री।
3: पकड़ के रखो इसे।
2: मुझे मत चलो, मुझे मत चलो, मैं नहीं करना चाहती, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। अम्मा जी मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
3: अरे इसे चिता के साथ बांध दो, कहीं उठकर भाग ना जाए। जल्दी करो, जल्दी करो।
4: महासती की
5: जय,
4: महासती की
5: जय।
2: मुझे मत बांधो,
4: चिता में आग लगा दो।
0: चाचा जी ऐसा मत करो, भाभी जल जाएंगी। रुको, अरे रोको इसे सब, मत बांधो भाभी को।
4: तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको राम मोहन, रुको,
2: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे भाभी, कोई बचाओ, मुझे मत बांधो।
6: ये थे हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, जिनका बचपन में ही इस दर्दनाक घटना के रूप में समाज की कुरीतियों से सामना हुआ। इस दर्दनाक घटना ने उनके जीवन को एक दिशा दी, जिसकी वजह से उनके मन में भारत से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को मिटाने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक रस्मों की कट्टरता को समाप्त किया, विधवा विवाह की शुरुआत की, भारत में अध्ययन को एक नई दिशा दी, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखते हुए विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान बढ़ाने का गुर दिया, ताकि भारत समय के साथ आगे बढ़ सके और विश्व में नाम कमा सके।
7: जब मुगल साम्राज्य अपनी समाप्ति पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आधिपत्य भारत पर जमाने में लगी थी, ऐसे समय में राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के गांव राधा

0: राम मोहन की माँ कहाँ हो? आज भोजन नहीं पकाया क्या?
1: अरे आप खाना खाने के लिए आ गए, मैं अभी थाली लेकर आती हूँ।
0: अरे तुम्हें क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, बहुत सुस्त लग रही हो। एक बज गया है, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं?
1: अभी खा लेती हूँ, राममोहन वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो जैसे उठेगा मैं भी खा लूंगी।
0: रामायण पढ़ रहा है? पर पूजा घर में तो कोई नहीं है।
1: वो अपने कमरे में आसन बिछाकर पढ़ रहा है।
0: ये नहीं सुधरेगा, जब मन में धार्मिक भावनाएं भी हैं, श्रद्धा भी और आस्था भी, तो भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठकर पूजा क्यों नहीं करता?
1: जाने दीजिए ना, किसी ना किसी रूप में वो भगवान को तो मानता ही है।
0: पर वो ना तुम्हें मानता है और ना ही मुझे। मेरी मूर्ति पूजा तो उसे कभी नहीं भाई। पर क्या उसे तुम्हारी भी चिंता नहीं है? उसे पता नहीं है कि तुम इतनी देर तक उसकी वजह से भूखी रहकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो।
2: माँ,
0: लो आ गया तुम्हारा लाडला।
2: माँ तुमने अभी तक भोजन नहीं किया।
1: अरे बेटा तूने रामायण पढ़ ली?
2: जी।
1: चल बैठ, बैठ यहाँ, तेरे पिताजी के साथ मैं तेरे लिए भी थाली लेकर आती हूँ। बैठ बैठ।
2: माँ रोजाना मेरे लिए इतनी देर तक भूखी रहती हैं, ये तो मुझसे अपराध हो रहा है। नहीं नहीं, कल से ऐसा नहीं होगा।
1: ये लीजिए आपकी थाली, और ये ले राम, ये तेरी थाली, चल प्यार से खा ले।
2: माँ ये पहला ग्रास आपके लिए, खाओ।
1: अरे अरे
2: अरे लो ना।
1: अरे तू खाना।
2: अरे आप खाओ।
1: नहीं तू खा बेटा।
2: अरे माँ मेरी भगवान तो आप ही हो, अगर आप ही भूखी हो तो मैं खुश किसे कर रहा हूँ? आज के बाद ऐसा नहीं होगा माँ, ज्ञान की भूख तो सदा बनी रहती है, वो तो मैं खाने के बाद भी ग्रहण कर लूंगा। आप खाओ ना माँ, लो
1: मेरा राम।
2: और लो ना, ये लो।
1: तू भी तो खा, ये ले।
3: राजा राम मोहन रॉय बहुत ही अधिक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे, ढकोसले और अंधविश्वास उन्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर सके। बहुत ही कम उम्र में वे घर छोड़कर सन्यासियों के एक दल में शामिल होकर तिब्बत चले गए। वहां उन्होंने देखा कि वे लोग अपने गुरुओं को भगवान मानकर पूछते हैं, ये बात भी उन्हें पसंद नहीं आई। उनकी इस बात से वो साए वहां के गुरुओं और उनके चेलों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन एक तिब्बती महिला ने किसी तरह उन्हें बचा लिया और राजा राम मोहन रॉय को वापस भारत भेज दिया।
1: भारत वापस आने पर पिता ने सोचा कि राम मोहन का विवाह कर दें ताकि वो घर से बंधे रहें, पर यह भी संभव नहीं हो पाया। कुछ समय बाद वो घर छोड़कर बनारस चले गए और दिन रात पढ़ाई में लगे रहते। वेदों और उपनिषदों में लिखे श्लोकों के गूढ़ अर्थों को जानने का प्रयास करते। पिता की मृत्यु होने पर उन्हें वापस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुर्शिदाबाद लौटना पड़ा। मुर्शिदाबाद आकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू विभाग में काम किया। यहाँ उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए।

0: अरे माँ, जिस अंग्रेजी ऑफिसर जॉन डिगबे का मैं असिस्टेंट हूँ ना, उनके पास बहुत सी अंग्रेजी किताबें हैं।
1: तो उससे तुझे क्या फायदा?
0: अरे माँ, मुझे उनका काम करने के लिए अंग्रेजी को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, इसीलिए अब मैं अंग्रेजी किताबों को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ।
1: अच्छा।
0: उनके पास लंदन के अंग्रेजी अखबार भी आते हैं, मैं वो रोज पढ़ता हूँ।
1: पर तू अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा?
0: यही तो हम भारत के लोगों की कमजोरी है माँ। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए। ये सोच गलत है माँ। हमें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई विश्व की घटनाओं की जानकारी मिल सके।
1: तू खाना खा ले, तेरी ये गूढ़ बातें मेरी समझ में नहीं आती।
0: तेरी समझ में वेद तो आते हैं ना माँ?
1: हाँ।
0: तो मैं सोच रहा हूँ कि वेदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके पूरे विश्व को बताऊं कि हमारे भारत की संस्कृति और ज्ञान कितना समृद्ध है।
1: अच्छा। तू सब कुछ कर सकता है राम, ऐसा जरूर करना।
2: उस दौर में स्कूल व विश्वविद्यालयों में संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई जाती थी। बहुत ही कम लोग वेस्टर्न साइंस पढ़ते थे, जो कि अंग्रेजी भाषा में ही होती थी। उस समय राम मोहन ने अंग्रेज जॉन डिगवे के साथ काम करते करते बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी, पढ़नी और लिखनी सीखी।
1: जब सन 1814 में जॉन डिगवे को इंग्लैंड जाना पड़ा, तो राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता लौट आए और बाकी का जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वे अंग्रेजी भाषा सीखने को महत्व देते थे। इस कारण कुछ ईसाई मिशनरीज को उनके बारे में गलतफहमी हो गई।
3: माय चाइल्ड राम मोहन।
0: यस फादर।
3: तुम अंग्रेजी भाषा सीखने को इतना महत्व देते हो, Then why don't you change your religion? तुम धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते?
0: जी, मैं फादर अंग्रेजी भाषा को महत्व देता हूँ, अंग्रेजी कल्चर को पढ़ता और समझता भी हूँ। पर क्या आपने हिंदू धर्म के वेदों को पढ़ा है फादर? मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही उनका अंग्रेजी रूपांतरण किया है। आप पहले उसे पढ़िए और मुझे ये बताइए कि आपके धर्म में क्या ऐसे ग्रंथ और ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके इतने उच्च विचार हो फादर?
3: माय चाइल्ड राम मोहन, ये क्या कह रहे हो तुम?
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ फादर। हमारा हिंदू धर्म इतना उदार है कि वो हर धर्म, जाति और देश को समान समझता है। ईश्वर तो एक ही है फादर, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग जरूर हैं। ईश्वर तो कण कण में है, हर इंसान में व्याप्त है, फिर ये तेरे मेरे का भेद क्यों फादर?
3: नो राम मोहन, नो। अगर हमारा कल्चर अच्छा नहीं होता तो तुम इतना डीपली हम लोगों से घुलते मिलते नहीं।
0: फादर, हम हर इंसान को एक सा मानते हैं। वही दो आंखें, वही एक नाक, वैसा ही मुंह और उतने ही दांत। क्या आप लोगों के शरीर और हमारे शरीर में कोई फर्क है फादर? अंतर है तो केवल बाहरी रंग का, है ना फादर? हमारे शरीर भीतर से तो एक जैसे ही है ना। हम तो जानवरों और पक्षियों में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। फादर, सभी धर्म बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। मैं अपने धर्म और अपने देश से बहुत प्यार करता हूं फादर। फादर, अगर ज्ञान गंदगी में भी पड़ा मिलेगा तो मैं उसे वहां से भी उठाने में हिचकूंगा नहीं।
2: ऐसे थे हमारे राजा राम मोहन रॉय के विचार। उनके आत्मविश्वास, हिम्मत, ज्ञान और जनता के प्रति कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मुगल बादशाह ने उन्हें राजा का खिताब दिया था।
1: उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों को दूर करने तथा महिला शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा देने की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने जैसे विचारों वाले दोस्तों के साथ मिलकर एक सभा बनाई, आत्मीय सभा। इस सभा में वो एक ही हॉल में बैठकर धर्म चर्चा करते थे, वेद पाठ करते थे और सामूहिक मंत्रोच्चारण करते थे। वे जानते थे कि सामूहिक मंत्रोच्चारण से तन और मन की शुद्धि होती है।
2: इसके साथ साथ वे गरीबों की भी बहुत सेवा करते थे। उन्होंने अपने और उनमें कभी कोई फर्क नहीं समझा और वे किसी भी जरूरतमंद के घर जाकर उसकी दशा देखकर उसकी सहायता कर देते थे। समाज में उच्च स्तर की शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के स्कॉलर्स की एक एसोसिएशन बनाई।
3: इस एसोसिएशन का हमारा अगला उद्देश्य क्या होगा?
4: राधा कांतो जी, राजा राममोहन रॉय जी को आने दीजिए, फिर फैसला कर लेते हैं।
5: माधव कांत जी,
3: अगर राजा राममोहन रॉय नहीं होंगे तो क्या हम कोई फैसला नहीं लेंगे? हमारी कोई अहमियत नहीं है।
4: देखिए देखिए, आप नाराज मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है राधा कांतो जी, वो तो इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं। अब कर्टेसी से एक हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो बस आते ही होंगे।
6: Why do you argue unnecessarily? हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। जब राजा राममोहन रॉय आएंगे तो he will join us. वो हमारी बातों में शामिल हो जाएंगे। Listen, हमारा अगला उद्देश्य तो एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना है जहां हर प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
4: जी हाँ, भारत के बच्चे फिजिक्स, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स और सभी तरह के विषयों में पढ़ाई कर सकेंगे।
6: बिल्कुल।
3: इस शिक्षण संस्थान में जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी, आई विल इन्वेस्ट।
6: वाओ, इट्स नाइस। क्लैपिंग।
3: मैं इस शिक्षण संस्थान पर पूरा पैसा लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर राजा राम मोहन रॉय इस एसोसिएशन का मेंबर रहेगा तो मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा।
4: एक मिनट राधा कांतो जी, आपको शायद याद नहीं रहा कि राजा राममोहन रॉय इस एसोसिएशन के संस्थापक हैं।
3: जो कुछ भी हो, मैं पैसा तभी
6: ठीक है। ठीक है, ठीक है राधा कांतो जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं आज अभी इसी समय इस एसोसिएशन को छोड़ता हूं।
4: राममोहन, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
6: देखिए, एसोसिएशन का कार्य होना चाहिए, मेरा सदस्य होना या ना होना कोई माने नहीं रखता। आप शिक्षण संस्थान बना लें।
2: सन 1816-17 के उस समय में एक शिक्षण संस्थान खोलना, इतना अधिक पैसा लगाना वाकई टेढ़ी खीर थी। पर आहत राजा राममोहन रॉय ने किसी तरह से पैसा एकत्र किया और अपने बूते पर एक अंग्रेजी स्कूल खोला। इसमें संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, भूगोल और विज्ञान के सभी विषय पढ़ाए जाते थे। उस दौर में विदेश इक्के दुक्के भारतीय ही जा पाते थे। राजा राममोहन रॉय पहली बार लंदन गए, राजाओं की पेंशन के सिलसिले में। दूसरी बार फिर लंदन गए, वहां की पार्लियामेंट में भारत से सती प्रथा को मिटाने का मुद्दा लेकर। उसके बाद तो राजा राममोहन रॉय जब भी विदेश जाते, एक ज्ञानी समाज सुधारक भारतीय के रूप में उनका हार्दिक स्वागत होता। एक बार
7: पिताजी।
6: हाँ बेटा।
7: पिताजी ये देखिए, एक निमंत्रण पत्र आया है।
6: हाँ?
7: किन्हीं विलियम रैथबॉर्न का है, वो आपसे अपने देश में मिलना चाहते हैं, आने जाने का टिकट भी दे रहे हैं।
6: अरे विलियम रैथबॉर्न तो यूके के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं।
7: अच्छा।
6: सुना है कि वो पैरालिसिस का शिकार हो चुके हैं।
7: वो लिख रहे हैं कि उनकी अंतिम इच्छा राजा राम मोहन राय यानी आपसे मिलने और बातें करने की है।
6: ओह।
7: आपके स्वागत के लिए वो स्वयं तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके पुत्र जरूर आएंगे।
6: मैं अवश्य जाऊंगा बेटा, अवश्य जाऊंगा और उनसे बातें भी करूंगा।
2: प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम रैथबॉर्न ही नहीं, बल्कि कई देशी विदेशी संस्थाएं विदेश आने पर उनका सत्कार करती थी। राजा राममोहन रॉय इतने संपन्न थे कि कलकत्ता में विदेशी लोग भी उनसे उधार ले लेते थे। उन्होंने अपना कमाया पैसा लोगों की सेवा और देश के कल्याण के लिए लगाया था। जीवन के अंतिम दिनों में वे लंदन में थे।
4: वहां उन्होंने किसी फर्म में फायदा होने के इरादे से अपना पैसा जमा कराया। पर
7: पिताजी, पिताजी।
6: हाँ बेटा।
7: पिताजी, जिस फर्म में हमने पैसे जमा किए थे वो तो डूब गई है।
6: क्या? लेकिन बेटा, हमारा तो बहुत सारा पैसा उसमें लगा था।
7: हाँ, और मैं आपको बताना ही भूल गया कि आप ही के कुछ दोस्तों ने पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर आप पर केस कर दिया है।
6: केस? और मुझ पर?
7: जी।
6: लेकिन बेटा, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया।
7: ये आपकी शराफत का फल है पिताजी। आपने अपने साफ दिल से उन्हें बहुत सी बातें बताई होंगी, उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है।
6: मेरे साथ चीटिंग की है उन्होंने। मगर नहीं बेटा, मैं अपने पर यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं केस लड़ूंगा बेटा, मैं केस लड़ूंगा चाहे जितना भी पैसा लगे।
7: सोच लीजिए पिताजी, हमारे पास अधिक पैसे नहीं बचे, कहीं खाने के लाले ना पड़ जाए।
6: जो कुछ भी हो बेटा, पर मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं
7: मानूंगा, नहीं मानूंगा। जैसा आप उचित समझे।
4: खुद को निर्दोष साबित करने के लिए राजा राममोहन रॉय ने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उन्हें एक समय के भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था।
1: लंदन में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन रॉय के पंचभूतों की सत्ता समाप्त हो गई। उन्हें वहीं दफना दिया गया। उनका एक दोस्त 1843 में इंग्लैंड गया और उसने राजा राममोहन रॉय को स्टेपलेटन कब्रगाह से निकालकर आर्नो वेल्स में जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और यादगार के लिए भारतीय अंदाज में एक स्मृति चिन्ह बना दिया।
4: आज भले ही राजा राममोहन रॉय हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्यों की महक भारतीयों की सांसों में समाई हुई है। उनकी दी शिक्षा प्रणाली से, ज्ञान अर्जन से आज भारत विदेशों से टक्कर लेने में पूरी तरह से सक्षम है। हम ऐसे सूर्य राजा राममोहन रॉय को शत शत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे राजा राम मोहन राय

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
2: श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुँचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खंबे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूं। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से 2 सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नर्तकी पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसे में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की और समाज सेवा में जुट गए। इसी बीच स्वास्थ्य ठीक न होने पर थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भी हो आए, पर उनका मन खिन्न था क्योंकि
1: स्वदेश लौटे स्वामी जी का सर्वत्र बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत तो हो रहा था और वे नवीन कर्मधारा प्रारंभ करने की तैयारी में लगे थे, पर उनकी सफलता पूर्णतः निर्विवाद या निर्विरोध नहीं थी। इस विरोध का किंचित आभास हमें पहले भी मिल चुका है।
0: श्रीलंका के अनुराधापुरम में लोगों ने उनकी सभा में विघ्न डाला। मद्रास के पंडित उन्हें तर्क में हराने आए थे। फिर किसी ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें गैरिक वस्त्र धारण करने का क्या अधिकार है। बंगाल में भी उनके विरुद्ध चार करने वालों की कमी न थी, पर इससे स्वामी जी के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। इस कड़ी में हम लोग इन्हीं विरुद्ध चारों के बारे में जानेंगे।
1: पुरानी बात है, स्वामी जी जब अमेरिका में शत्रुओं के आक्रमणकारी व्यवहारों से परेशान थे और स्वदेश से समर्थन पाने की आशा में जब उन्होंने कलकत्ते में एक सभा आयोजन करने की सलाह दी थी, तब भी कलकत्ते के रूढ़ीवादी समाज में स्वामी जी के जाति के विषय में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी।
0: उस सभा के सभापति बनाने के लिए कलकत्ते के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री मनमोहन मित्र, नगेंद्र नाथ मित्र, भूपेंद्र कुमार बसु, चारू चंद्र बसु तथा कुछ अन्य लोग माननीय गुरुदास बंदोपाध्याय के पास गए थे। जब उनसे उक्त सभा में अध्यक्षता करने की बात कही गई तो वे निरुत्साह दिखाई दिए और कहा,
2: किसी विशिष्ट महामहोपाध्याय पंडित ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद का नाम गुरु प्रदत्त नहीं है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण शास्त्र सम्मत है या नहीं, इस विषय में काफी मतभेद है और सन्यासी होकर दूसरे देश में जाना भी अत्यंत अनुचित है। देखिए, मैंने निश्चित किया है कि इस वृद्धावस्था में मैं किसी धर्म सभा से विशेष रूप से नहीं जुड़ूंगा और न सभापतित्व करूंगा। विशेषकर जिन कार्यों में सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद है उनमें अब मैं फंसना नहीं चाहता।
0: गुरुदास बाबू एक विदेश गमनकारी सन्यासी को हिंदू समाज का समर्थन देने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदास बाबू के अस्वीकार कर देने पर उत्तरपाड़ा के जमींदार राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय से इसके लिए अनुरोध किया गया। वे स्वामी जी के बारे में सब सुनकर सहमत हुए, परंतु सभा में व्याख्यान देते समय राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय महाशय ने स्वामी विवेकानंद नाम पर आपत्ति दिखाते हुए ब्रदर विवेकानंद कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि इस विषय में तब भी उन्हें संदेह था कि कायस्थ सन्यासी हो सकता है या नहीं।
1: 5 सितंबर 1894 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित जिस सभा में स्वामी जी को धन्यवाद दिया गया, उसका विवरण देते हुए अनुसंधान पत्रिका ने जो विवरण दिया है वो विचारणीय है। पत्रिका ने लिखा,
2: पिछले 5 सितंबर बुधवार को टाउन हॉल में हिंदुओं की एक सभा हुई। इस सभा का उद्देश्य था शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठता प्रमाणित की थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना और अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जो विशेष प्रीति एवं सम्मान दिया है, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इस सभा में 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। और हाँ, इस सभा के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। हिंदू पैट्रियट का कहना है कि यह हिंदुओं की सभा थी, परंतु हमारे ब्रह्म सहयोगी समाजी पत्रिका संजीवनी ने लिखा है कि विवेकानंद कभी उनके साधारण ब्रह्म समाज में गायक थे, इसलिए उस दिन की सभा में अनेक ब्रह्म बंधुगण उपस्थित थे। अतएव इसको हिंदू सभा ना कहकर ब्रह्म सभा कहना ही उचित है। इधर हमारे सहयोगी एक बंगाली सज्जन अमेरिका प्रवासी को हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है, अतएव टाउन हॉल की सभा में बंगवासी द्वारा स्वीकृत हिंदू राजा प्यारी मोहन के सभापति होने के बावजूद उनके मतानुसार वो हिंदू सभा नहीं थी। अब कहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए?
0: यहां स्मरण रखना होगा कि बंगवासी के संस्थापक कायस्थ कुल के ही योगेंद्रनाथ वसु थे, तदापि इन दिनों वे ब्राह्मणों द्वारा परिचालित रूढ़िवाद के कार्य में कमर कसे हुए थे और अब्राह्मण विवेकानंद के संन्यास ग्रहण आदि विषयों में विशेष रूप से चिंतित तथा क्रोध से विचलित थे।
1: स्वामी जी की समुद्र यात्रा को लेकर समस्या उत्पन्न हुई उनके स्वदेश लौटने के बाद। घटना स्थल मुख्यतः दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्च 1897 मास के प्रारंभ में जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब वे विदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद काली मंदिर में जगदम्बा को और राधा कांत मंदिर में राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कराए थे। उस दिन दो अंग्रेज महिलाओं ने भी स्वामी जी के साथ मंदिर के उद्यान में भ्रमण किया था। इन रूढ़िवादी लोगों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई। इसके बाद दार्जिलिंग से लौटकर 21 मार्च को स्वामी जी जब खेतरी राजा के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दर्शन कराए तो इसी घटना को लेकर एक विरोध का सूत्रपात हुआ और रूढ़िवादी दल ने पत्र पत्रिकाओं की सहायता से इसका प्रतिरोध लिया। इस मामले में बंगवासी पत्र ने ही सर्वाधिक उत्साह प्रकट किया था। बंगवासी का मूल वक्तव्य ये था कि मंदिर के प्रबंधकों ने स्वामी जी को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया। इस विवाद का असली रूप इस प्रकार है।
0: 28 मार्च के इंडियन मिरर में सिंहलवासी यूरोपीय बौद्ध टीजे हैरिसन ने एक पत्र के द्वारा सूचित किया,
2: यद्यपि 27 मार्च के भंगवासी में खेतड़ी नरेश के साथ स्वामी जी के दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने की बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, मालिकों की ओर से उनके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया गया, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं भी उसी दल के साथ था और प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में मैं उस वक्त बात को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे कि उपरोक्त विवरण को सत्य रूप में ग्रहण किया जा सके। मंदिर के मालिकों ने बल्कि यथेष्ट सौजन्यता दिखाई थी और दर्शन योग्य सब कुछ दिखाने ले गए। तो भी भंगवासी द्वारा उस प्रकार का विवरण प्रकाशित करने का कारण ये भी हो सकता है कि लेखक ने मंदिर के मालिकों के ऊपर कोई पुरानी नाराजगी निकालना चाहा है। अब तक स्वामी जी के समर्थकों की धारणा थी कि मंदिर के मालिक उनके विरोधी नहीं है।
0: 30 मार्च को उसी सुर में श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने इंडियन मिरर में एक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
3: देखिए बंगवासी में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं सूचित करता हूँ। लिखित बातें बिल्कुल ही मिथ्या हैं। कई साधु के साथ हैरिसन साहब जान बाजार में त्रिलोक के नाथ विश्वास को स्वामी जी और खेतड़ी नरेश के मंदिर दर्शन के बारे में कहने गए थे। त्रिलोक के बाबू ने अस्वस्थता के कारण उनसे भेंट नहीं की और कहला भेजा कि संध्या को 5 बजे वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। अतिथियों के मंदिर में पहुंचने पर खजांची भोलेनाथ बाबू, अन्य कर्मचारियों तथा त्रिलोक के बाबू के पुत्रों ने अति सज्जनता के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ अतिथियों को भी काली मूर्ति दर्शन करने का अनुरोध किया था। उस समय लगभग 6 बज रहे थे। यहाँ तक कि खजांची ने मंदिर का पश्चिम दरवाजा तक खोल दिया ताकि और अधिक रोशनी आकर देवी की प्रतिमा पर पड़े।
0: त्रिलोक के बाबू ने और भी लिखा कि उन्हें समाचार मिला था जयपुर के महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस विषय में त्रिलोक के बाबू को संदेह हुआ, तथापि उनके पुत्र के मन में जयपुर के महाराजा को देखने की उत्सुकता होने के कारण वे उन लोगों के साथ दक्षिणेश्वर गए। स्वामी विवेकानंद और उनके संगी परोक्ष रूप से मंदिर से निकाल दिए गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसा कि बाबू भोलानाथ मुखोपाध्याय ने बताया है। स्वामी जी तथा राजा का स्वागत करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा और स्वयं भी मैंने उनका स्वागत नहीं किया। जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपने को हिंदू कह सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा भी संपर्क रखना उचित नहीं समझता। प्रतिमा के पुनः अभिषेक का जो समाचार आपने प्रकाशित किया है वो पूर्णतया सत्य है। मंदिर में स्वामी जी के प्रवेश के फलस्वरूप देवी के पुनराभिषेक की आवश्यकता हुई थी। यहां पर मजे की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन के दिन भी स्वामी जी ने मंदिर के भीतर जाकर प्रतिमा दर्शन किया था, परंतु तब पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं हुई थी। इस बार बंगवासी की कलम के भय से मंदिर के मालिकों को वो भी करना पड़ा। इन पत्रों से यह प्रमाणित होता है कि स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष असम्मान करना संभव नहीं हो सकता था, बल्कि प्रत्यक्षतः उनका स्वागत ही हुआ था। यहाँ भी पुनः विवेकानंद की महिमा ही प्रमाणित होती है। उनके उपस्थित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार करता।
1: परोक्ष अपमान यही था कि त्रैलोक के बाबू ने स्वयं स्वामी जी के साथ भेंट नहीं की, यद्यपि उस समय वे मंदिर के उद्यान में ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त त्रैलोक के बाबू के मतानुसार उन्होंने किसी को भी स्वामी जी का स्वागत करने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, स्वामी जी को अवश्य बता दिया था कि अस्वस्थता के कारण वे मिलने नहीं आ सके।
0: इस पत्र के उत्तर में महेंद्रनाथ गुप्त ने एक पत्र लिखकर त्रैलोक के बाबू की बातों और आचरण में उपयुक्त फर्क दिखा दिया और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू धर्म के जीवंत विग्रह श्री रामकृष्ण विलायत से लौटकर केशव के घर जाते थे, वहां पूरी मिष्ठान भी खाते। इस कारण त्रैलोक के नाथ ने उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोकने की बात सोची थी, यद्यपि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। एक अन्य समय कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस प्रकार का विद्वेष युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वेदांत के मतानुसार सब कुछ ब्रह्म है और कप्तान स्वयं इतने कट्टर होकर भी साहबों के साथ हाथ मिलाते हैं।
1: वैसे श्री रामकृष्ण के मामले में म्लेच्छों के साथ सहज भाव से आदान प्रदान की व्यवस्था सामाजिक आधार पर न होकर धार्मिक नींव पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद ने भी उस पद का अनुसरण किया था। वे कट्टरपंथियों द्वारा स्वीकृत कूपमंडुकता के विरोधी थे और फिर सुधारवादी प्रगतिशीलों द्वारा अनुमोदित आत्म अवमानना के भी विपक्ष में खड़े थे। उनके विदेश गमन अथवा म्लेच्छों के साथ अबाध आदान प्रदान के पीछे स्वार्थ या हठवादिता का लेश मात्र भी नहीं था। इसका कारण उनके आचरण रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों दोनों की नाराजगी के कारण होकर भी हिंदू जनसाधारण की दृष्टि में वे निंदनीय नहीं थे एवं क्रमशः आदर के साथ उन्हें ग्रहण भी कर लिया।
0: वैसे आर्थिक तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समुद्र यात्रा आदि आगे चलकर अवश्य स्वीकृत होती, परंतु उक्त समस्या के समाधान के रूप में स्वामी जी ने जो नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त किया था, उससे हिंदू समाज के लिए वो सहजी मान्य हो गया था। इस क्षेत्र में स्वामी जी के इस अवदान को स्वीकार करना अपरिहार्य है।
1: जिस समय देशी समाचार पत्रों में इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, उस समय स्वामी जी दार्जिलिंग में थे और उन्हें ये मालूम तक न था कि वे मंदिर के मालिकों द्वारा अपमानित हो चुके हैं। वस्तुतः इस काल्पनिक घटना के साथ उनका बिल्कुल भी संबंध न था। परंतु इससे क्या होता है, भला शत्रुगण ऐसा मौका हाथ से कैसे निकल जाने देते। अतः मिशनरियों के माध्यम से इस समाचार को खूब बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका में पहुंचा दिया गया और इस निंदा प्रचार के एक प्रधान प्रवक्ता हुए डॉक्टर बैरोज। बैरोज की शत्रुता का एक प्रमुख कारण तो ये था कि वे सोचते थे कि स्वामी जी की अमेरिका में सफलता के पीछे उनका काफी हाथ था, क्योंकि शिकागो धर्म महासभा में संचालक के रूप में उन्होंने ही स्वामी जी के लिए काफी सुविधा कर दी थी। इस उपकार के बदले में स्वामी जी को चाहिए था कि बैरोज के ईसाई धर्म प्रचारार्थ भारत आने पर वे इस विषय में उनकी हर प्रकार से सहायता करते।
0: परंतु बैराज ने देखा कि उनके मद्रास आने पर स्वामी जी ने न तो उनके प्रचार के बारे में कुछ किया और उनसे मिले बिना ही मद्रास से चले गए। अतः इस प्रकार अपनों को अपमानित मानकर बैराज बदला लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने प्रचार किया, स्वामी जी को जाति च्युत कहना तो गलत होगा, क्योंकि खोने के उपयुक्त उनकी जाति ही कहां है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमरीका के नारी समाज की निंदा की थी। 10 मई 1897 को भारत से लौटकर कैलिफोर्निया पहुंचते ही उसी संध्या को बैराज ने क्रॉनिकल पत्र के संवाददाता के साथ एक साक्षात्कार के माध्यम से अमेरिका वासियों को सूचित किया।
2: स्वामी विवेकानंद मेरे आगमन के एक सप्ताह पूर्व मद्रास पहुंचे थे, तथापि हमारे बीच पूर्व परिचय को घनिष्ठतर करने के लिए उन्होंने मेरे साथ मुलाकात नहीं की, बल्कि जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन ही वो शीघ्रता पूर्वक मद्रास से चले गए। क्रॉनिकल में अमेरिकी नारियों के संबंध में उनका जो मत छपा हुआ था वास्तव में वो पूरा उन्हीं का है। और हाँ, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये उन्हें पता था इसलिए वो मुझे टाल गए। परंतु एक विषय में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। विवेकानंद अपने आचरण से जाति च्युत हुए हो ऐसी बात नहीं। उन्होंने अमेरिका के नारियों तथा अमेरिका की संस्थाओं के विषय में जो बातें कही हैं उससे मेरे परिचित अनेक हिंदू नाराज हुए हैं। उन लोगों ने मेरे पास आकर स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनके धर्म प्रवक्ता नहीं है। उनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो अद्भुत तथा आनंददायी हैं, परंतु लगता है कि उनके मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। मुझे लगता था कि वे एक दूसरे हिंदू मार्क ट्वेन हैं, वो प्रतिभावान हैं और उन्हें कुछ अनुयायी भी मिले हैं। वैसे ये लोग चिरकाल उनके साथ नहीं रहेंगे।
1: इस प्रकार मिशनरियों और बैरोज द्वारा प्रदर्शित उनके दोष हैं। स्वामी जी अकृतज्ञ हैं। वे भारत और विदेशों में जितनी लोकप्रियता का दावा करते हैं वो उतनी नहीं और स्थायी भी नहीं है। वे जाति च्युत हैं और उन्होंने अमेरिकी महिलाओं की अनुचित निंदा की है। स्वामी जी ने इसके पूर्व समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रकट रूप में कभी इस प्रकार के दोषारोपण का प्रतिवाद नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। फिर भी इस प्रचार के पहले, इसके दौरान और बाद में उन्होंने विभिन्न लोगों को जो व्यक्तिगत पत्र लिखे उनमें इसका समुचित उत्तर मिल जाता है।
0: पहले हम अकृतज्ञता की ही बात को लें। स्वामी जी ने बैरोज की सहायता नहीं की, ये पूर्णतः असत्य है। बैरोज के भारत आने के पूर्व स्वामी जी ने लंदन से 28 अक्टूबर 1896 को जो पत्र इंडियन मिरर में प्रकाशित कराया उसमें ये बातें थीं।
4: शिकागो विश्व मेला के धर्म महासभा की अपनी विराट कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री बोनी ने डॉक्टर बैरोज को अपना साथी नियुक्त कर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था। डॉक्टर बैरोज के अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अचल धैर्य और स्वाभाविक सज्जनता के फलस्वरूप ही इस महासभा को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अन्य लोगों की अपेक्षा हम डॉक्टर बैरोज के ही अधिक ऋणी हैं। अब वो हमारे बीच धर्म के पवित्र नाम और मानव जाति के एक महान शिक्षक के नाम पर आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ईसा मसीह द्वारा प्रचारित ईसाई धर्म की उनकी व्यवस्था अत्यंत उदार होगी एवं हमारे मन को उन्नत करेगी। अतएव अपने देशवासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि धरती के दूसरे छोर से भारत आने वाले इन विदेशी सज्जन के प्रति आप लोग ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें पता चल सके कि इस दुख, निर्धनता एवं अवनति की दशा में भी जब भारतवर्ष आर्य भूमि के रूप में परिचित था और उसके ऐश्वर्य की चर्चा विश्व के सभी राष्ट्रों के मुख पर रहती थी, उस अतीत के समान ही हमारा हृदय आज भी मैत्रीपूर्ण है।
0: मद्रास में बैरोज के लिए प्रतीक्षा न कर कलकत्ता जाने का कारण बताते हुए स्वामी जी ने स्वयं ही लिखा है कि अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ा था। मिशनरियों तथा बैरोज द्वारा गढ़े गए अन्य दोषारोपों के प्रतिवाद हेतु संवाद पत्रों की सहायता न लेकर अपने मित्रों को व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अन्य प्रसंगों के साथ उन्होंने इस विषय पर भी जो दो चार बातें कही है उनमें से हम 30 जनवरी 28 अप्रैल तथा 9 जुलाई 1897 के तीन पत्रों की कुछ बातें यहाँ पर उद्धृत करेंगे। इससे ये विषय काफी स्पष्ट हो जाएगा। ये पत्र मेरी को लिखे गए थे। प्रथम पत्र में है,
4: डॉक्टर बैरोज का सप्रेम स्वागत करने के लिए मैंने लंदन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा था। उन लोगों ने उनका बड़े आवभगत के साथ स्वागत किया, परंतु वे यहां की जनता में प्रेरणा का संचार नहीं कर सके। इसमें मेरा क्या दोष? कलकत्ते के लोगों में कोई नया भाव घुसाना बड़ा कठिन है। अब सुन रहा हूं कि डॉक्टर बैरोज के मन में मेरे बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इसी का नाम संसार है।
0: द्वितीय पत्र में उन्होंने लिखा था,
4: मुझे आशा है कि डॉक्टर बैरोज अब तक अमेरिका पहुंच गए होंगे। बेचारे, वो यहां अत्यंत संकीर्ण ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और जैसा कि आमतौर पर होता है किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। वैसे लोगों ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया था, और वो भी मैंने पत्र लिखा था इस कारण। परंतु मैं उन्हें बुद्धि तो उधार नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वो एक विचित्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैंने सुना कि मेरे भारत लौटने पर पूरे देश में जो खुशियां मनाई गईं, इससे वो जलन के मारे पागल हो गए थे। कुछ भी हो, तुम लोगों को थोड़े अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को भेजना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बैरोज जो कुछ कह गए हैं उससे हिंदुओं ने महाधर्म सभा को एक तमाशा मात्र समझ लिया है। दार्शनिक विषयों पर पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता।
0: तृतीय पत्र में उन्होंने मैरी को लिखा था,
4: मुझे विभिन्न अमेरिकी अखबारों की बहुत सारी कतरनें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अमेरिका की महिलाओं के बारे में मेरे विचारों की कटु आलोचना की गई है। उनसे मुझे और भी एक नया समाचार मिला कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूं। सन्यासी होकर भी जैसे खोने के लिए मानो मेरी कोई जाति थी। जाति च्युत होना तो दूर रहा, मेरे पाश्चात्य देशों में जाने से यहां समुद्र यात्रा के विरोध में जो भाव थे वो बहुत कुछ दब गए। मुझे यदि बाहर करना हो तो मेरे साथ ही भारत के आधे राजाओं और लगभग पूरे शिक्षित समुदाय को भी जाति च्युत करना पड़ेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे मेरे पूर्वाश्रम की जाति के एक विशिष्ट राजा ने मेरे सम्मान में एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे, और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा जैसा सत्कार हुआ है भारत में वैसा किसी और के लिए नहीं हुआ। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जब मैं रास्तों से होकर निकलता था तो भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। जातिच्युत होना शायद इसे ही कहते होंगे।
1: समाज से बाहर होने का ठीक उत्तर देते हुए यहाँ जो व्यक्तिगत गौरव का वर्णन हुआ है उसे पाठकगण अहंकार का परिचायक न समझें, क्योंकि ये पत्र उनकी अपनी बहन मैरी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया था और इसके अन्य लोगों के हाथ में पहुंचने की संभावना नहीं थी। जाति च्युत का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने उसी पत्र में अन्य बातों पर भी चर्चा की थी।
4: मेरे ऐसे स्वागत से मिशनरियों के हाथ के तोते उड़ गए हैं, और यहाँ वे हैं भी कौन? कुछ भी नहीं। उनके अस्तित्व के बारे में ही हमें खबर नहीं। बात ऐसी थी कि मैंने अपने एक व्याख्यान में इंग्लिश चर्च के भद्र पादरियों को छोड़कर सामान्य मिशनरियों के दल में आने वाले लोग जिस श्रेणी के होते हैं इस विषय में कुछ कहा था। इस प्रसंग में मुझे अमेरिका की कट्टर चर्च महिलाओं और उनकी मिथ्या बदनामी फैलाने की क्षमता का भी उल्लेख करना पड़ा था। मिशनरी लोग मेरे अमेरिका में किए गए कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को संपूर्ण अमेरिकी नारी जाति पर लांछन कहकर शोरगुल मचा रही हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि केवल उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो इससे संयुक्त राज्य के लोगों को आनंद ही होगा। प्रिय मैरी, यदि मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिका के लोगों के विरुद्ध ये भयानक बातें कही हों, तो भी वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में जो घृणित बातें कहते हैं, इससे क्या उसके लाखवें भाग की भी पूर्ति होगी?
0: जैसा कि स्वाभाविक था, स्वामी जी के लिए अपने ही अप्रकाशित पत्रों के उद्धरण देखकर अमेरिका के नारी जाति के प्रति उनकी प्रीति एवं श्रद्धा का भाव प्रमाणित करना संभव न था। परंतु हम जानते हैं वो कितना आंतरिक एवं अकृत्रिम था। उनमें से यहां दो चार उक्तियों को ही प्रस्तुत करना यथेष्ट होगा।
4: अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मैंने अनेक निरर्थक कहानियां सुन रखी थीं। वो स्वाधीनता में उन्मत्त होकर अपने पारिवारिक जीवन की सकल सुख शांति को भंग कर देती हैं, और इसी प्रकार की और भी बातें सुनने में आई थी। परंतु पिछले एक वर्ष के दौरान अमेरिकी परिवार और अमेरिकी नारियों के बारे में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे अब ये स्पष्ट बोध होता है कि उस प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत एवं निर्मूल हैं। कितनी ही ऐसी माताएं देखी हैं जिनकी मातृत्व और ममता और संतान स्नेह का वर्णन करने को मेरे पास भाषा नहीं। कितनी ही ऐसी बालिकाओं और कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है जो डायना देवी के ललाट पर स्थिर तुषार कणिकाओं के समान निर्मल और उसके साथ ही अत्यंत शिक्षित और मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नत हैं। ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं, ये साक्षात जगदम्बा हैं। इस तरह की मां जगदम्बा यदि अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चित होकर मर सकूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आइए अब आपको बता देते हैं कि हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:20

क्रम सुनेगा सुबह 9:30 से। परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट सुनेगा 10:00 से। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे बिरसा मुंडा पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद। आकांक्षा मिश्रा से सुनिएगा बुंदेली गायन सुर सागर कार्यक्रम के अंतर्गत दिन में 11:00 से। और 11:30 पर आप सुन सकेंगे विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10:00 हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।